0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, योग की ओट पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। मैं समता आपके लिए हर रोज सुबह एक नए आसन, एक नए व्यायाम को लेकर के आती हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे सब लोग मिलकर के उदर प्रदेश अंग की क्रियाएं, यानी लेट कर किए जाने वाले आसन, जिसमें सबसे पहला जो आसन आता है, यानी सबसे पहली जो एक्सरसाइज आती है, वो है उत्तान पादासन। आइए अब हम मिलकर शुरू करते हैं। अभ्यास क्रम एक, पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, दोनों हाथों को कमर के अगल बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर स्थिर करें, सांस लें और बाहों पर हल्का दबाव देते हुए दोनों पैरों को एक साथ जमीन से लगभग 60 डिग्री के कोण पर उठाएं। दोनों पैर एक हाथ एक साथ मिले हुए हों व पंजे सामने की तरफ तने हुए हों। एक से दो मिनट इसी अवस्था में रुकें, मूल अवस्था में वापस आएं, श्वास प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास क्रम व समय, पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास रोकें एवं नीचे आते समय श्वास को छोड़ें। ऐसा 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। सावधानियां जान लें, कमर या रीढ़ आदि में किसी प्रकार का तेज दर्द हो तो आप यह आसन बिल्कुल ना करें। आइए दोस्तों, अब हम लाभ जान लेते हैं। पहले स्थान से हटी हुई नाभि को ठीक करता है, यानी अगर आपका नाभि से संबंधित कोई भी, पेट से संबंधित अगर कोई कष्ट है तो पहले स्थान से हटी हुई नाभि को यह आसन ठीक करता है। पेट की चर्बी को कम करता है। कब्ज के लिए रामबाण है। पीठ, कमर एवं पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। वायु विकार का शमन करता है। उत्तान पादासन में आपको विशेषकर जब आप ये आसन करेंगे तो पेट से संबंधित, पीठ, कमर और मांसपेशियों से संबंधित सभी आसनों की श्रृंखला आती है। आइए अब हम इसमें क्रम दूसरा कर लेते हैं, यानी कि गति में उत्तान पादासन। पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, अगल बगल में रखें, सांस लेते हुए बाएं पैर को इतना उठाएं कि समकोण की आकृति निर्मित हो। कुछ देर रुकें एवं श्वास छोड़ते हुए वापस मूल अवस्था में आ जाएं। इस प्रकार बाएं पैर से 5-6 बार रखें। इस प्रकार बाएं पैर से 5 और 6 बार करें। यही क्रिया दाएं पैर से करें। अब यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ उठाकर करें। आइए दोस्तों, हम लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश, पाचन तंत्र, मेरुदंड, पीठ के निचले हिस्से की पेशियों को मजबूत करता है, लोच व लचक पैदा करता है, चर्बी दूर कर जंघाएं एवं नितंब सुडौल बनाता है। गति में उत्तान पदासन जब हम करते हैं तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं तो ठीक होती हैं, साथ में जंघाओं पर जो कि एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी धीरे धीरे कम होता है। आइए दोस्तों, अब हम तीसरा आसन कर लेते हैं। पैरों द्वारा वृत्त बनाना, यानी पाद वृत्तासन। शवासन में लेट जाएं, पहले दायां पैर सीधा उठाएं और उसे दाएं तरफ से बाएं लाते हुए वृत्त बनाएं। ऐसा 10 से 15 बार करें। अब उसी पैर से बाएं से दाएं तरफ घुमाएं। अब बाएं पैर से उपरोक्त क्रिया करें। दोनों पैरों को यही क्रिया दोहराएं।
अर्थात एक पैर को हवा में गोल आकार देना है, फिर दूसरे पैर को गोल आकार में हवा में एक आकार देना, और अंत में दोनों पैरों को एक साथ गोलाकार आकृति में हवा देना है। श्वास क्रम क्रिया करते समय श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। लाभ: कमर दर्द में राहत, नितंब मजबूत और सुडोल बनते हैं, पैर की समस्त मांसपेशियों को लाभ मिलता है, मोटापा कम करने के लिए यह सबसे अच्छा आसन है, पेट और जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है। आइए दोस्तों, अब हम इसी श्रृंखला में अगले आसन की ओर चलते हैं, जो कि पाद संचालन क्रिया यानी कि साइकिल चलाना है। श्वासन में लेटें और कल्पना करें कि आप साइकिल चला रहे हैं। पहले एक पैर उठाएं और साइकिल चलाने जैसा आगे पीछे ऊपर नीचे करें। 10 से 15 बार सीधा पैंडल एवं उल्टा पैंडल मारें। अब दूसरे पैर से पहले पैर की पुनरावृत्ति करें। दोनों पैरों को साइकिल पर बैठकर चलाने की क्रिया करें। अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें और साइकिल चलाने की क्रिया को दोहराएं। एक बार 10 से 15 बार सीधे पैंडल और फिर उल्टे पैंडल घुमाएं। यह प्रक्रिया दोस्तों आप 10 से 15 बार लगातार कर सकते हैं। साइकिल चलाने की इस प्रक्रिया से पेट की चर्बी, जंघाओं की चर्बी और तंब की जो चर्बी है वो बहुत ही जल्दी ही ठीक होती है। आइए अब हम इसके लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश को लाभ होता है। टखने, पिंडली, घुटने, जांग, नितंब व कमर, इन सभी अंगों को लाभ मिलता है। जोड़ों को खोलकर मांसपेशियों को सुचारू करता है। अपान वायु का निष्कासन करता है। मोटापे को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। जंघाओं एवं नितंबों को सुडौल बनाता है। थकान होने पर यह बिल्कुल न करें और पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ही पीछे ले जाएं। आइए अगले आसन की ओर चलते हैं, जो कि है सुप्त पाद संचालन क्रिया। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को अगल बगल में रखें, बाएं पैर को घुटने से इतना मोड़ें कि जंघा का हिस्सा पेट से स्पर्श करें। अब पैर को सामने की तरफ सीधा करें, जमीन से 2 फीट ऊपर और जमीन पर रख दें। यह क्रिया 5 से 10 बार पहले बाएं पैर से और फिर दाएं पैर से करें। अब यही क्रिया विपरीत दिशा में करें। पहले बायां पैर जमीन से, फिर 2 फीट ऊपर उठाएं और फिर पैर को घुटने से मोड़कर पेट से लगाएं और जमीन पर सीधा रख दें। यही क्रिया दाएं पैर से करें। समय: यह सभी क्रियाएं 5 से 10 बार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम सुप्त पाद संचालन क्रिया के लाभ जान लेते हैं। उदर प्रदेश में स्थित चर्बी को कम करता है, पाचन तंत्र मजबूत कर कब्ज को दूर करता है। नाभि अपने स्थान से हट गई हो तो उसे यह ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो आसन थे वह थे लेट कर किए जाने वाले आसन और उदर प्रदेश में अंग क्रियाएं जो संचालन की जाती हैं उनसे संबंधित आसन। यदि आप निरोगी हैं तो सदा निरोगी बने रहने के लिए योगा अभ्यास करें, और यदि आप रोग ग्रस्त हैं तो निरोग होने के लिए योगा अभ्यास अवश्य ही करें और स्वस्थ व सुंदर हो जाएं। इसीलिए दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो। आप शायद इस लाइन से परिचित नहीं हैं, लेकिन आज इसी लाइन को मैं आपको आ रही हूँ परिचित कराने, यानी आपके योगनी समता। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो योगशाला में, जो कि आपकी आर्य समता लेकर के आती है।
ये अभी आपने जो लाइन सुनी ना, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि तेरा आहार हो। प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यही है कि आहार ही ऐसा किया जाए जो औषधि का नाम दे, यानी औषधि को नाम देने के साथ साथ उसे काम भी दे और जिससे शरीर के विकार स्वयं दूर हो जाएं। शायद आपको ये भी पता होगा कि पूर्णता सिद्धांत भारतीय विद्वानों के मत से मिलता हुआ है। इसे भारतवर्ष की विद्याओं का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक माना गया है, क्योंकि उस 2500 पुराने युग में भारत की सभ्यता और संस्कृति का संसार के सभी भागों में प्रचार तब तक हो चुका था। इसलिए इस प्रकार जब तक मनुष्य प्रकृति की गोद में पलते खेलते थे, उनका रहन सहन भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल था, तो वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक ढंग से ही करते थे। पर मध्यकाल में जब बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हो गई, तो उन्हें बड़े आदमियों के रहन सहन में भोग विलास की अधिकता होने लगी और उनकी पूर्ति के लिए भांति भांति की कृत्रिम उपायों का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके चलते साधारण लोग भी उनकी नकल करने लगे। नकली चीजों का इस्तेमाल अधिक सुंदर और आकर्षण बनने के कारण से उनके स्वरूप पर पड़ने लगा, उनके शरीर पर पड़ने लगा, उनके मस्तिष्क पर पड़ने लगा, जिसका सीधा असर उनके अपने रहन सहन पर भी होने लगा। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है प्राकृतिक योग। योग में प्राकृतिक का क्या समावेश है? प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषज्ञ, प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। विचार पूर्वक देखा जाए तो यह कोई ऐसी गुहा विषय नहीं है। जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता रहता है, तब तक बिना सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें लाभ होता आया है। जब वह मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग करके कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षण और के स्वास्थ्य संबंधी उलझने बढ़ने लगती हैं और समय समय पर उनसे शरीर में कष्टदायक प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जिसको रोग कहा गया है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आजकल बहुत सारी प्रचलित हो गई हैं, जिसमें हजारों तरह की औषधियां, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम उपयोगों को लेकर के हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की ओर चलते जा रहे हैं। लेकिन शायद आप ये जानते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक डॉक्टर का काम करती है। जैसे हम बिना किसी दवा के लिए किसी भी रोग को पूर्णता नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें उस दवा की आवश्यकता होती होती है और हम दवा लेने के लिए जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उतनी ही लाभप्रद है जितना कि हम अपने शरीर के लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक चिकित्सा, उपवास, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और आहार। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सभी चिकित्साएं हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ये अन्य चिकित्साओं में श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि हम हर एक रोगी को दवाई देकर ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उनसे दवाइयाँ, इंजेक्शन इत्यादि का उन पर प्रयोग होता है और वह उपचारों का आश्रय लेता है। रोग के कारण रोगी में जो वह लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें दूर करता है और उन लक्षणों के विलुप्त होने पर डॉक्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। डॉक्टर रोगी के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इस चिकित्सा से कुछ दिन के लिए रोग दब जाता है और वह नष्ट हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जीवन की एक वो पद्धति है जिसे हम अपने आप में स्वस्थ रह करके उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कुदरती इलाज के मूल तत्व पंच महाभूत। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु नाम के 5 तत्वों से हुआ है, जो पंच महाभूत कहलाते हैं। इनमें सबसे आवश्यक तत्व वायु है, जिसके बिना एक क्षण का अस्तित्व ही नहीं है। वायु जीवन है, तेज तत्व शरीर को शक्ति पहुंचाता है। जल से रक्त संचालन का कार्य ठीक प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे चिकित्सा पद्धति में वायु का प्रयोग
क्या होना चाहिए। वायु का प्रयोग, प्राकृतिक जीवन के अनुवायु को हवा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वैसे हवा तो हम सभी लेते हैं, किंतु ईश्वर का प्रसाद तो स्वच्छ ताजी वायु में प्रकट होता है। घर के चार दीवारी या गंदी नालियों और कूड़े करकट से भरे मोहल्लों, बाजारों या कारखानों में स्वच्छ हवा मिलना कठिन है। अतः हमें चाहिए कि प्रातःकाल किसी उद्यान, जंगल या शहर से दूर टहलने जाएं और ताजी हवा से फेफड़ों को खूब भरें। प्रातः सायंकाल स्वच्छ हवा में दीर्घ उच्चारण यानी दीर्घ मंत्र उच्चारण का प्रयास करना चाहिए। ये कसरत करने से फेफड़े सशक्त रहते हैं। वायु अधिक लेने से रक्त शुद्ध होता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। आपके मकान, खिड़कियों और रोशनदानों से युक्त जो भी हवा आती है उसे हमें स्वतः लेते रहना चाहिए। सोते समय कमरे में यथेष्ट वायु रखें। बिस्तर पर पड़कर आप कपड़ों से मुंह ना ढकें। दूसरी बुरी आदत मुंह से सांस लेने की होती है। काफी लोगों को ये देखा गया है कि सोते समय उनका मुंह खुल जाता है या उनकी आदत में आ जाने से उनका मुंह वह स्वयं ही खोल लेते हैं। या वायु स्वास्थ्य या चिकित्सा में वायु मुंह से लेना सबसे खतरनाक साबित होता है। नथनों की राह सांस लेने से वायु को स्वच्छ होने पर अवसर मिलता है और उसे जितना गर्म या ठंडा होना चाहिए वो वैसे ही ली जा सकती है। वायु के संपर्क में अधिक से अधिक रहने की आदत डालिए। अपना अधिक समय उद्यान, सरिता तट, खुले स्थानों, सैर सपाटे, जंगलों, प्रकृति के आंचल में रहकर व्यतीत कीजिए। वायु का जितना अधिक उपयोग कर सके कीजिए। हवा लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे, यह निरा भ्रम ही है। शुद्ध, स्वच्छ और ताजी वायु तो प्राण दाता है, उसे अपने अंदर कार्य करने दीजिए। प्रकृति की यही सबसे बड़ी एक अनोखी हमारे लिए उपहार है, जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं और उस उपहार से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति हमारे लिए स्वयं चलकर आती है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना चाहिए। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख और शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण से बलदायक भी मिलता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सोते समय हमें अपने नथुनों से यानी अपनी नासिका से ही श्वासों का लेना निरंतर जारी रखना चाहिए। मुंह से जितना हो सके श्वास नहीं लेनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी निवृत्त रहते हैं। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना पड़ता है और चाहिए भी। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निंद्रा और शरीर में शांति होने के कारण पृथ्वी का बलदायक प्रभाव सूर्य स्नान या नंगे बदन सोने की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उनके पास एक उपाय ये जरूर होता है कि आप थोड़ी देर नंगे पैर जमीन पर चलें। इसका कारण सीधा यही है कि गुरुत्वाकर्षण हमारी शरीर के पैरों के तलवों से होकर के हमारी पूरी आंतरिक शरीर में जाता है, जिसके कारण से हम स्वस्थ रह पाते हैं। दैनिक जीवन में पृथ्वी के साथ आप निकट संबंध निम्न के प्रकार से बना सकते हैं। नंगे पांव चलकर पृथ्वी तल से सीधा स्पर्श होता है। जर्मनी में तो इस प्रकार का एक आंदोलन तक आरंभ किया गया था। नंगे पैर रहना स्वाभाविक और आरोग्यप्रद है। नंगे पांव चलने वाला पांव को दृढ़ करता है और पृथ्वी से प्राण शक्ति खींचता है। नंगे पांव चलने से रुद्राभिसरण बराबर होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होती है। कई रोगों में पृथ्वी पर सोने पर चमत्कारिक लाभ होता है। सोने के लिए ऐसी भूमि पसंद करनी चाहिए जहां घास स्वाभाविक जीवन प्रारंभ करने वालों को कुछ दिन हवादार पर्णकुटी में सोना चाहिए। आनंदी और फुर्तीला रहने के लिए यथासंभव प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति में
पशु कम सोते हैं किंतु गहरी निंद्रा सोते हैं। हम भी यथाशय आराम के लिए नवजीवन संचार के लिए विश्राम करना चाहिए। थोड़ी और आवश्यक नींद लेने से दृढ़ता, दीर्घायु एवं नवजीवन आता है। अधिक नींद लेने से आलस्य बढ़ता है, आयु और समय का भी नाश होता है। कृत्रिम शिथिलता अधिक निंद्रा का परिणाम हो सकती है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी सोचा है या सुना होगा, आपने सुना होगा कि हम जब भी योग के लिए बताते हैं तो हमेशा से ये कहते हैं कि जमीन पर बैठकर योग नहीं करना है, मतलब जमीन पर कुछ बिछा करके ही बैठ करके योग करना है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, जमीन का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के साथ मिलकर के एक नई ऊर्जा बनाता है, जिसके कारण से योग से निकलने वाली ऊर्जा का जो स्तर है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम योग करें तो हमें कुछ न कुछ चटाई, मैट या कोई पुरानी चद्दर बिछा करके ही बैठ करके हमें योग करना चाहिए। लेकिन आज कुछ दो ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जिसको करने से सीधा का सीधा पृथ्वी का जो लाभ है, पृथ्वी से निकलने वाला गुरुत्वाकर्षण है, उसका लाभ हमें निरंतर मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे प्राणायाम जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो आपको करना है, तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं मात्र दो ऐसे प्राणायाम जो सीधा सीधा पृथ्वी से जुड़ करके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है ध्यान योग मुद्रा। ध्यान योग मुद्रा यदि हमें पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण को लेना है तो हमें किसी मैट या चटाई पे नहीं बैठना है। दूसरा है शवासन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कई बार कि सब प्राणायाम योग करने के बाद में शवासन जरूर करना चाहिए। जमीन पर आराम से शरीर को ढीला करके लेट जाना होता है और सारी प्रक्रियाओं को आंतरिक स्थिति से यानी मनोस्थिति में उस पूरे योग प्राणायाम को दोहराना है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का कोई जानवर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, मनुष्य इन मादक पदार्थों का विष लेकर सेवन करता है और प्रकृति के द्वारा सजा पाता है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बैठिए, सोइए, चलिए, विश्राम कीजिए। पृथ्वी की आर्द्रता या सर्दी से न डरकर घूमने फिरने या यात्रा के लिए जमीन पर बैठकर या सोकर आराम करने का अभ्यास चाहिए। उत्तेजित मस्तिष्क वाले आदि वातग्रस्त मनुष्यों को शांतिपूर्वक पृथ्वी पर बैठने और सोने से अधिक लाभ मिलता है। रात्रि के समय प्रकृति से एक नया जीवन प्रभाव निकलता है। रात्रि के समय पृथ्वी की शक्ति अति प्रबल हो जाती है। तो आइए हम आपको कुछ और ऐसे योग से आपको बताने जा रहे हैं जो कि हम घर में बैठ करके ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो छोटे छोटे योग आसन को अगर हम घर बैठ के करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है और प्रकृति से योग में हम पृथ्वी से भी जुड़ पाएंगे। सबसे पहले मैंने आज आपको बताया कि अगर हम ध्यान योग सीधा पृथ्वी पर ही बैठ करके करेंगे, यानी कि कोई मैट, चटाई या चादर बिना बिछाए हुए, तो उसका सीधा लाभ हमें मिलता है, क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण और योग के माध्यम से होने वाली शक्ति आपस में मिलकर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। और दूसरा है शवासन, जो सब योग को करने के बाद में एकांत चित होकर के पृथ्वी पर लेट जाना है और मानसिक तौर से जितने भी योग आसन आपने किए, कोई भी आसन किया है, उसे अपने अंदर उसको दोहराना है। कोने जमीन पर स्वच्छ बालू 5 इंच स्तर के रूप में बिछाकर उसे बिस्तर के रूप में प्रयोग किया, उन्हें अत्यंत लाभ हुआ। ऐसे बिछौने पर खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति होती है तत्व को ग्रहण करने के लिए। खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति है आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए। मैदान में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति के साथ योग करते समय आकाश यानी स्काई स्पेस का विशेष स्थान होता है। आकाश विशालता, शांति, स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम खुले आकाश के नीचे योग करते हैं तो हमारा मन सीमाओं में मुक्त होकर विस्तार का अनुभव करता है। योग दर्शन में आकाश को
पंच महाभूत में पहला तत्व माना गया है। यह शून्य नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा विस्तार है। गहरी श्वास को लेते समय आकाश की ओर ध्यान लगाने से मन हल्का हो जाता है, तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। खुले आकाश के नीचे किया गया योग श्वास को गहरा और स्वाभाविक सा बनाता है, मन को स्थिरता और स्पष्टता देता है, नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है, आत्मा को प्रकृति से जोड़ता है। और जब हम आकाश की ओर देखते हुए योग करते हैं तो भीतर भी वैसा ही विस्तार महसूस होता है। प्रकृति के साथ योग में आकाश हमें यही सिखाता है, खुला होना, स्वीकार करना और संतुलन में रहना। इसी के साथ में कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम जो आकाश के नीचे बैठकर के हम कर सकते हैं, जो कि हमारी सारी नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है। उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार और ऐसे तमाम 8 प्राणायामों में मुख्य सूर्य नमस्कार भी हम आकाश के नीचे यानी खुले आकाश में हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई ऐसे योग प्राणायामों की श्रृंखला में हम अपने आप को जोड़ते हुए प्रकृति के साथ योग में जुड़ते जाएंगे। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि हमारा

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभु को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभंक्षाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी ना

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ अगत्स्य गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिन्नाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यः पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवाय यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं भोलेनाथ। भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी, हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो,
2: क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तप के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। वेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज़ है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि, जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती उन्हें? शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो पल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है, मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

Sexy. Sexy.

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मंडे स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान। आपने ट्यून किया है रेडियो 11.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: सो मंडे मॉर्निंग का टाइम है 9:09 और अब हम आपको बताने वाले हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, आज का मॉर्निंग वाला थॉट। लेकिन इससे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो क्या है आज का थॉट ऑफ द डे? बहुत ही प्यारा है। क्या कहता है? सो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है बड़ी ही अहम बात जो शायद काफी कम लोगों को ही पता है, लेकिन इस थॉट के जरिए काफी प्यारी बातें सामने आई है। बात यह है कि जो व्यक्ति प्रेम की बरसात में फिर से भीगना नहीं चाहता, उसे पतझड़ धीरे धीरे पूरी तरह से अपना लेता है। जी हाँ, जो इंसान प्रेम की बरसात में फिर से भीगना नहीं चाहता, उसे पतझड़ धीरे धीरे पूरी तरह से अपना लेता है, ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। ऐसा क्यों कहता है आज का थॉट? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इंसान जब प्रेम करता है और उसके बाद जब उसे अपनी मनपसंद चीजें नहीं मिल पाती है तो वो प्रेम अपनाना छोड़ देता है। छोड़ तो देता है लेकिन उसको ये ध्यान नहीं रहता कि अगर वो ऐसा कर रहा है, फिर से नहीं भीगना चाहता उसी बरसात में, तो पतझड़ जो है यानी वीरानियत जो है उसे पूरी तरह से अपना लेते हैं। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। क्योंकि जिंदगी आपकी जब तक चलती रहेगी तब तक आपकी जिम्मेवारी है। अब प्रेम से जीना है या मायूस ही रहना है ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पर करना जरूर पड़ेगा क्योंकि ये होता ही होता है। सो क्या मानना है आपका इस थॉट ऑफ द डे के रिगार्डिंग? हमको कमेंट करिए और बताइए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये जो थॉट है ये बिल्कुल सच है। और ऐसे एक नहीं अनेक एग्जांपल्स हैं, शायद अगर आप भी कहीं ना कहीं फील करेंगे तो आप खुद भी हो सकता हो उसी कतार में लगे हुए नजर आए जहां पर यकीन नहीं होता है दोबारा के लिए। लेकिन थॉट कहता है कि अगर इस तरह किया तो हम पूरी तरह से हमको अपना लेगा पतझड़। सो पतझड़ अपनाएं, उससे बेहतर है कि प्रेम की बरसात में भीगा जाए। और ये सच है कि आप जैसे होते हैं, जैसे चीजों को पसंद करते हैं, वैसे ही लोग वैसी ही चीजें आपके आसपास होने लग जाती है। तो अब वीरानियत ही पसंद करेंगे तो शायद वीरानियत ही होगी, और प्रेम तो फिर प्रेम की बरसात। द चॉइस इज योर्स। सोचिएगा और फिर देखिएगा कि ये बात सच है, ये कितने हद तक फिट बैठती है और क्या लगता है आपका, है ना? तो चलिए, फिलहाल आपको आज का थॉट ऑफ द डे पता चल गया कि आज का थॉट ऑफ द डे जो है वो क्या कहना चाह रहा है। सो आज के इस थॉट ऑफ द डे को सुन लेने के बाद आपका क्या रिएक्शन है ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। यानी इस थॉट ऑफ द डे के रिगार्डिंग आपका क्या है मानना? एंड साथ ही साथ वापस से एक बार वेलकम करते हैं आप सभी का, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। और अगला म्यूजिकल ब्रेक क्या लेकर आ रहा है? बहुत सारा प्रेम। सो जस्ट फील इट।
1: नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

हाँ जी, तो चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुनने वाले आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान मॉर्निंग शो में। सो उसी एप्लीकेशन पर आपको फीचर मिलता है चैट का, जिस पर जो कुछ लिखते हैं वो लिख जाता है दिल पर, मतलब सीधे पहुंच जाता है हम तक। तो क्या कुछ लिखा है आइए बताते हैं कौन कौन मौजूद हैं। सबसे पहले जो मैसेज आया है शो में, सविता दुबे जी का आया है। सुप्रभात लिखा है, सुप्रभात आपको भी, आज मनपसंद खाना दिवस है। ओहो, सभी के लिए क्या बात है। सो आपका मनपसंद खाना क्या है ज़रा बताइए तो फटाक से। प्रीति जी ने कहा, सर जी सुप्रभातम वंदन नमन, आपको भी सुप्रभात, स्वागत करते हैं प्रीति जी बहराइच से गोंडा FM पर 89.6 FM के मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। एंड इसके बाद जो है, सविता जी को सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत बहुत शुक्रिया कायनात, गुड मॉर्निंग। एंड यस, आप लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं थॉट को लेकर के। सविता जी ने कहा, आज का सुविचार बहुत मन जैसा लगा, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। प्रीति जी कहती हैं, मेरे नाम को सार्थक करता हुआ जानदार थॉट, यानी प्रीति प्रेम मेरे नाम से ही सदा वारिस करता रहेगा जिंदगी भर। बेशक, सही फरमाया आपने। एंड थॉट तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, नो डाउट। एंड जैसा कहा भी है कि भाई अगर प्रेम नहीं अपनाओगे तो फिर रह जाओगे आप उसी पतझड़ की बारिश में, उसकी आगोश में, और प्रेम का अगर बरसात दोबारा नहीं लिया तो ऐसा होता है। सो प्रेम की बरसात बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ज़रूरी होती है। एंड इसके बाद, चूँकि काफ़ी सारे मैसेजेस हैं और काफ़ी सारी बातें भी होने वाली है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। और सॉन्ग जो हैं वो ज़बरदस्त, जानदार, शानदार होने वाले हैं। एंड आज आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आज है मंडे मॉर्निंग। और आपको पता है कि मंडे मॉर्निंग में कितनी सारी अपडेट्स होती हैं जो आप तक पहुंच जाती हैं। सो फिलहाल अभी अब क्या होने वाला है, ऑफकोर्स ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं मॉर्निंग वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: Delicious
3: है ना? Let's dine, come and join Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: भाई साहब, आज है 11 मई और 11 मई को अब हम बताने वाले हैं कि आज के दिन की डे हिस्ट्री क्या है। इस हिस्ट्री की मिस्ट्री को सुलझाते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम पर।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

मैंने फेवरेट फूड में पूछा, सुसविता जी ने बताया कि उनको बहुत कुछ पसंद है, लेकिन अभी फूड नहीं बताया आपने। चलिए फूड बताइए कि कौन कौन से फूड पसंद है। फिलहाल हम बता दें, आई लव फूड डे जो मैंने देखा कि सेलिब्रेट किया जाता है, वो 9th of September को किया जाता है। और आज नहीं बल्कि आप रोज़ जब चाहे तब जो चाहे वो सेलिब्रेट कर सकते हो। उसमें क्या यार, फेवरेट फूड ही तो खाना होता है। तो ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी है सविता जी। एंड फिलहाल हम आपको ले चलते हैं आज की डे हिस्ट्री की तरफ और बताते हैं 11 मई का इतिहास आखिर कितना ज़्यादा बड़ा है और कहाँ कहाँ पर क्या कुछ हुआ आज के ही दिन। सबसे पहले बता दें कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया में आज पहली बार बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई। वही पॉलिसी भैया करा लीजिए, सही रहेगा। और इसकी शुरुआत हुई है 1752 में 11 मई को, आज ही के दिन। इसके अलावा मैसूर और ब्रिटेन के शासक टीपू सुल्तान के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर भी आज ही के दिन हुआ था। वो दिन था 11 मई 1784। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इंग्लैंड से क्यूबेक जा रहे जहाज 1833 में लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराने पर अटलांटिक सागर में डूबने से 215 लोगों की मौत हो गई थी आज के ही दिन। इसके अलावा आज ही के दिन दिल्ली में 1857 को सिपाही विद्रोह भड़क गया था। आज की ही बात करते हैं और आज के ही दिन आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध के दौरान भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के अधिकारियों से दिल्ली पर 1857 में कब्जा कर लिया था। आज के ही दिन रेडियो स्टेशन KGU का 1922 में हवाई में प्रसारण शुरू किया गया था, वो भी दिन आज का ही था। इसके अलावा आपको बता दें, आज के ही दिन पहली बार गर्भ निरोधक गोली बाजार में 1960 में अवेलेबल कराई गई थी। आज के ही दिन आपको बता दें कि फ्रांस ने 1988 में परमाणु परीक्षण आज के ही दिन किया था। इसके अलावा आपको हम बता दें, आज के ही दिन यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का 1998 में बना था। भारत ने राजस्थान के पोकरण में 3 परमाणु परीक्षण भी आज ही के दिन 11 मई 1998 में किए। और जनसंख्या घड़ी के मुताबिक सन 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची थी। इसके अलावा हम आपको बताते चलते हैं, ये आज ही के दिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश SH कपाड़िया को 2010 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 38वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी और वो इस पद पर 29 सितंबर सन 2012 तक रहे थे। इसके अलावा आपको हम बता दें, आज ही के दिन ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता डेविड कैमरून के नेतृत्व में बनने वाली नई गठबंधन सरकार 2010 में लिबरल डेमोक्रेटिक नेता निक क्लेग उप प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था। सो ये रही आज के दिन की जो इवेंट्स हुई, जो घटनाएं रही। इसके अलावा किन महान हस्तियों की पैदाइश हुई, कहानीकार और लेखक सआदत हसन मंटो एक बहुत बड़ा नाम है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ, यानी 11 मई 1912 में हुआ। आज के ही दिन भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणाली साराभाई का जन्म भी आज ही के दिन 1918 में हुआ। आज के ही दिन आपको बता दें कि वेस्टइंडीज़ के विकेट कीपर डेविड एलन का जन्म भी आज के ही दिन 1937 में हुआ। और हिंदी फिल्मों के अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 1950 में आज के ही दिन हुआ। इसके अलावा पंजाबी गायक अमरिंदर गिल का जन्म भी आज के ही दिन यानी 11 मई 1976 में हुआ। इसके अलावा अमेरिकी लेखक लुइस बी पॉलर का निधन आज के दिन 1994 में 11 मई को ही हुआ। और भोपाल रियासत की राजकुमारी और भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन भी आज के ही दिन 11 मई सन 2002 में हुआ। सो ये रही आज के दिन की डे हिस्ट्री, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और साथ ही साथ किनकी पैदाइश हुई और किनकी आज पुण्यतिथि है। आई होप कि आपको ये जानकारियां ज़रूर समझ में आई होंगी।
फिलहाल वक्त हो गया है आपको ले चलने का एक ज़बरदस्त सॉन्ग से मिलाने का, तो चलिए भाई सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग वाला टाइम है, मंडे का शो है, सो ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट तो बनता है बॉस।

0: मैं हूँ फेसबुक और मैं सबको जानता हूँ।
1: मैं हूँ गूगल और मेरे पास सब कुछ है।
2: मैं हूँ व्हाट्सएप और मैं हूँ सबकी जान।
3: मैं हूँ इंटरनेट और मेरे बगैर तो तुम सब कुछ भी नहीं हो।
0: मैं हूँ चार्जर, आवाज नीचे।

इतना ज़्यादा सोडा बनाया कि भाई अब क्या ही कहने। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आपको तो पता है कि मंडे है, तो इतनी सारी अपडेट्स के बीच में अगर आपके शहर गोंडा की अपडेट ना दिया जाए तो भाई बात मुकम्मल तो नहीं होगी। तो चलिए हम भी बताने वाले हैं कि गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उससे पहले दीवानी को मस्तानी बना देते हैं फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी। तो इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बताते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके शहर गोंडा में।

0: हाँ जी, तो चलिए भाई, अब वक्त आ गया है आपको सिटी अपडेट की तरफ ले चलने का, और आज सिटी अपडेट में काफ़ी कुछ होने वाला है। जी हाँ, आज बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो आप तक जानी होगी, और ऑफ कोर्स उसमें से बहुत कुछ आपके लिए डायरेक्ट होगी। तो चलिए बताते हैं क्या है आज गोंडा के सिटी अपडेट में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो आपको बता दें कि भाई अपना मंडल जो है वो देवी पाटन मंडल है, जिसके लिए 18 करोड़ 35 लाख रुपए मंडल के जो मार्ग हैं यानी रास्ते उसकी मरम्मत के लिए आए हुए हैं, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में काम होना है। सो देवी पाटन मंडल में 40 ऐसे रास्ते हैं जिसके लिए 18 करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इससे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में चल रहे जो सड़क निर्माण है उसमें तेज़ी आएगी और ये पैसे राष्ट्रीय सड़क निधि के तहत जो मार्ग स्वीकृत हैं उस पर खर्च होगा। सो गोंडा में निर्माण खंड 2 और प्रांतीय खंड की 6 सड़कों के लिए बजट आवंटित किया गया है। इसमें मौलाना डीहा से बरबटपुर बाजार, पीडी बंधा से लालापुरवा कौंटहा डीहा संपर्क मार्ग, टिया थोक बाबागंज से लहशीशा ये संपर्क मार्ग इन लोग को बनाया जाएगा और इसी रास्तों की मरम्मत के लिए स्वीकृत मिली थी। कार्यदायी संस्था नामित भी की जा चुकी है और बजट के अभाव में काम रुका हुआ था। शासन स्तर से एक और किश्त जारी होने के बाद अब तेज़ी आएगी काम में, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बिजली विभाग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। यानी क्षेत्र की आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो AEJEE के घर की भी कट जाएगी बिजली। जी हाँ, ऐसा कहना है कहीं ना कहीं मुख्य अभियंता का। सो आपको हम बता दें कि देवी पाटन जोन के जो मुख्य अभियंता हैं, इन्होंने धानेपुर और महनोन के अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी के घर की बिजली काटने के आदेश दे दिए हैं। बीते 4 मई को आंधी और बारिश के चलते चूंकि दोनों एरियाज़ में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी, 6 दिन बाद भी आपूर्ति नहीं हुई। इस पर मुख्य अभियंता ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए उनके आवासों की बिजली काटने का आदेश दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कैंप में स्मार्ट मीटर से जुड़ी प्रॉब्लम्स

बता सकते हैं, ये आपके बहुत काम की जानकारी है। सो स्मार्ट मीटर की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए 15 मई से 30 जून तक XEN और SDO कार्यालय में स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे। टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1912 1912, इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस पर भी आपको हो सकता है कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाए। इसके अलावा आपको हम बता दें कि सड़क का शिलान्यास भी हुआ है। जी हाँ, सो कल संडे को गोंडा बहराइच मार्ग पर जो ठड़वरिया से कोहड़ी तक है 6 किलोमीटर लंबा जो सड़क है, उसका शिलान्यास किया गया है। और पिपरा बाज़ार में वहाँ के निवासियों ने बताया कि फ़िलहाल ये मार्ग जो है वो मल्लापुर उसरैना मार्ग को जोड़ता है, इससे दर्जनों गांव के लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके अलावा बता दें, अगली अपडेट जो है वो मेडिकल कॉलेज गोंडा से जुड़ी हुई है और इमरजेंसी वार्ड में 6 जो बेड हैं वो ICU बनाने जाने की बात सामने आ रही है। सो मेडिकल कॉलेज से जुड़े बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब जो गंभीर मरीज़ हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुट गया और इसी के क्रम में हॉस्पिटल के जो पुराना भवन है उसमें 30 बेड की इमरजेंसी सेवाओं के लिए विकसित किया जा रहा है, जहां 6 बेड की ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट तैयार की जाएगी। सो हॉस्पिटल में अब तक वयस्क मरीज़ों के लिए जो है वो ICU की सुविधा अवेलेबल नहीं है। ऐसे में जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको लखनऊ या फिर बड़े मेडिकल कॉलेजेस रिफ़र करना पड़ता है। ICU के बन जाने से सड़क हादसे, हार्ट अटैक और सांस से रिलेटेड जो बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए इमरजेंसी की सिचुएशन में मरीज़ों को तत्काल बेहतर इलाज मिल सकने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मेडिसिन विभाग में 20 बेड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी HDU तैयार करने का भी प्लान है। इसमें 2 बेड डायलिसिस के लिए रिजर्व किए जाएंगे और इस यूनिट में वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन सपोर्ट सहित जो गंभीर मरीज हैं उनकी निगरानी के लिए ज़रूरी आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। सो हॉस्पिटल प्रशासन का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से ऐसे मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें सामान्य वार्ड से ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है। सो ये रही अगली अपडेट। इसके अलावा आपको ले चलते हैं उसके बाद की अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो नेपाल के सीमावर्ती इलाके से आ रही है, क्योंकि नेपाल सरकार ने जिस तरह का रुख अपना कड़ा कर दिया है, सो अभी फ़िलहाल अगर हम पड़ोसी ज़िले यानी बलरामपुर के जरवा और तुलसीपुर की बात करें तो इसका असर साफ देखा जा रहा है, जिससे ख़रीदारों की जो संख्या थी वो घट गई है और वहाँ के पर्यटन क्षेत्र जो हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा खाली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेपाल सरकार की तरफ से सीमा प्रबंधन को लेकर के लागू किए गए नए नियमों का असर अब भारत नेपाल की सीमा से जुड़े बलरामपुर ज़िले के बाज़ारों और जो उसके पर्यटन स्थल हैं वहाँ भी दिखाई देने लगा है। सो नेपाल में एंटर करने के लिए सख्त भंसार की अब चूँकि व्यवस्था की गई है और निजी वाहनों को बहुत ही लिमिटेड आवाजाही और बिना MRP वाले सामान पर रोक की वजह से जो सीमाई व्यापार है, पर्यटन दोनों को एक तरह से झटका लगने की बात बताई गई है। कोयलावास बॉर्डर पर कई मालवाहक वाहन जांच के दौरान रोके भी गए हैं, जबकि नेपाली ग्राहकों की आमद घटने से सीमावर्ती की बाज़ारों में कारोबार ठप पड़ने लगा है। ये अगली अपडेट थी जो कि हमने आप तक पहुँचा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट है वो सिलेंडर से ही जुड़ी हुई है, चूँकि दोहरी कतार से काफ़ी परेशानी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। ज़िले में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत कम होने का अभी भी नाम नहीं ले रही है। गैस एजेंसियों की जो व्यवस्थाएं हैं उससे कंज्यूमर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सो कल भी शहर को सुबह से ही सिलेंडर लेने वालों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को पहले अम्बेडकर चौराहा मौजूद एजेंसी पर लाइन लगाकर पर्ची कटवानी पड़ी, इसके बाद पंत नगर पहुंचकर फिर से घंटों कतार में खड़ा होना पड़ा। सो जिला प्रशासन की तरफ से होम डिलीवरी की जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए, लेकिन कई एजेंसियों पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। सो कंज्यूमर्स का आरोप है कि एजेंसी जो संचालक हैं मनमानी की वजह से इन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है और पूरा दिन खराब हो रहा है।
इसके अलावा चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो जन सुनवाई की आ रही है नगर पालिका से। सो अभी 10 बजे से शुरू हो चुकी है नगर पालिका परिषद गोंडा के सभागार में अवर अभियंता की जन समस्याओं की सुनवाई। जी हाँ, सो नगर पालिका में जो अवर अभियंता हैं वो जन सुनवाई कर रहे हैं उसी के सभागार में। अगर आप कभी ऐसा कोई भी मसला हो जो नगर पालिका से जुड़ा हो तो आप भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि देवीपाटन जोन में लगाए गए 2,11,000 प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्ट पेड कर दिए गए हैं। सो कंज्यूमर्स को हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में SMS और WhatsApp से बिजली बिल भेजा जाएगा। समय सीमा तक बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटा जाएगा। सो पावर कॉरपोरेशन ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म करके पोस्ट पेड जो एक प्रणाली है उसको लागू कर दिया है। अधिकारियों के हिसाब से देवीपाटन जोन के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में कुल 14,50,000 विद्युत के कंज्यूमर्स हैं। इनमें से अब तक 2,20,000 स्मार्ट मीटर्स लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,11,000 जो कंज्यूमर्स हैं इनके मीटर पहले ही प्रीपेड मोड पर चल रहे थे। प्रीपेड व्यवस्था में बैलेंस समाप्त होते ही बिजली आपूर्ति चूंकि खुद ही कट जाती थी, इससे लेकर के कंज्यूमर्स की शिकायतों के बाद प्रदेश सरकार ने प्रीपेड व्यवस्था समाप्त कर पोस्ट पेड सिस्टम लागू किया है। एंड इसके अलावा आपको हम बता दें कि रोडवेज की तरफ बनाया जाए मिनी स्टेडियम, ऐसा कहना है गोंडा वासियों के, क्योंकि शहर के अदम गोंडवी खेल मैदान में मिनी स्टेडियम जो है उसका काम प्रस्तावित है और वहाँ पर सामान भी गिरवा दिया गया है मिनी स्टेडियम के लिए। जिस जगह का सिलेक्शन किया गया है उससे खेल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट होने की बात सामने आ रही है। खिलाड़ियों की तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा ऐसा भी कहा जा रहा है। सो खिलाड़ियों के साथ ही खेल प्रेमियों ने मिनी स्टेडियम का जो निर्माण है रोडवेज की तरफ कराने की मांग की है। जानकी नगर बहराइच रोड के जो निवासी हैं वहाँ उनका कहना है कि अदम गोंडवी खेल मैदान में कचहरी रोड की तरफ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है जबकि पीछे रोडवेज की तरफ पर्याप्त ज़मीन है और अनुपयोगी भी है, वहाँ पर निर्माण होना चाहिए। इससे इधर स्टेडियम बनाया जाएगा तो खिलाड़ियों की तैयारियाँ भी प्रभावित होंगी, ट्रैक प्रभावित हो रहा है। सुझाव ये भी है कि अगर बस स्टॉप की तरफ हो जाए तो खिलाड़ियों की जो फैसिलिटी है वो मिलेगी। क्रिकेटर का भी कहना है कि अदम गोंडवी खेल मैदान में कई सालों से 40 से 50 खिलाड़ी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल क्रिकेट के साथ ही खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं। मिनी स्टेडियम का निर्माण खाली जगह में नहीं कराया जा रहा है, ट्रैक बना हुआ है जिस पर खिलाड़ी दौड़ते हैं। जहां मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है उधर का ट्रैक छोटा हो जाएगा। सो यहाँ फुटबॉल क्रिकेट सहित बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाएंगी और उन्होंने अधिकारियों पर इस पर ध्यान देने की बात कही है। सो फिलहाल ये जो अपडेट्स थी ये गोंडा से थी जो कि आप तक पहुंचा दी गई है। आई होप कि इसमें से काफ़ी अपडेट्स आपके काम की रही होंगी और आपको भी ये पता चल गया होगा कि भाई गोंडा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपके सिटी अपडेट में। चलिए फिलहाल वक्त है अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ बढ़ने का और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
11: अरे सुना?
12: क्या?
11: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
12: वाओ!
11: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
13: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: सो भाई साहब, इतनी सारी जरूरी अपडेट्स के बीच में एक और भी जरूरी अपडेट है जो आप तक पहुंच जानी चाहिए, एंड इसके बाद जब वापस आने वाले हैं तो आपको एक छोटी सी स्टोरी से एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। वैसे आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला, लेकिन उससे पहले आइए बताते हैं कि बड़ी अपडेट क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

सो अपडेट ये आ रही कि भाई महंगे हो सकते हैं रोज़ की ज़रूरतों के कई सारे सामान। जी हाँ, सो रोज़मर्रा के जो सामान हैं जिसमें साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट पैकेट बन जो खाने वाले एक सामान हैं, ये महंगे होने से आम जनता को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है। सो कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई, पैकेजिंग और उसके रॉ मटेरियल्स और ईंधन की जो लागत है, इसमें बढ़ोतरी की वजह से मुनाफे पर पड़ रहा दबाव को कम करने के लिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG कंपनियां जो है वो प्रोडक्शन में अपनी कीमतों को फिर से बढ़ाने की तैयारी में हैं। सो ये जो बढ़ोतरी है ये फेजेस वाइज तरीके से होगी। सो कंपनियों के अधिकारियों ने हालिया तिमाही नतीजों के दौरान इस बात का संकेत दिया है कि वो पहले ही 3-5% तक कीमतें बढ़ा चुके हैं और लागत का दबाव बने रहने पर आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है। सो कंपनियों का कहना है कि कहीं ना कहीं वैश्विक जो ये संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला यानी ये जो चेन है सप्लाई चेन, इसके प्रभावित होने से कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपये में कमज़ोरी ने भी दबाव बढ़ा दिया है और इसका असर अब खाने की चीज़ों पर, व्यक्तिगत की जो देखभाल है, पीने की चीज़ें, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, कई सारे एरियाज में दिखने वाला है। सो कंपनियां लागत दबाव से निपटने और मुनाफा बनाए रखने के लिए पैकेट बंद जो भी उत्पाद हैं उसकी मात्रा घटाने की भी अपनी रणनीति अपना रही हैं और इसके अलावा छूट और प्रचार खर्चों पर भी कटौती, भंडार प्रबंधन को मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखला को ज़्यादा कुशल बनाया जा रहा है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर बढ़ती लागत का बोझ पड़ने की काफ़ी ज़्यादा आशंका जताई जा रही है। हालांकि 5, 10 और 15 रुपए वाले छोटे पैक बाज़ार में बनाए रखने की कोशिश है ताकि बिक्री पर असर कम पड़े। ये अपडेट ज़रूरी थी जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। तो भैया आप भी इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर अभी तक आप अपनी सैलरी को लेकर के प्रबंधन नहीं करते रहे हैं तो मुझे लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें महंगी होती जा रही हैं इसमें हमें अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ फंड्स और हमारे खाने पीने, हमारे स्वास्थ्य के लिए निकाल कर रखना होगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमको पहले से ही थोड़ी सी तैयारी बनाकर रखनी ज़रूरी है। सो फिलहाल आइए चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। वापस से एक छोटी सी कहानी आकर बताते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। फिलहाल आपने ट्यून किया है गोंडा FM 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके मंडे स्पेशल मॉर्निंग शो में सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। डिलीशियस
2: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-8840-3395 84। 88404-3395 84। अब सपने होंगे साकार।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, टुकुर टुकुर अगर देख लिया है तो चलिए आपको ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी की तरफ, जो कि टुकुर टुकुर करके आपको बताएगी कि गुस्सा आखिर क्या है और गुस्से को किस तरह से इस कहानी में खत्म किया गया। आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे आप, क्योंकि कहीं आप भी मानते होंगे हाँ भाई, ये गुस्सा जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और कई बार बाद में पता चलता है इसका परिणाम, उसके बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सुबह ही ये कहानी जो है एक फादर और उसके गुस्सैल बेटे की है। दरअसल एक बार यूं हुआ कि एक छोटा सा लड़का था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था छोटी छोटी बातों पर। अब वो होता क्या था कि वो दूसरों पर चिल्लाने लग जाता था। सो उसके जो फादर थे वो उसकी इस आदत से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को एक सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया कि भाई इसको ज़रा अब हमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सो फिर क्या था, फादर ने बेटे से कहा, अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस लकड़ी की बाड़ में कील ठोकना। यानी एक लकड़ी की बाड़ दी और कहा कि इसमें कील ठोकना। और फिर फादर ने उसे एक हथौड़ा और कीलों से भरा एक बैग भी दे दिया। पहले दिन की बात है जब उस बच्चे को बहुत दिन उसका ख़राब था, उसने गुस्से में आकर के बाड़ में 16 कीलें ठोक दी। जब 16 कीलें ठुक गई तो उस बच्चे को एहसास हुआ कि एक दिन में ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, 16 बार गुस्सा इतनी तेज़ सुबह से शाम तक के ही बीच में। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में लड़के ने अपने गुस्से को काबू करना शुरू कर दिया और वो समझ गया कि गुस्से को कंट्रोल करना कील ठोकने से ज़्यादा आसान है। यानी गुस्सा आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, इवन कील ठोकने से भी ज़्यादा आसान है। सो करीब एक महीने के बाद लड़का उस मकाम पर आखिर पहुँच ही गया जहाँ उसे गुस्सा आना लगभग बंद हो गया था। अब उस बाड़ में कीले ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खुश होकर वो दौड़ता हुआ अपने फादर के पास में आया। उसने सारी बात अपने फादर को बताई। फादर मुस्कुराए और बोले, अब जाओ ज़रा बाड़ में लगी कीले सारी जो लगी हैं उनको उखाड़ दो। फिर क्या था, लड़का गया, उसने वैसे ही किया, बाड़ में लगी सारी कीले उसने उखाड़ दी। सो जब लड़का बाड़ के पास खड़ा था तब उसके फादर ने कहा, बेटा क्या तुम्हें बाल पर पड़े ये निशान दिखाई दे रहे हैं? कीले निकालने के बाद भी निशान हमेशा रहेंगे। सो फादर ने कहा कि ठीक ऐसा ही तब होता है जब हम गुस्से में दूसरे को चोट पहुंचाते हैं अपने शब्दों से या फिर अपने बिहेवियर से। लोगों को दर्द होता है और वो दर्द जिंदगी भर के लिए उनके दिल पर निशान छोड़ देता है। भले ही बाद में तुम माफ़ी मांग लो लेकिन कुछ घाव कभी पूरे नहीं भरते हैं। सो इस कहानी ने हमको काफ़ी कुछ बता दिया, अपने गुस्से पर काबू करना, वरना गुस्सा हम पर ही काबू करने लग जाता है। माफ़ी जो है वो घाव भर सकती है लेकिन निशान जो है वो नहीं मिटा सकती। सो बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि शब्द किसी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सो गुस्से पर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी और ताकत की निशानी है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ये आम तौर पर लोग नहीं कर पाते हैं, भड़ास निकाल देते हैं। सो ये आपकी ताकत की प्लस समझदारी की निशानी है। सो एक छोटी सी स्टोरी ने हमको काफ़ी कुछ सिखा दिया। इसी तरह लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको वक्त बेवक्त सिखाती रहती है और हम शायद सीखने के लिए उतनी जल्दी तैयार हो नहीं पाते हैं। पर देखिए ना, छोटी सी स्टोरी ने कितनी बड़ी बात बता दी। आई होप कि ये कहानी आपको समझ में ज़रूर आई होगी और कहीं ना कहीं इस कहानी से आपको भी समझ में आएगा कि कील ठोक देने के बाद निकल तो जाती है लेकिन निशान हमेशा पड़े रहते हैं। सो भले ही माफ़ी मांग लिया जाए लेकिन जो ठेस पहुँची है किसी को या किसी ने हमको पहुँचाई है वो हमेशा याद रहता है। इसलिए करने से पहले ही सोच लो, क्योंकि वो निशान तो पढ़ ही जाते हैं। यही कहना है आज की इस छोटी सी स्टोरी का। फिलहाल ये स्टोरी अब आपको कितना मुतासिर कर पाई, कितनी अच्छी लगी या कैसी लगी, ये तो आप ही बताने वाले हैं कमेंट करके, क्योंकि हम लेने वाले हैं एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और कुछ नए मैसेजेस आए हैं जिनको हम आ करके पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं मिल करके एक साथ आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग। और एक बार वापस से एंट्री कर ली है आपके अपने मॉर्निंग शो का आरजे अदनान ने, मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में। फिलहाल कुछ मैसेजेस हैं और कंटेंट्स भी आ चुके हैं, तो चलिए भाई रुख करते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और उसके बाद बताते हैं कि आज कंटेंट्स में किसने क्या कुछ भेजा है मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई, पहला जो मैसेज उसके बाद आया है, आपने पढ़ा था, धर्मेंद्र मोहन जी का फ्रॉम आवास विकास। लिखा है आपने, अदनान सर मेरा प्यार भरा आदाब आपको और गुड मॉर्निंग गोंडा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र मोहन जी, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। तीरथ प्रसाद सोनी जी हैं, सुप्रभात भाई जी, सुप्रभात आपको भी। और कैसा क्या आप सुन मिल गया बताया नहीं। आशु मिश्र जी लखनऊ से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। रफ्तार लिखते हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम है रफ्तार मॉर्निंग के स्पेशल शो में। गुस्सा वाली कहानी, बहुत अच्छी कहानी लिख, थैंक यू सो मच। सविता दुबे जी, प्रीति शुक्ल जी ने कहा प्रेरणादायक स्टोरी, थैंक यू सो मच। राकेश कुमार जी आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। मनी शर्मा मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग मनी, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड आशु जी ने सुप्रभात सभी लोगों को बुलाया, थैंक यू सो मच। सो फिलहाल वक्त है आपके भेजे गए कॉन्टेंट की तरफ चलने का। और गुंजन जौहरी जी सहारनपुर से लिखती हैं, हर पल अपनी माँ को खुद से दूर जाते देखा है, वो हर लम्हा आज भी दिल में कहीं जिंदा हैं, उनकी दुआओं की खुशबू अब भी सांसों में बसी है, उनकी कमी का दर्द मेरी रूह में आज भी जिंदा है, अब जब भी गिरती हूँ खुद ही संभल जाती हूँ, क्योंकि अब चारों तरफ सिर्फ दुनिया है

जड़ प्रेम सदा वही लाए, दुष्ट पापी हृदय वाले मन। मैं सांची कहूँ इस जमाने को, भाए न सांची प्रीति की रीत। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मिलता है सच्चा प्रेम, तो सवर जाता है उनका घर परिवार और मस्त मगन संसार। क्या बात है, बहुत प्यारे अंदाज में आपने लिखा है सच्चा प्रेम, बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा ही लगता है कि आप एक गृहिणी हैं, घर पे आप किचन में अक्सर काम करते हुए 89.6 FM को सुनती हैं। चूँकि 89.6 FM के मॉर्निंग शो की यह पहल है कि आपके भेजे गए कंटेंट्स को लें, शायद ये बड़ी आम सी बात लग सकती है, पर किसी के लिखे जज्बात वक्त निकाल करके इन सारी एज के बाउंडेशंस, काम के बाउंडेशंस, क्या इन सब से हट करके आपकी अपनी एक पहचान है, आप एग्जिस्ट करती हैं और आप लिखती हैं उस चीज़ को, आप दिखाती हैं अपने इन अल्फाज में, इन शब्दों में पिरोती हैं, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। सो थैंक्स टू एवरीवन जो लोग भी लिखते हैं, पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छा लगता है कि आपका लिखा हुआ हम तक आता है और हम आप सभी लोगों तक पहुंचा देते हैं। फिलहाल आज का मंडे स्पेशल शो कैसा लगा हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। धर्मेंद्र जी लिखते हैं, गुस्सा वो चीज़ है जो आदमी को अंदर अंदर खोखला कर देता है, उसका ब्रेन वॉश कर देता है और सब कुछ नाश कर देता है। बेशक सही बात है, शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और गुस्सा छोड़ करके थोड़ा सा स्माइल करिएगा, इस गाने को एंजॉय करिएगा और बने रहिएगा अपना गोंडा FM 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है मॉर्निंग शो के बाद गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब?
10: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
13: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीतों की माला पिरोई गई है और हमारी प्यारी किरण दी की आवाज में है, जिसका साथ देने आ रही हैं खुशबू जी, जिमी जी, समता जी और स्वयं किरण जी। हमारी इस बार के गांव के गूंज का जो एपिसोड का नाम है वो है गोंडा। आइए तो चले हम गोंडा की गलियों का भ्रमण करेंगे सॉन्ग के साथ में।
14: श्वेता, खुशी, जिम्मी, कहाँ हो सब? अरे इतना सन्नाटा क्यों है और सबके चेहरे उतरे हैं, क्या हुआ? लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, धनिया की चटनी भी है।
15: कोई बात नहीं, हम अकेले ही खा लेते हैं।
16: हम लोग दुखी हैं, इसका मतलब ये थोड़े के पकौड़े नहीं खाएंगे।
17: जब इतनी गर्मी पड़ती थी तब हम लोग गांव जाते थे, आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो लगा टेढ़ी नदी में बोटिंग करेंगे तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
8: अब ना किरण दीदी का गाना सुन पाएंगे। हफ्ते में एक ही दिन तो होता है जब हम फ्री होते हैं। अब बताइए कैसे लोकगीत सुने हम
14: सब। अपने अपने मोबाइल यहीं छोड़ो और चलो मेरे साथ। सब हमारा हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो। कोई चैटिंग मत करना, बस चुपचाप चलो।
16: कहाँ ले चल रही है भाई, हम लोग का किडनैप तो नहीं हो जाएगा?
17: बताइए ना किरण दीदी।
8: वहाँ हम सब बारिश में भीगने चल रहे हैं। मजा आ गया, कितनी तेज बारिश हो रही है।
14: देखो देखो, समता छिप रही है। उसे बारिश से डर लगता है। सब पकड़ के ले आओ उसे।

0: आज पहली बार बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बारिश हो रही है। गाने पर डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है।
1: सच में अनोखा अनुभव है। इतनी तपती गर्मी के बाद ठंडी फुहार, बहुत मजा आ रहा है। किरण दी, एक और लोकगीत हो जाए।

0: चलो पानी रुक गया है, सब लोग कपड़े चेंज कर लो और देखो टेबल पर कितनी सारी चीजें सजा दी है मालती ने खाने के लिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है,
1: नमकीन पूड़ी, अदरक तुलसी की चाय, लहसुन का अचार, आम का गलका, मुंह में पानी आ रहा है।
2: अरे मेरी प्लेट क्यों हटा रहे हो तुम लोग?
3: पहले रलिया बैरन पिया का गाना, फिर कोई और सुनाइएगा।

0: यह लीजिए गर्मा गर्म पूरी, आज का दिन तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे मालती, हाथ में तुमने गुदना गुदवाया है क्या?
1: ये तो बहुत पेनफुल होता है मालती, ध्यान रखना, भीगने मत देना हाथ को, इन्फेक्शन हो सकता है।
0: हमें तो देख कर दर्द हो रहा है, मालती को कितना दर्द हुआ होगा, पर बहुत सुंदर लग रहा है।
2: अरे गुदवाई लो हो गुदनवा, गुदवाई लो।

0: हर चीज पर आपके पास लोकगीत होता है, कानों को कितने मीठे लगते हैं।
1: आप लोग हमको गोंडा का बाजार घुमा देंगी? बहादुर की लड़की आई है शादी के बाद पहली बार, उसको मुझे कुछ देना था तो सोचा वहाँ से कुछ खरीद लूं।
2: चलो हम चलते हैं गोंडा के चौक बाजार में, कपड़े की चूड़ी की बहुत सी दुकान है।
0: पर सब ई रिक्शा से चलेंगे, पहले किरण दी गाने के जरिए गोंडा बाजार घुमाएंगी, फिर शॉप पर लेकर चलेंगी।

0: हम लोग बाजार जा रहे हैं मालती, तुम आराम करना और अपने हाथ का ध्यान रखना।
1: खुशबू, गोंडा में दो बाजार हैं, एक रानी बाजार और दूसरा चौक बाजार, दोनों बहुत पुराने हैं।
2: अब तो दुखरनाथ मंदिर से GGIC तक कई ब्रांडेड शॉप खुल गए हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं।
3: लीजिए, ई रिक्शा आ गया, चलो सब लोग वहाँ। 89.6 FM पर गांव की गूंज चल रहा है। समता मैम, आपका फेवरेट लोकगीत।

0: यह रघुनंद मार्केट है, इसके बाद पीपल चौराहा, यहाँ से सब पैदल चलते हैं, तभी बाजार का मजा आएगा।
1: लौटते समय जय माता दी हॉट एंड कूल पॉइंट पर कॉफी पियेंगे, अभी तो पेट बहुत भरा है।
2: जगत, झाबड़ा, सेठ, लक्ष्मी, यह सब बहुत पुरानी शॉप है। चलिए चूड़ी वाली गली में चलते हैं।
3: ये गली तो कितनी पतली और कितनी सकरी है, और इतनी सारी शॉप्स। ये तो लखनऊ के अमीनाबाद से भी पतली गलियां हैं।
0: हाँ, चूड़ी की शॉप, लेस बहुत सुंदर मिलती है यहाँ, शादी का हर सामान मिलता है, और इन शॉप में बर्थडे पार्टी का सामान भी है, और ये शॉप है जहाँ कॉस्मेटिक सामान है।
1: खुशबू, यहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा, पूरी गली में ज्ञानस्थली रेडियो सब सुन रहे हैं। हाँ भाई, यह वही किरण दीदी है जिनका गाना आप सभी सुन रहे हैं।

0: चूड़ी वाली गली को घूमने में तो लगता है पूरा दिन चला जाएगा। चलिए, हमारे मतलब भर का सामान हो चुका है,
1: चलिए फिर वापस चलते हैं। सीधे सीधे चलिए, हम लोग फल वाली मंडी के पास निकलेंगे।
2: ये गली चार अलग अलग सड़क पर खुलती है, क्रॉस के शेप में है।
3: यहाँ सारी बुक्स स्टेशनरी की शॉप है, इसके पीछे सब्जी मंडी, चलो ई रिक्शा लो, तुम्हें राधा कुंड घुमा दे।
0: हाँ, याद आया, कृष्णा मैम ने एनएसएस की स्टूडेंट्स को भेजा था इस कुंड की सफाई के लिए।
1: अब तो यह बहुत सुंदर हो गया है, दीपावली पर दिए भी जलते हैं।
2: हेलो, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो गांधी पार्क चलते हैं। वहाँ ना एक लेडीज क्लब का प्रोग्राम्स है जिसके लिए बुला भी रहे थे।
3: चलिए चलिए, वहाँ तो बहुत मजा आता है, खूब खाने को मिलेगा, सब नाचेंगे गाएंगे, खूब मस्ती करेंगे।
1: वहाँ महात्मा गांधी की स्टैचू है, वह एरिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। क्लियर इंडिया मिशन के चलते इसे बहुत साफ कर दिया गया है।
2: जिम्मी खुशी समता, सबसे मिलो तुम लोग। रोली, तुम इन लोगों का ध्यान रखना। लाओ लाओ लाओ ढोलक, बस दो मुझे दो। इस सुंदर मौसम में धमाल करते हैं।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे

0: Sultana Convent School, achiever of the best school certificate at national level. Admissions open from playgroup to class 12. Specifications hain 10 plus 2 in all streams, science, commerce and humanities. Excellent infrastructure, smart class and digital class board, convenience facilities, scout guide, events, project and educational tour.
1: Aur session 2026-27 mein pehle 100 admissions par admission fee bilkul muft. Address hai Ravi Children's Academy near Dukharanath Mandir, Patel Nagar, Gonda. Sampark kare 9450-944-999.
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

और तुम्हारा ओटीपी है मेरा निशाना, क्योंकि भाई आजकल जमाने बदल चुके हैं, डिजिटल हो चुका है इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ आ रहे हैं बहुत सारे स्कैम्स एंड तो भाई स्वागत करते हैं आप सभी का 89.6 FM, ये गोना शहर की धड़कन पर आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान, असली आवाज है आपकी अपनी आरजी उन्नति की। एंड आज है मंडे, यानी कि मंडे का स्पेशल वाले आफ्टरनून प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं, जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, जिसमें है एंटरटेनमेंट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन और न जाने कितनी सारी गॉसिप। और गॉसिप में आज भाई आजकल नई चीज एक जो सुनने में आ रही है वो ये हो रहा है कि लोगों की गणना की जा रही है, यानी कि जनगणना हो रही है। हालांकि अभी तक हमारी नहीं हुई है और हम बैठ के बस यही सोच रहे हैं कि क्या हम जनगणना के लिए भी नहीं बने हैं, बट बने तो हैं ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है। और अगर आपकी गणना करने कोई और नहीं आ रहा है भाई साहब, तो अपना फ़ोन उठाइए और फ़ोन उठाकर कीजिए, और अगर कोई आ रहा है तो मुबारक हो। बट ये एक बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आजकल इस जनगणना के ज़माने में गणना तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पैसों की गणना भी हो रही है, जिसके बाद आपका अकाउंट खाली होने का पूरा पूरा चांस है। जी हाँ, हम आपको बता दें कुछ लोग ऐसे भी आपके द्वार पे नज़र आने वाले हैं जो दिखेंगे तो राम लेकिन होंगे अंदर से रावण। पूछेंगे आपसे बताइए अपना बैंक अकाउंट, और अगर आपने बहुत प्यारे प्यारे प्यारे राम बनकर उनको दे दिया जवाब कि मेरा बैंक अकाउंट ये है, आधार नंबर ये है, पैन कार्ड ये है, साथ में दे दिया ओटीपी, तो मुबारक हो आपका बैंक अकाउंट हो चुका है खाली। और इसका नोटिफिकेशन आपको तब आएगा जब आप घर में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लगा रहे होंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे ये कैसे हुआ, हम तो एटीएम भी नहीं गए थे, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, सिर्फ एक ही भाई साहब तो आए थे या फिर मैडम आई थी जिनको हमने कुछ दिया था, और कुछ देने में था सिर्फ 4 डिजिट का एक ओटीपी, उसी से हमारा पूरा काम खत्म हो चुका है। मेरी मेहनत की कमाई किसी की चालाकी की कमाई बन चुकी है। और अगर ऐसा आप अपने साथ नहीं चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए ज्ञान असली लाइव। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, बता रहे भाई आजकल क्या चल रहा है मार्केट में और किस तरह से आपको स्कैम से बचना है, नहीं तो आपकी गणना के साथ साथ आपके रुपयों की गणना करने के लिए न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से दूर दराज से मैप के अगले कोने से उठकर आपके घर तक आएंगे। तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है ना, क्योंकि सतर्क रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्टे ट्यून्ड।

0: जो तुम दे दो ओटीपी तभी तो बारिश होने वाली है पैसों की, अदरवाइज उनके पास अगर ओटीपी नहीं है तो पैसों की बारिश भी नहीं होगी और कंगाली क्यों ही छाई रहेगी। फिर मम्मियों के ताने मिलेंगे कि दाल आटे का भाव तब पता चल रहा है जब पैसा तुम्हारे पास नहीं है। फिलहाल आप सुन रहे हैं ज्ञानसी लाइव, मैं हूं आपकी आर्जुनति और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM की है गोंडा शहर की धड़कन। और धड़कन में आज किसी का दिल धड़कने वाला है क्योंकि जनगणना हो रही है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है ये गणना और इस गणना में भैया डिजिटल चल रहा है सब कुछ। प्लस हम आपको बता दें आजकल लोग स्वगणना भी कर रहे हैं। अगर आप भी कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी वैसी इधर उधर से लिंक उठ के आ रही है और आप उस पर क्लिक करके कर रहे हैं तो आपको भी होशियार होने की ज़रूरत है। वैसे मुझे पता है मेरे लिस्ट होशियार तो काफ़ी है, बस वो अलग बात है कि कभी कभार भोलेपन में इधर उधर कहीं भटक जाते हैं, तो ना भटकें आप, इसीलिए हम मौजूद हैं आपके साथ। चलिए तो बात कर लेते हैं गणना की। हम आपको बता दें भाई जनगणना के नाम पर यूं तो कई बार आपके घर वाले अंकल ने भी आकर आपसे पूछा होगा भैया घर में कितने लोग हैं, और आपने खुशी खुशी में आकर यह भी बोल दिया होगा मैं हूं, मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, प्लस मेरे घर में एक कुत्ता है उसको भी गणना में शामिल करो। अगर आप उनमें से ही एक है तो मुबारक हो क्योंकि हम ही उन्हीं में से एक हैं। हम भी अपने कुत्ते को काउंट कर लेते हैं, वो अलग बात है कि अंकल कहते थे कि नहीं बच्चा कुत्ते काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ इंसानों की गिनती करने हम आए हैं। और इसके बाद हमें समझ में आता था कि ओ ऐसा भी होता है क्या, हमको तो पता ही नहीं था। फिलहाल भारत में 2026-2027 की अगली जनगणना की तैयारी चल रही है। इसका फायदा उठाकर ठग लोग धोखा देने की संपूर्ण कोशिश में लगे हुए हैं, आपको ठगने की, आपको धोखा देने की। और धोखा इतना बड़ा वाला है, मुझे लगता है हर एक चीज़ धोखे ज़रूर खानी चाहिए लेकिन कभी धोखा नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं। वैसे जनगणना के नाम पर आपकी निजी जानकारी लेने का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपकी बैंक से जुड़ी सारी जानकारी आपसे मांगी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जालसाज जनगणना का अधिकारी बनकर आपके घर तक आते हैं, गेट खटखटाते हैं और आपसे कहते हैं भाई साहब घर के अंदर कौन है, अगर हमारे घर के अंदर कोई भोला भाला मित्र है और वो चले जाते हैं बताने के लिए कि हम हैं मौजूद और इस घर में इतने मेंबर और रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपसे पूछे जाते हैं और भी ज़्यादा सवाल। अब उन सवालों में कभी कभार घूम घाम कर आपकी बैंक डिटेल भी कर दी जाती है शामिल, और आप सोचते हैं कि चलो भाई 16 सवाल तो पूछे जा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा ही तो है और एक्स्ट्रा में क्या ही है, सरकार के पास ही तो हमारा डेटा जाएगा, वैसे भी तो सरकार सब कुछ देखती है। और आप इसी भोलेपन में उठा करके अपनी बैंक डिटेल्स दे देते हैं जिसमें आपका पूरा अकाउंट नंबर होता है, आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी होती है, UPI पिन होता है या फिर OTP शामिल होती है। प्लस आती है आपके पास वेरिफिकेशन के नाम पर कोई लिंक और आप उसको भी क्लिक कर देते हैं या फिर उसकी भी डिटेल्स आपको मांगी जाती है और आप उठाकर दे देते हैं। आप कर लेते हैं भरोसा और आपके भरोसे को कर देते हैं वो ख़राब, और ख़राब इस तरह से करते हैं कि अगली बार अगर कोई सच में जनगणना का अधिकारी आएगा तो आपको भरोसा नहीं होने वाला है, ये सोच कर कि पहले वाला ने तो बैंक अकाउंट खाली किया था, भैया तुम क्या खाली करने आ रहे हो, बैंक अकाउंट या कुछ और। और इसी चक्कर में सरकार को हो रही है बड़ी दिक्कत जनगणना करने में क्योंकि लोग स्कैमर से हो चुके हैं परेशान। डिजिटल इंडिया में डिजिटली स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लिंक्स को लेकर के स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आए दिन मैं आपको इन स्कैम्स के बारे में बताया करती हूँ और आपको भी पता होगा कि भाई जब भी मैं कहते हैं कि APK लिंक अगर आपके पास कोई आ रही है, APK फाइल कोई आपके पास आ रही है तो उसको क्लिक ना करें। इसको लेकर के फ़ोन कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी हैं और अब उन्होंने स्कैमर्स को रोकने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें करना शुरू कर दी है। जैसे एयरटेल की कंपनी कहती है कि आपके पास स्कैम्स की कोई कॉल नहीं आएगी, स्कैमर्स का कोई मैसेज नहीं आएगा, प्लस अगर कोई फ्रॉड लिंक आ भी जाती है तो एयरटेल वो लिंक खुलने नहीं देगा। वहीं पर वोडाफोन आइडिया भी सेम आपसे बात करता है कि अगर आप पोस्टपेड लेते हैं तो आपके पास स्कैम्स कॉल्स नहीं आएंगी, स्कैम लिंक्स नहीं आएंगे। व्हाट्सएप ने भी एक नया नियम जारी कर दिया है और वो है कि भाई अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऊल जलूल ऊट पटांग लिंक आ जाती है तो हम उसको खुलने ही नहीं देंगे, आपके पता चलने से पहले उसको साइलेंट मोड पर डाल के रिमूव कर डालेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या, क्योंकि आप इतने भोले मानुस हैं कि जब तक आपको पता चलेगा तब तक आप क्लिक कर चुके होंगे। और इसके बाद भारत सरकार फिर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती घूमेगी। RBI भी कहता है कि अगर आपके साथ ठगी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 50,000 से ऊपर की अगर आपकी ठगी है तो 85% आपको वापस भी कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में लगने वाला है टाइम, तो आप इस प्रक्रिया से ना गुजरें, बचे रहें, खुद के पैसे बचाए रहें और जो मेहनत की कमाई आपने 60-70 सालों में कर रखी है उसको जरा सेफ्टी के साथ रखें। यही बताने के लिए आज हम ज्ञानसी लाइव में आपके साथ मौजूद हुए हैं। तो भाई आप ज़रा बताइएगा कि आपने अपनी गणना स्वयं की है या फिर कोई करने का इंतज़ार आप कर रहे हैं, क्या डिजिटली इंडिया में जाकर यानी डिजिटली खुद को गणना में शामिल कर रहे हैं, या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आपके द्वारे पर एक महान सज्जन पुरुष आएंगे जो टाई में, शर्ट में और सर से पसीना पोंछते हुए और कहेंगे भैया घर में कितने मनई हैं, और आप बताएंगे घर में 4 मनई हैं जिनमें से मुखिया तो हम ही हैं। अगर ये बताने वाले हैं तो जरा आप चैट बॉक्स में बताइए और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हां जी, और ऐसे ही क्रेजी किया हुआ है उन लोगों ने जो आपके व्हाट्सएप पर बनकर आ रहे हैं गृह मंत्रालय के अधिकारी बिना डिग्री। अब आप सोचिए, जहां गर्मियों में डिग्री बढ़ती जा रही है 45, 44, 43, 42 ऐसे होती जा रही है, और वहीं पर एक भाई साहब आ रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं और हम आपकी जनगणना करेंगे। बताइए, करवा रहे हैं कि नहीं? और आप सोचते हैं आप करवा ही लें, एक ही काम तो है यार, और आप करवा भी लेते हैं। और इसके बाद आपके साथ होता है धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, और इतना धोखा कि आप यकीन करने के लायक नहीं रह जाते हैं इंसानों पर। फिलहाल आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइफ, मैं हूं आपकी आर्ष उन्नति, और आपने ट्यून कर रखा है 89.6 FM की फ्रिक्वेंसी पर आपका अपना रेडियो ज्ञान असली, गोंडा शहर की धड़कन। भाई, हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी जनगणना से जुड़े बहुत सारे फर्जी मैसेज शामिल हो रहे हैं, फैल रहे हैं। व्हाट्सएप पर वायरल हुए मैसेजेस में कहा गया था कि चोर गृह मंत्रालय के अधिकारी बनकर जनगणना के बहाने घरों में चोरी कर रहे हैं। हालांकि ये दावा कई जगह पर गलत भी साबित हुआ और कई जगह पर ये सही भी साबित हुआ। फिर भी आपको सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। असल जनगणना में आपसे अधिकारी क्या चीजें नहीं मांगने वाले हैं, आइए वो बता देते हैं। सबसे पहले हम आपसे बैंक की कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी, जिसमें आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी होगी, यूपीआई पिन, ओटीपी। जनगणना वेरिफिकेशन के नाम पर अगर कोई भी आपसे ये डिटेल मांगता है तो उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये किसी भी तरह के अधिकारी का काम नहीं है। यहाँ तक कि अगर बैंक वाले भी कॉल करके आपसे बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं तो भाई साहब ना दें, क्योंकि वो बैंक वाले नहीं हैं, वो स्कैमर्स ही हैं। ये बात हमने आपको कई बार बताई है। दूसरी बात आती है आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी। धोखेबाज आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे हैं, लेकिन जनगणना में ऐसी कोई कॉपी नहीं ली जाती है। हम आपको बता दें, जनगणना अगर आपने कभी करवाई होगी या फिर कभी की होगी तो आपको पता है उसमें कुछ चुनिंदा सवाल होते हैं, और उन सवालों में आपके बारे में पूछा जाता है, घर के मुखिया के बारे में पूछा जाता है, जॉब के बारे में पूछा जाता है, घर में कितने मेंबर्स हैं, ये सारी बातें पूछी जाती हैं, ना कि आपसे कहा जाता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी या फिर उसके नंबर बताओ। पैसे या दान, जनगणना के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर कोई भी आपके घर पर आकर कह रहा है कि हम आपकी जनगणना करने आए हैं और अब इसके 150 रुपये लगेंगे तो मत दीजिएगा, 150 क्या 150 रुपये भी मत दीजिएगा, देंगे तो फिर आप ही का घाटा है और उनका तो क्या है, उनका तो करोड़ों ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि हजारों घरों में जाने वाले हैं फिलहाल वो। इसके बाद आता है पासवर्ड। कोई भी अगर आपसे पासवर्ड या ओटीपी शेयर करने की बात कहता है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जनगणना में ना ओटीपी की कोई डिमांड होती है, ना किसी तरह की कोई पासवर्ड की कोई डिमांड होती है। तो अगर कोई भी जनाब या कोई भी मोहतरमा आपसे आकर बहुत ही मीठी भाषा में बोलकर कह रही है भैया जरा ओटीपी आया होगा शेयर कर दो, और भैया या दीदी अगर आप शेयर करने के फिराक में हो तो सुन लीजिए, मत कीजिएगा। बात आती है लास्ट, या फिर कहें तो एक और पॉइंट की, जो है आपके घर में प्रवेश करना। अब अगर गर्मी को देखते हुए कोई आपसे ये कह बैठे कि दीदी ऐसा करो हमको अपने घर के अंदर बुला लो, हम घर के अंदर आराम से बैठकर आपकी जनगणना करेंगे, तो भाई सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि जनगणना का अधिकारी आपके घर में प्रवेश नहीं मांग सकता है। हालांकि आप उसे ऐसी जगह पर जरूर खड़ा कर सकते हैं, चेयर दे सकते हैं जहाँ पर छाँव हो, पर जनगणना का अधिकारी आपके घर में प्रवेश नहीं मांग सकते हैं, ना वो प्रवेश करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपके घर के अंदर आने की बात कर रहा है, घर के अंदर आके आराम से सोफे में एसी में बैठकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके घर की डिटेल्स ले रहे हैं और हो सकता है रात में आपके घर में चोरी भी हो जाए, तो सतर्क रहिएगा। उसके बाद आती है ऐप्स डाउनलोड करवाना। कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो आपसे कहते हैं कि हम जनगणना तो कर रहे हैं, अब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा या फलाना फलाना लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो भाई आपके साथ स्कैम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इनसे सावधान रहें। धोखेबाज आपको ऐप्स इंस्टॉल करने या लिंक पर क्लिक करने का बहकावा जरूर दे सकते हैं, लेकिन आपको बहकना नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान असली लाइव सुनते हैं, वो भी आरजी उन्नति के साथ। चलिए अब बात करते हैं स्वगणना की, यानी कि खुद कैसे अपनी गणना की प्रक्रिया करेंगे, ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए ज्ञान असली लाइव। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। आपकी आरजी उन्नति मौजूद है लगातार आपके साथ आपके आफ्टरनून वाले शो में। स्टे ट्यून्ड।
1: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ We can karaoke, sofi nights and open mic.
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक, पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

और इस गाने को लगाने का मतलब बस इतना ही था कि जब भी आपके पास ऐसा कोई आता है तो उसको भी नाना नाना करके भगा दिया करें, और अगर नहीं भगाना है तो पुलिस वाले अंकल को बुला लिया करें, क्योंकि आसपास आज कल कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग में 112 की गाड़ियां घूमती रहती हैं, प्लस अपाची वाले अंकल भी घूमते हैं जिनको हम अक्सर रात में देखा करते थे। हाँ जी, तो फिलहाल आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइफ, एंजॉय करते रहिए इस बेहतरीन से गीत को। हम मिलते हैं इस गाने के उस बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन
2: हां जी यू तो घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का तो आइए चलते हैं उस तरफ जिसकी हम बात कर रहे थे यानी कि अगर आप स्वागणना कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है और कहां पर जाकर आप ये कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर आपको ढूंढनी है वेबसाइट तो आपको असल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा यानी कि रियल वेबसाइट की ज़रूरत है। किसी से मांगिएगा नहीं, हो सकता है वो आपको जो वेबसाइट भेजें उसमें वायरस हो या फिर वो वेबसाइट ही स्कैमर्स की हो। तो कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट की ऑफिशियली अनाउंस्ड वेबसाइट का इस्तेमाल करें और उस पर जाकर खुद व्हाट्सएप लिंक या SMS से ना लें, खुद वहां पर जाकर के खुद को रजिस्टर करें जिसमें आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा और अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे कुछ डिटेल्स और डिटेल्स में होंगी आपकी नाम, आपका उम्र और आपकी एजुकेशन के बारे में जो आप खुद बता सकते हैं क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, पता है ना आपको अपना नाम पता है। ये तो मेरा नाम अर्जुन अति है, मुझे पता है। फिलहाल हम आपको बता दें सब भरने के बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उसको अपने पास रख लीजिए। एंड जब आपके घर में कोई ऐसा ऑफिसर आता है जो आपसे कहते हैं

हम जनगणना के लिए आए हैं और वो आपसे लंबी चौड़ी बातें करना चाहते हैं और आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप बैठकर उनको बतिया सके या बता सके, तो उस वक्त आप बस अपना कोड दिखा दें और कोड दिखाने के बाद वो आपको रजिस्टर कर लेंगे कि आपकी एंट्री हो चुकी है। बस इतना ही करना होता है, आपको अपना नाम, आपको अपना उम्र और आपको अपनी एजुकेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। प्लस आपसे बहुत ज़्यादा अगर सवाल होंगे तो ये पूछा ज़रूर जा सकता है कि आपके घर का मुखिया कौन है, घर में कितने मेंबर्स हैं और वो क्या कुछ करते हैं, यानी कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी उम्र क्या है। इसके अलावा अगर आपसे कोई बैंक डिटेल्स मांगता है, आपसे कोई OTP पासवर्ड की बात करता है, आपके घर आने की बात करता है, या फिर ऐसी कोई बातें करते हैं जो नॉर्मली नहीं की जा सकती या फिर जो नॉर्मली सवाल नहीं होते हैं जिसमें आपसे पैसे मांगना हो सकता है, तो ये सारी चैरिटी ना करते हुए खुद का ख्याल रखिए। और आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। आई थिंक आज का शो आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपके अपने वाले एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आपको मिलता है चैट बॉक्स, आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलता है प्ले स्टोर पर रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM रेड एंड ब्लैक आइकन में। अगर आप सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से तो आपका, और फ्रीक्वेंसी वाले लिसनर्स जो हमें एंजॉय कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया है तो रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आप सावधान रहेंगे तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। हम आपको छोड़ के जाते हैं खूबसूरत से गाने के साथ जो कि शिकारी फिल्म से है, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अरे सुना?
1: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2000

0: लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545 583 5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज, सभी लोग ध्यान दें। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है आखिर?
2: RJ कांछा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण है नहीं, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गांव का नाम बड़की टोला है। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी। गुड़िया पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की।
1: अच्छा।
2: रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए
1: जी।
2: उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं।
1: अच्छा।
2: शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल पंचायत में भी इस विषय पर बात करने लगे।
1: अच्छा भैया, तो गांव में इस पर क्या प्रभाव पड़ा?
2: बताता हूँ
1: जी।
2: कुछ महीने बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों के बीच सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी।
1: क्या बात है।
2: सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा भैया, ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से और आसान शब्दों में समझाइए।
2: देखिए,

0: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। और ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओ, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देती है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, और ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: अच्छा भैया, आप ये बताइए, तो फिर ये जो टीका है उसे किसे लगवाना चाहिए? क्या कोई खास उम्र है इसकी?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो
0: तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: अच्छा सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हो गया, तो इसमें पुरुषों की भी कोई भूमिका है क्या?
0: यही तो सबसे अहम बात है। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइए।
0: देखिए आरजे कंसा
1: जी,
0: एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वहीं हार जाएंगे। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है कि गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियों में कमजोरी आ जाती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखिए आरजे कांचा
1: जी,
0: यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें हैं
1: जी
0: आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ साफ कर देता हूँ
1: जी।
0: पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है।
1: अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, उसका क्या?
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है।
1: और एक बात, जो लोग अक्सर कहते हैं भैया कि अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
0: देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है।
1: अच्छा,
0: ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे कांचा
1: जी,
0: अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज भी जैसे कैंप बहुत जरूरी है ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचता है वहाँ ऐसे ही कुछ

0: जैसा केस हो जाता है। उस इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV का टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे ज़माने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमज़ोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज़ दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैर के तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर बढ़ता, खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती है, अपनी बेटी को बचा लो समय रहते।
1: ये तो बहुत दुखद हुआ। तो आज जो लोग भैया हमें सुन रहे हैं उन्हें आखिर क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज कराएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें इस बड़ी सी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे,
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है,
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
3: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके
3: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे, और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता, साथ में आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? और कल तो हम दोनों का था वीक ऑफ और आज हम लोग फिर से अपने उसी कार्यक्षेत्र पे, उसी कार्यस्थल पर फिर से लौट करके आए हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से आप सभी तक कुछ पहुंचाने के लिए। तो आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जल्दी से आ जाएं चैट बॉक्स में एंड जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है सुन सहेली। एंड प्यारी सी दोपहर में आइए एक साथ एक फ्रेम में विश कर देते हैं शुभ दोपहरिया।
7: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और फटाफट से आप सभी की जो क्या कहते हैं ना अटेंडेंस है वो लग जानी चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस लगेगी और फिर ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, और जब एंट्री मिलेगी तभी आप जान पाएंगे कि आज हमारे पास क्या है।
6: बिल्कुल, तो आज हमारे पास है बहुत कुछ, क्योंकि आज स्पेशली खाना खजाना वाला दिन होता है, मंडे लजीज वाला दिन होता है। भाई हम सारे चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ये जो पेट होता है ना, इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमें खाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जीने के लिए खाना आवश्यक है। एक स्लोगन मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। आप तय करिए कि आपका किस मोटिव में आपका जीना है। जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए ही जीते हैं? कुछ लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे।
7: बिल्कुल,
6: तो आज बहुत सारी रेसिपीज हैं, मास्टर शेफ ने भी आज बहुत सारी रेसिपीज को बताया है हम लोगों को, और हम लोग तो आपके लिए लेके ही आते हैं। भाई गर्मियां हैं तो आज तो कुछ आइसक्रीम वगैरह मन करता है खाने का, तो आज मैं आपको बताऊंगी आइसक्रीम, और हमारी मास्टर शेफ भी कुछ ऐसा चाइनीज वगैरह खिलाने वाली है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमें बता दिया है। तो आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारी चीज़ों को ले करके, लेकिन जो कि हमारी औपचारिकता है, आप सभी को पता है कि प्रोग्राम के कुछ शेड्यूल को चेंज करते हुए हम लोगों ने एक शेड्यूल चेंज किया है, और हर दिन हर रोज़ एक प्यारी सी कविता के साथ हम आते हैं। तो आइए, आज की कविता है अदृश्य स्तंभ। कुछ ऐसे स्तंभ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर वो होते हैं। अगर वो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे बैक में हो सकते हैं, बैकबोन जैसे होती है, और हमारे घर के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सामने नहीं आते हैं लेकिन लगता है कि हाँ ये हमारे साथ में हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारी माँ का और हमारे पिता का, क्योंकि कई ऐसे मामलों में देखा गया है कि उनकी जो एक प्राथमिकता होती है, उनका जो एक अदृश्य वाला प्यार होता है, वो सदैव बच्चों पर बना होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ और देन हम आएंगे अपना सिलसिला शुरू करने के लिए, यानी कि रेसिपीज का सिलसिला। तो अदृश्य स्तंभ। भोर की पहली किरण से पहले, भोर की पहली किरण से पहले जाग जाती है वो घर की रानी। थकते नहीं कभी ये कोमल हाथ, थकते नहीं कभी ये कोमल हाथ, गूंजती है वो सुबह की रवानी, गूंजती है वो सुबह की रवानी। चाय की केतली नाश्ते की थाली, टिफिन में बांधती है प्यार की लाली। बच्चों को स्कूल, पति को दफ्तर, सवारती है वो दुनिया के बवंडर। बिना छुट्टी बिना पगार का काम, कभी न मिलता उसे आराम। बिना छुट्टी बिना आराम और बिना पगार का काम, कभी न मिलता उसे आराम। साफ सफाई कपड़ों का ढेर, दिन भर न पड़ती उसे फुर्सत की सैर, दिन भर न पड़ती उसे फुर्सत की सैर। ये जो अदृश्य स्तंभ है ना, ये यही है कि एक महिला के लिए वाकई में हर दिन एक नौकरी है, वो भी बिना पगार की।
7: रसोई में जलती, पसीने में नहाती, सबकी पसंद का खाना बनाती, खुद की भूख को ताक पर रखकर, खुद की भूख को ताक पर रखकर तृप्त करती सबको वो अपनों को पाकर। ताने सुनती, मुस्कान छिपाती, सपनों की अंगीठी में जलाती, वो सिर्फ घर नहीं चलाती, घर को स्वर्ग है बनाती। एक अदृश्य शक्ति है वो, एक अदृश्य शक्ति है वो जो सबकी खुशियों में ढलती है, जो सबकी खुशियों में ढलती है। थक कर भी जो चुपचाप जलती रहती है, थक कर भी जो चुपचाप जलती रहती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति है और जिसे हम देख नहीं पाते हैं, वो हमारे घर की वो सभी गृहिणियाँ होती हैं, वो सभी फीमेल्स होती हैं जो कि हमारे घर में दिन भर काम करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं अरे हाउसवाइफ हैं वो तो बहुत इजी है, बट इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा घर मैनेज करना होता है। हम अगर इस तरीके से देखें तो एक घर में भले ही 10 लोग होते हैं या 2 लोग होते हैं या मान लें कि 4 लोग होते हैं, लेकिन 4 लोगों की 4 अलग अलग तरीके की पसंद भी तो होती है। किसी को कॉफ़ी पसंद होती है, किसी को चाय पसंद होती है, किसी को सुबह नाश्ते में कुछ और पसंद होता है, तो बच्चे को कुछ और चाहिए होता है, हस्बैंड को कुछ और चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं एक फीमेल के लिए वो मैनेज करना बहुत बड़ी बात है।
6: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि एक 4 दीवारी होती है, एक छत होती है, लेकिन उस मकान को घर बनाने का पूरा पूरा जो एक श्रेय आता है वो एक महिला का होता है। तो मकान को घर भी वही बनाती है, स्वर्ग भी बनाना उसके हाथ में है और नर्क भी बनाना उन्हीं के हाथ में होता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो एग्जैक्टली जिन घरों में बहुत सारी औरतें जो बहुत ज्यादा मनमानी से चलती हैं, तंग करती हैं, तो क्या वो घर नर्क नहीं होते हैं? हमेशा से अपनी मनमानी करना, हस्बैंड की नहीं मानना, बच्चों को मारना, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने लिए सोचना, तो क्या ये घर फिर घर थोड़ी होता है? फिर तो वो नरक भी कहा जा सकता है। फिर हस्बैंड गुस्से में कहेगा, बच्चे कहते हैं कि तुमने तो मेरे घर को नरक बना दिया है। तो भाई ऐसी चीज़ें भी हैं कि कुछ हद तक ये चीज़ें भी आजकल देखी जा रही हैं। तो सभी महिलाओं को ये विनती है कि अपने घर को स्वर्ग बनाएं, ना कि नर्क बनाएं।
7: बिल्कुल, अपने घर को स्वर्ग बनाएं। और देखिए ये एक बात होती है जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, झगड़े क्यों करते हैं, इधर उधर की बातें क्यों करते हैं, हमें काम नहीं करना, हमें कोई काम ना करना पड़े। तो एक ये वाला मुझे लगता है लॉजिक एक फीमेल के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे काम ना करना पड़े। हाँ, एक्स्ट्रा आपको करना पड़ रहा है, बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसके लिए भी आजकल तो हेल्प होती है। मुझे तो लगता है आजकल ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में अगर आप हस्बैंड से कहिए कि मुझे काम ज्यादा हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, तो वो आपको मना कर देंगे कि नहीं नहीं कोई हेल्प नहीं मिलेगी, सब तुम अकेले करो। आजकल तो ऐसा भी नहीं होता है, आजकल तो मुझे लगता है कि हेल्प मिल जाती है।
6: बिल्कुल, और आजकल ऐसा भी नहीं है कि हर घर में कोई मेड ना हो।
7: हाँ।
6: मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रेयर घर होगा जिसमें मेड ना हो, और अगर मेड नहीं भी है तो ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं आजकल किचन में कि बहुत ज्यादा हाथ बढ़ जाता है और काम इजिली हो जाता है
7: बिल्कुल।
6: और उसके बावजूद भाई देखो, जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि कपड़े हम लोग हाथ से धोते थे, पर अब क्या आ गया, पहले वॉशिंग मशीन आई कि चलो हाथ से थोड़ा सा धुल करके उसको वॉशिंग मशीन में घुमा दिया, फिर हाथ से धुल लिया और फिर सुखा दिया। पर अब तो ये भी नहीं करना है, अब तो क्या करना है, खाली कपड़े उस बॉक्स में डाल देने हैं और टाइमर सेट कर देना है और सूख करके कपड़े आपके बाहर निकल आ रहे हैं, सिर्फ आपको डाल देना है। तो सोचो इतनी इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हो गई हैं। खाना बनाने के लिए अगर हम किचन की बात करें तो पहले सिल पर मसाला पीसना पड़ता था, चटनी पीसनी पड़ती थी, और अब एक एक बटन जर्र से किया, मसाला पीस गया, चटनी पीस गई। तो काफ़ी मामलों में टूल्स की वजह से भी, जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं उनकी वजह से भी काम करना आसान हो गया है। और उसके बावजूद अगर कुछ महिलाएं ये कहें घर में कि मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं सारा दिन मैं ही काम करती हूँ, मैं ही करती हूँ, ये करती हूँ, तो भाई उन महिलाओं को मेरा शत शत नमन।
7: एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए आपका घर है अगर, मतलब हम अपने को भी अगर इसमें इंक्लूड करें, तो हमारा घर है तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी को बाहर से लेकर के आएंगे वो काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक जैसे मैम ने भी स्टार्टिंग में बोला था ना कि वो छत होती है, दीवारें होती है, लेकिन घर कौन बनाता है? घर एक फीमेल बनाती है। तो आप जिस भी घर में जा रहे हैं, इवन ससुराल में है, मायके में है, जहाँ पर भी हैं, लेकिन वो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके बच्चे की तरफ, आपके पेरेंट्स की तरफ, आपके हस्बैंड की तरफ, वो आपको निभानी पड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि एक फीमेल को खुशी खुशी निभाना चाहिए। अगर आप खुशी खुशी करेंगे तो आपके घर वाले भी कहेंगे, आपकी सास इवन, अगर आप पूरे घर का काम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो तो इवन वो उठ के कहती है, अरे बेटा तुम सुबह से काम करिए, रहने दो, लव ये मैं कर देती हूँ। फिर भी हम कहते हैं अरे नहीं मम्मी रहने दो, तो वो कहती नहीं नहीं मैं कर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि आप सुबह से लगे हो। देखिए एक पॉइंट पे मैं एंड करूंगी कि अगर आप अच्छा करेंगे ना तो लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा ही करेंगे और अगली जाके हमारी बुराई करेगी, अरे मेरी बहू बहुत खराब है। नहीं, जब वो अच्छा करेंगी तो वो आपकी सास भी, आपके सभी इन-लॉज भी कहेंगे अरे वो बहुत अच्छी है, पूरा घर संभालती है। तो एक ये वाली रेपुटेशन लेके चलिए, अपने घर को मेंटेन कीजिए।
6: बिल्कुल। तो चलिए यहाँ हम एक ब्रेक मेंटेन करते हैं पहले तो, क्योंकि टाइम हो गया है एक ब्रेक का, और आइए हम सुना देते हैं एक प्यारा सा गाना और उसके बाद आएंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में और फिर हम अपनी रेसिपीज का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। 89.6 FM पे शो चल रहा है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: Let's start the fun!

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: एंड आरजे अंशिका।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां और फिर से आज हम आपसे वही बातें करेंगे, आपको वही बताएंगे जो कि हम डेली बताते हैं और आप उससे मोटिवेट होते हैं, जो कि हमारा रियल लाइफ है।
2: बिल्कुल, और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में हम वही बताते हैं जो सच है और सच ही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं आपको एक लाइन बताऊंगी और फिर उस लाइन को मैं क्लियर भी आपके साथ करूंगी। क्रिया पहले प्रेरणा बाद में, क्रिया पहले प्रेरणा बाद में। अक्सर हम सोचते हैं कि मन करेगा तो काम करेंगे, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आप काम करना शुरू कर दें, प्रेरणा अपने आप पीछे पीछे आएगी। काम शुरू करने से डोपामाइन रिलीज होता है। ओके, पर मैं बताऊं एक चीज, मेरे दिमाग में अभी एक चीज आई है कि ये तो मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा कि हम सोचते हैं कि मन नहीं करेगा तो काम नहीं करेंगे, अगर काम में मन लगा तो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम सोचते हैं कि चलो ठीक है काम कर लेते हैं, और जैसे जैसे ना हम काम करने की ओर जाते हैं और मन अपने आप लगने लगता है। काम शुरू करने से पहले एक बार मन करेगा, अरे छोड़ो यार काम आज मन नहीं कर रहा है, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम उस राह पे चले जाते हैं ना, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर हम उस पथ पे चले जाते हैं ना, जैसे कहीं मैंने मना कर दिया कि सब फ्रेंड्स जा रहे हैं यार मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो जबरदस्ती कामयाब हो गए मुझे ले जाने के लिए, तो फिर मेरा मन लग जाता है। और फिर ये सही उन्होंने एक अभी एक बात मुझे मिली कि ना काम शुरू करने से डोपामाइन रिलीज होता है।
1: बिल्कुल, और इसी से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कई बार कि जैसा अभी मैम ने बताया ना कि वो मन नहीं करता है कि हम बाहर कहीं जाएं, रिलैक्स करें, थोड़ा घूमें, या कुछ इंपॉर्टेंट भी होता है कभी तो अरे रहन दो बाद में जाएंगे, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें बेटर फील होता है।
2: बेटर फील होता है,
1: इसीलिए होता है क्योंकि तब हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है।
2: और इसीलिए ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ में है कि क्रिया पहले प्रेरणा बाद में, यानी कि कर्म पहले हम करेंगे और हमें उसका मोटिवेशन जो है ना वो पीछे पीछे अपने आप से आएगा। और एक मतलब जैसे हम शुरू करेंगे तो हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होगा और हमारा काम में मन नहीं, मन चित्त शरीर सब लग जाएगा।
1: बिल्कुल, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिन्हें कोई काम करना नहीं होता, कई बार
2: बहाना होता है, बहाना होता है, मन नहीं कर रहा, छोड़ो काम नहीं करेंगे। हाँ,
1: या थोड़े जो आलसी नहीं कहूंगी बट थोड़े होते हैं ना जिन्हें काम नहीं करना,
2: मन मौजी कह सकते हैं।
1: मन मौजी थोड़े होते हैं, उनके लिए है कि अगर आप किसी काम को शुरू कर देंगे तो फिर आप करने लगेंगे। और कुछ लोगों के माइंड में होता है कि हम शुरू ही नहीं करेंगे,
2: शुरू ही नहीं करेंगे,
1: अभी मूड नहीं है, रहने दो बाद में मूड होगा। तो ये जो मूड वाला एक लेकर के लोग चलते हैं वो कभी नहीं होगा। अगर आप किसी काम के लिए ये रख लेंगे कि मेरा मूड होगा तो मैं करूंगा, तो मुझे लगता है कि मूड तो कभी नहीं होगा। क्योंकि कई बार देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि खाना खाने का अगर मन नहीं होता है तो हम कह देते हैं अरे नहीं खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर कोई थाली आपके सामने रखता है और आपने एक बाइट ले ली तो फिर मन करता है कि अरे लाओ अब एक बाइट ले ही लिया तो पूरा
2: चट कर ही जाए।
1: हाँ, पूरा खाना खा ले।
2: खाने से याद आया कि आज की रेसिपीज में कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो कि हम आपसे शेयर करते हैं। जैसे मैंने अपना तो बता ही दिया था कि मैं आपको आइसक्रीम आज खिलाने वाली हूँ।
1: ओके, तो ये थोड़ा सा मैचिंग हो गया है आज। मैम भी आइसक्रीम बताने वाली हैं और मतलब मैं भी बताने वाली हूँ।
2: तो बताओ, चलो
1: अभी।
2: हाँ अभी नहीं तो क्या, कल बताना है क्या?
1: नहीं अभी बताना है,
2: अभी बताना है ना।
1: ओके,
2: तो चलिए, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं ही बता देती हूँ आज पहले आइसक्रीम,
1: और
2: उसके बाद में हम लगाएंगे मास्टर शेफ की रेसिपीज को, उसके बाद सुनेंगे हम अंशिका की रेसिपी को, ठीक है?
1: ओके,
2: तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि आजकल मैंगो में आ गए हैं और प्रॉपर ये 2 महीना होता है जिसे हम अच्छे से मैंगो खा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ मैंगो नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैं उसमें कुछ कहानी में ट्विस्ट भी डालने वाली हूँ।
1: ओके,
2: मैंगो बनाना, ये दोनों के साथ आज हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं।
1: मैंगो बनाना
2: मतलब जैसे इस आइसक्रीम का नाम ही यही है, मैंगो बनाना आइसक्रीम, यानी मैंगो को बनाया और आइसक्रीम अपने आप बन गई। ठीक है, तो चलिए फटाफट ले आते हैं एक बड़ा सा आम, जो कि आजकल बहुत अच्छे से आम आ रहे हैं मार्केट में, आप बाहर आ गई हैं और फलों का राजा आम है, सबको पता है। तो आपने ले लेना है एक आम, एक जो बहुत अच्छा वाला जो कलर पीला वाला आता है ना, एक आम ले लेना है। और आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के

0: आइसक्रीम बना रही हूँ, ठीक है। तो एक आम ले लेना है और उसके बाद में क्या करना है कि बनाना दो, आप दो बनाना ले सकते हैं बस, मैक्स टू मैक्स दो बनाना, ठीक है। तो एक आम और दो बनाना ले लेना है और इंग्रेडिएंट्स मैं पहले बता दे रही हूँ। और एक आधा कप आपको ले लेना है इसमें मिल्क पाउडर, जो मिल्क पाउडर आता है ना बच्चों को घोल करके, हम लोग कभी कभी जब दूध नहीं होता था बचपन में मम्मी हम लोग को पिला देती थी, तो मिल्क पाउडर ले लेना है उसमें। और ले लेना है चोको सिरम, जो कि चोको सिरम से हम उसको डेकोरेट करेंगे। और कुछ नट्स ले लेने हैं जो आपके पसंदीदा नट्स हों, जैसे काजू बादाम पिस्ता अंजीर छुआरा किशमिश, जो भी आपको पसंद हो उसमें से आपने ले ले। मैं ले रही हूँ यहाँ पर काजू और बादाम और पिस्ता, इन सारी चीज़ों को आप ले लीजिए। और एक गिलास फुल क्रीम आपको ले लेना है। फुल क्रीम इसलिए मैंने बोला है क्योंकि पैकेट्स वाले दूध आते हैं या फिर आप लोग जो खुला दूध लेते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि गाढ़ा दूध लीजिएगा ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं बनाते हैं और डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी रेड चेरीज जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, जिसको हम टूटी फ्रूटी भी कहते हैं। फुल चेरी भी मिलती है, मतलब फुल गोल गोल होती है रेड कलर की, जिसको हम कट करके भी उसका यूज करते हैं।
1: जी मैम।
0: तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमको सबसे पहले गैस को ऑन करना है और एक मोटे तले का, मतलब मोटा तला कोई बर्तन रखना है, क्योंकि अगर हम इसमें पकाएंगे दूध को पकाना है तो वो मतलब जल ना जाए, ठीक है
1: जी।
0: दूध ले लेना है और दूध को आपने एक पूरा फुल ग्लास दूध को उसमें कढ़ाई में डाल देना है और हल्का गैस को कर देना है सिम, मतलब सिम टू मीडियम में रख देना है, तेज मत करिएगा वरना दूध जल जाएगा। और आपको लगातार कंटिन्यू इसको चलाते रहना है एक गिलास से, जब 100% मतलब अगर हम मान के चलें तो 75% जब वो दूध बच जाए, उसको चलाते चलाते गाढ़ा कर लेना है, थोड़ा गाढ़ा कर लीजिएगा। जैसे मलाई आने लगे तो आप अपने चम्मच पे उसको लगा के देखिएगा, अगर दूध गाढ़ा हो गया है मलाई आने लगी है, बस उस टाइम पे ही क्या कर देना है आपको, मिल्क पाउडर जो मैंने एक कटोरी आपको बोला था रखने के लिए वो उसमें डाल देना है और कंटिन्यूसली उसको चलाते रहना है, ठीक है। जैसे आप दूध मिल्क पाउडर डालेंगे ये और गाढ़ा हो जाएगा और उसी समय आपको डाल देना है इसमें चीनी। चीनी की मात्रा थोड़ी कम करिएगा क्योंकि बनाना में भी मीठापन है और आम में तो ऑलरेडी मीठापन होता ही है। तो अब इसको मिला करके और इसमें आपको मिला देना है ड्राई फ्रूट, यानी कि ड्राई फ्रूट जो आपने पहले से कट करके रखे हुए हैं मिला देना है और अच्छे से इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करने के बाद में इसको प्रॉपर ठंडा कर लेना है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा ये बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो जाए। और अब आपने बनाना और मैंगो को उसका सिरम, मतलब उसको पूरा उसका पल्प निकाल लेना है, उसको मिक्सी में चला लेना है
1: जी,
0: गाढ़ा कर लेना है, मतलब मैंगो को भी और बनाना को भी, ठीक है। अब क्या करना है, जब दूध ठंडा हो जाए अब आपने इसमें इसको मिला देना है और अच्छे से इसको फेंट लेना है। जैसे आप दूध और दूध में जैसे आप बनाना और मैंगो डालेंगे ये थोड़ा गाढ़ा और थिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात केवल ये है कि अगर दूध गर्म हुआ तो जैसे आप मैंगो डालेंगे वैसे दूध फट जाएगा और पूरी आइसक्रीम खराब हो जाएगी, वो नहीं जम सकती है फिर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दूध को बिल्कुल ठंडा कर लेना है और उसके बाद में आपने ये जो बनाना और ये मैंगो का पल्प था ये इसमें डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जो कि आप मार्केट वाली जब आइसक्रीम खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है और बहुत ज़्यादा जैसे मुंह में रखो तो घुल जाती है।
1: जी मैम।
0: तो ये क्यों होती है मैं बताती हूँ, जब ये ठंडा हो जाए पूरा बैटर, मतलब अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको पल्स मोड पे मिक्सी में चला लेना है, वो पूरा बैटर डालने के बाद में एक बार चलाइए, उसको बाहर निकाल लीजिए, फिर से चलाइए, मतलब पल्स मोड पे चलाना है, कंटिन्यूअसली नहीं चलाना है। जब आप इसको चला लेंगे ना तो ये इसका जो बैटर इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना क्रीमी हो जाता है कि आपने इसको बस बिना देर लगाए हुए एक आइसक्रीम के जो कोन्स आते हैं, मतलब जो मोड आते हैं आइसक्रीम के मोड आते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास आइसक्रीम के मोड नहीं भी हैं तो आपने छोटे छोटे कुल्हड़ ले लेने हैं, आजकल तो मार्केट में कुल्हड़ भी इजीली मिल जाते हैं मिट्टी वाले कुल्हड़, वो ले लेना है और उसमें आपने ये भर देना है और ऊपर से लगा देना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर लगाने के बाद में आपने इसके ऊपर से स्टिक डाल देनी है, कोई भी स्टिक डाल देनी है, और इसको आपने अगर शाम को बनाया है, रात में आपने बनाया है, इसको लगा देना है, सुबह मतलब इसको 24 8 से 9 घंटे इसको फ्रिज में रखना है, और उसके बाद में जब आप इसको निकालेंगे उसके बाद आपने इसमें चॉकलेट सिरम से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देना है। फॉइल पेपर निकालिए और ये मैंगो बनाना आइसक्रीम घर में ही बना के खाइए।
1: वाह, मतलब मुंह में पानी आ गया सुन करके, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम। लिसनर्स, आई होप कि आप सभी को भी मैंगो और बनाना आइसक्रीम जो है वो सुन करके मुंह में पानी आ गया होगा, तो सुने नहीं फटाफट से बनाए खाएं और गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम को एंजॉय करें।
0: बिल्कुल, और इस आइसक्रीम की सबसे अच्छी खासियत बात ये है ना कि ये प्योरली कोई इसमें कलर नहीं पड़ता है। जब आप इसमें मैंगो को पीस के डालेंगे ना तो ये ऑलरेडी वो कलर भी आ जाता है और स्वाद भी आ जाता है। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से मास्टर शेफ की आज बताएंगी, देखते हैं कि क्या लेकर के आई हैं बहुत ही अच्छी रेसिपीज को जो कि आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ता।

कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट से, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो आ गई है, यानी कि हमारे स्टूडियो में आ चुकी है हमारी मास्टर शेफ। चलिए सीधे सुनते हैं माय मास्टर शेफ को और जानते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या लेकर के आई है।
5: तो श्रोताओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रीमी चिकन, जो कि बच्चे बड़े सब लोग को बहुत पसंद है और स्नैक्स में भी कर सकती हैं और आप डिनर पे भी ले सकती हैं या रोटी के संग भी खा सकती हैं, पराठे के संग, जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो इसके लिए क्या करना है, हमें चिकन लेना है 750 ग्राम। अब आपकी मर्जी, चाहे पूरा चिकन कटा के 750 ग्राम ले लीजिए या अगर बच्चे बोन वाले खाते हैं तो बोन वाले पीस ले लीजिए और अगर फ्लैश वाले खाते हैं फ्लैश वाले लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, एक कढ़ाई में जो है वो तेल डालेंगी, तेल लगभग 100 से 150 ग्राम डाल देंगी। उसके बाद उसमें चिकन खूब अच्छे से धोकर, इसके लिए जानिए है कि चिकन को आप जब भी धोएं तब उसके ऊपर नींबू ज़रूर निचोड़ दें। नींबू निचोड़ने से ये होता है उसकी जो अपनी स्मेल ख़राब वाली होती है वो निकल जाती है और स्मेल नहीं रहती है। तो सबसे पहले आप धोते समय नींबू निचोड़ करके धो लीजिए। अब आप उसको धो करके जो कढ़ाई जिसमें आपने तेल डाला है उसमें उस चिकन को डाल दीजिए। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए अंदाज से, और उसके बाद तेज आंच करके इसको खूब लाल लाल भून लीजिए। अब इसको ये नहीं कि आप पकने हैं या नहीं, नहीं ये पकेगा नहीं, हमको सिर्फ लाल लाल भूनना है। जब ये खूब लाल लाल भून जाए तब आप क्या करेंगी, एक भगोने में पानी लेंगी और आँच बंद कर देंगी। एक भगोने में पानी लेंगी, लगभग आधा भगोना भर लीजिएगा, और एक ऐसी छन्नी रखिएगा जो भगोने पे फिट बैठे, छेद वाली छन्नी हो, या आपके पास अगर स्टीमर है तब तो कोई बात ही नहीं है, उबालने के लिए भाप देने के लिए चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे सरल है, हमें तो सबसे सरल लगता है कि एक भगोने में आधा भगोना हम पानी लेते हैं, उसके ऊपर जो छेद वाली छन्नी होती है वो रख देते हैं। अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन तला है वो उसके ऊपर बिछा देंगे छन्नी के ऊपर, और उसको ढक देंगे ऊपर से। तब कम से कम 15 से 20 मिनट ढका रहन देंगे। नीचे भगोने में पानी है वो खौलता रहेगा और स्टीम से जो हमारा चिकन है वो पक जाएगा। अब आप हम छू करके देखेंगे, जब हमारे 10-15 मिनट हो चुके हैं तब हम देखेंगे कि हमारा चिकन खूब अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल में बटर लेंगे, कम से कम 50 ग्राम बटर लेंगे। उसको अभी समय गर्मी है तो आप अगर बाउल में डाल देंगी वो खुद ही पिघल जाएगा, और 100 ग्राम क्रीम का जो आती है, अमूल क्रीम आती है या फ्रेश क्रीम आती है, यदि आपके पास एक बाउल फ्रेश क्रीम है घर की मलाई का निकले तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। मोयनीज़ आप एक टेबल स्पून लेंगी। उसके बाद जो है भुना हुआ जीरा लेंगी, लाल मिर्च आप बीज वाले लेंगी, और रेड चिल्ली सॉस लेंगी 2 चाय के चम्मच। इन सबको, और चाट मसाला और हरा धनिया, इन सबको खूब आप जो है अच्छे से उसमें क्रीम में मिला देंगी, बटर और क्रीम में। उसके बाद जो आपने मुर्ग को उबाला है उसको जो है इसमें मिला देंगी, इस जो तैयार हमने क्रीम की है मिला देंगी, हरी धनिया डालेंगी, ऊपर से काली मिर्च डालेंगी और सबको सर्व करेंगी। देखिएगा ये 10-15 मिनट में बनने वाला बहुत ही अच्छा चिकन है, आप इसको खुद भी खाइए और सबको खिलाइए।
4: बिल्कुल खिलाएंगे मैम, और मुझे तो लग रहा है बहुत ही टेस्टी चिकन, आप सभी भी ज़रूर बनाइएगा लिसनर्स और ट्राई करिएगा। बस चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पर, बस यू गए यू आए स्टेडियम।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: और रेसिपी जो कि अभी मास्टर शेफ की एक और रेसिपी बाकी है, तो फटाफट देर किस बात की, आइए सुनते हैं और उसके बाद आएंगे हम एक और रेसिपी जो कि बताएंगी आपको अंशिका।
3: तो ये बिल्कुल अलग ढंग का है मसाले वाला चिकन। आप जब इसको बनाएंगी तब सच में आप खुद पे बहुत गर्व करेंगी कि हमने कितना अच्छा चिकन बना लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गाढ़ा दही लेंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी है तो आप कपड़े में बांध के निचोड़ दीजिए। हम लगभग एक प्याला जो है वो दही लेंगे, चख के देखेंगे, खट्टा नहीं होना चाहिए। हल्दी लीजिएगा, चाट मसाला लीजिएगा, इसी में कसूरी मेथी डाल दीजिएगा, थोड़ी नमक डालिएगा, कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा, पिसी लाल मिर्च डालिएगा जिसमें बीज हो, भुना हुआ मसाला जीरे वाला डाल दीजिएगा, थोड़ा पिसा धनिया डालिएगा, गरम मसाला डालिएगा और अजवाइन थोड़ा सा डालिएगा, और इसके साथ ही मीठा सोडा 1/4 चाय का चम्मच इसमें डालिएगा, सादा नमक डालिएगा। इन सबको खूब अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद चिकन 750 ग्राम आप उसको धो करके, जैसे हमने धोना बताया वैसे धो करके आप इस दही वाले मिश्रण में मिला देंगी, और खूब 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको ढक के रखे रहेंगी। आप क्या करेंगी कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला दीजिएगा। आप क्या करेंगी कि चिकन को आप कढ़ाई में निकाल लीजिएगा और उसको भुनने रख दीजिएगा। शुरू में आप तेज आंच रखिएगा क्योंकि चिकन जो है आप पानी इसमें छोड़ेगा। उसके बाद आप करीब 10 मिनट आप खूब तेज आंच में भूनिएगा। जब पानी हल्का हल्का कम हो जाए, सूखने लग जाए, तब 7 से 8 मिनट आप धीमी आंच पे पकाइएगा। अब आप देखिएगा कि आपका चिकन जो है एकदम पक चुका है और रंग भी सुंदर आ गया है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च भी आपने डाली है, सादी लाल मिर्च भी डाली है। अगर आपको थोड़ा डाउट लगे कि रंग नहीं आ रहा है तो आप 2 बूंद खाले वाला रंग, लाल रंग का, वो इसमें आप मिला सकते हैं, वो आप मिला लीजिए। अब क्या करेंगी, जिस कढ़ाई में आपने बनाया है चिकन को सब किनारे किनारे कर दीजिए और एक कटोरी बिल्कुल बीच में रख दीजिए और एक कोयला जला करके उस कटोरी में रख दीजिए। कटोरी में रख के उसमें थोड़ा बटर 1/2 चाय का चम्मच उसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगी तो वैसे ही धुआं निकलने लगेगा। जब धुआं निकलने लग जाए तो उसको ढक दीजिए ताकि जितना भी हमारा चिकन है वो स्मोक्ड हो जाए, हल्का हल्का धुएं से वो उसकी महक ले ले। अब आप क्या करेंगी कि पूरे बटर पे थोड़ा थोड़ा, तो चिकन पे थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगी, सभी ऐसा लगाएं कि सभी पीस पे बराबर से बटर लग जाए। जब लग जाए तब आप जो है गैस पे चढ़ाइए और जो भी जाली है आपके पास भूनने वाली, उस जाली पे 2-2, 4-4 टुकड़े रखिए और धीमी आंच में हल्का हल्का उसको आंच दिखा लीजिए और हरी धनिया डाल के गरम गरम सर्व कीजिए। तो खुद भी खाइए, सबको खिलाइए और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप इसको बनाइए और बताइएगा कि कैसा बना।
4: जरूर मैम, जरूर बनाएंगे और हम बताएंगे भी कि कैसा बना है। तो लिसनर्स आप भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे। बस यू गए, यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। तो फटाफट से हम वापस आ गए हैं, और अभी अभी हमारी मास्टर शेफ जो कि हमारे साथ थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज बताई, तो आप सभी को आई होप कि पसंद आई होंगी।
5: बिल्कुल, और साथ ही साथ में दीपांशी जी, आशु जी, प्रीति जी और मनी जी एंड धर्मेंद्र मोहन आवास, तो एंड मनी शर्मा। प्रीति जी लिख रही हैं कि हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन हैं। एग्जैक्टली, मी ऑल्सो वेजिटेरियन एंड प्योर वेजिटेरियन, बट हमारे साथ साथ जो हैं काफ़ी लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं ना, तो उन सभी के लिए भी डिशेस को बताना हमारा कर्तव्य है। एंड आप सभी का आना इतनी लेट से क्यों हो रहा है भाई? आशु जी, जल्दी से अगर आ जाते हैं आप लोग ना, आ जाते हैं, आप लोग सुनते हैं लेकिन आप मैसेजेस नहीं करते हैं। नेहा, नमस्कार आज समता एंड अंशिका, नमस्कार, आप कैसी हैं नेहा जी? तो चलिए अब सुनते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और रेसिपी, जो आज के हमारे खाना खजाना की शेड्यूल की लास्ट रेसिपी है।
4: अब मैं आपको बताने वाली हूँ तरबूज की आइसक्रीम। आज हम वाटरमेलन आइसक्रीम बताने वाले हैं, लास्ट में जाते जाते आपका मुँह मीठा कराने वाले हैं। एक्चुअली वाटरमेलन आइसक्रीम इसलिए क्योंकि तरबूज जो है ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और वैसे बच्चों को फल काट के दे दो तो वो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप आइसक्रीम बना के या किसी और तरीके से दे दीजिए तो वो इजीली ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं तरबूज। तरबूज आपको आधा, जैसे एक का आधा लेना है आपको। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके सारे जो बीज होते हैं वो आपको निकाल लेने हैं, और उसे टुकड़ों टुकड़ों में आपको काट लेना है। ये आइसक्रीम अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो इसमें आपको पूरी पड़ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या लेना है कि आपको कस्टर्ड मिल्क ले लेना है थोड़ा सा, वो क्या होता है कि एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए आइसक्रीम में। उसके बाद आपको लेनी है ताज़ी मलाई, मतलब हमारे घर में जो दूध से मलाई हम निकालते हैं वो आपको ताज़ी मलाई ले लेनी है 1 कप। इससे क्या होगा, इससे आपकी आइसक्रीम बहुत ही स्मूदी और अच्छी सी बनेगी। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी ले सकते हैं जो मार्केट में आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको ले लेना है नींबू का रस, 1 चम्मच रहेगा। और उसके बाद में आपको ले लेना है वेनिला एसेंस की 4 से 5 बूंदें, ये सिर्फ खुशबू के लिए हैं। और उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा पिस्ता ले लेना है बारीक कट, और उनको बारीक काट लेना है।
5: नेहा कह रही है कि तरबूज आइसक्रीम आज ही मेरा बेटा कह रहा था, तो भाई लीजिए रेसिपी आपको मिल रही है और आज ही आप बनाएं। और जब आप 89.6 FM से सुन करके, यानी कि हमारे सुन सहेली के प्रोग्राम में सुन करके बनाएंगी ना, तो एक अलग सी भी मिठास आएगी। भाई आज हमने रेडियो पे सुना है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि जब हम रेडियो पे कोई बात सुनते हैं और उसको हम ट्राई करते हैं, बनाते हैं, तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई एक ना एक एक उत्साह भी बढ़ जाता है। तो चलिए इसे ज़रूर से बनाइएगा और खाइएगा।
4: तो चलिए आप बताते हैं कि आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या करना है कि कटे हुए तरबूज के जो टुकड़े हैं उनको एक प्लेट में आपको अच्छी तरीके से फैला करके रख देना है, और इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जम जाए, टाइट हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक कंटेनर ले लेना है, उसमें आपको क्रीम जो आपने ली थी वो आपको डालनी है और अच्छे से फेंट लेनी है। मतलब कुछ देर तक, कम से कम आधे घंटे तक उसे फेंटिएगा। जब आप आधे घंटे फेंटेंगे ना तो वो क्रीम पूरी स्मूदी हो जाएगी, और स्मूदी होने के साथ साथ थोड़ी सी फूल भी जाएगी। तो वो एक अच्छा टेस्ट आएगा। अब आपको क्या करना है कि जमे हुए जो तरबूज के टुकड़े थे उसको आपको मिक्सी में डाल करके अच्छी तरीके से उसको 2-3 बार आप चलाइएगा और उसको पूरा पीस के एक प्यूरी जैसा आपको बना लेना है। अब इसमें आपको कस्टर्ड मिल्क, नींबू का रस, वेनिला एसेंस मिला करके और जो आपकी क्रीम थी वो भी इसमें मिला देना है और फिर से एक बार इसको मिक्सी में डाल करके आपको चला लेना है। इससे क्या होगा कि पूरी एक स्मूदी वो पेस्ट बन के पूरा तैयार हो जाएगा। जब आपका ये पेस्ट बन जाए उसके बाद अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अब आते हैं कि हमको इसको जमाना कैसे है। तो जमाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें अगर आपके पास वो छोटे छोटे जो प्लास्टिक वाले ग्लास आते हैं ना जो हम यूज़ करते हैं पानी वगैरह के लिए, डिस्पोजल वाले जो होते हैं,
5: या मोड्स भी आते हैं, मोड्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
4: हाँ,
5: उसमें भी जमा सकते हैं।
4: अगर
5: मोड्स नहीं है तो वो कागज़ वाले जो और या प्लास्टिक वाले जो डिस्पोजल ग्लासेस आते हैं हम उसमें भी आइसक्रीम को जमा सकते हैं इजीली, उसमें तो निकल भी आती है अच्छे से।
4: अगर आपके पास मतलब अगर आपको स्टिक वाली आइसक्रीम जमानी है तो आप स्टिक डाल दीजिए, अगर आपको स्टिक वाली नहीं जमानी है तो आप वैसे ही ग्लास में डाल करके इन्हें सेट होने के लिए रख दीजिए। अब आते हैं कि सेट होने के लिए हमें इसे कैसे रखना है। तो सेट होने के लिए आपको इसे 6-8 घंटे रखना है। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो फिर आप नाइट में उसको वो कर दीजिए, और अगर आप जैसे नाइट में फिर आप खा पाएंगे, और अगर आप नाइट में बना करके रख रहे हैं तो वो बेस्ट है क्योंकि फिर आपको सुबह तक वो अच्छी सेट होकर के मिल जाएगी। अब आप इसे रखिए, इसे बनाइए, खाइए और खा करके एंजॉय भी करिए। आई होप कि आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये आइसक्रीम जरूर से पसंद आए।
5: बिल्कुल, तो भाई इस आइसक्रीम को बनाइएगा और ज़रूर सभी लोग इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि जैसे हम लोगों ने हमेशा से हर एक आइसक्रीम को ट्राई किया है, मैंगो किया है, बनाना किया है आज, और वेनिला जो बच्चों को बहुत पसंद आती है वो भी हम लोगों ने आइसक्रीम को ट्राई किया, लेकिन आज वाटरमेलन वाली आइसक्रीम आप सभी लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो अभी हम चलेंगे एक छोटू से ब्रेक की ओर, और ब्रेक के बाद आएंगे हम लोग आज का जो टिप ऑफ द डे बताने के लिए, और उसके बाद आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए। तो चलिए बस हम यूं गए यूं आए।

एग्जैक्टली बंदगी आ गई। और आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे आज के किचन टिप्स की ओर। और किचन टिप्स में आज बताने वाली हूँ मैं आपको दो ऐसे टिप्स जो कि बहुत ही यूजफुल हैं। भाई हमेशा से ये देखा गया है कि जब हम लोग पराठा पकाते हैं तो पराठा में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जैसे मूली का हो गया या फिर आलू का हो गया, तो ना उसका जो चकला बेलन है वो बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है, उस पर पूरा आटा लग जाता है, या फिर ना एक ही पराठे के बाद में लगता है कि यार इसको

0: चकला बेलन है, ये कभी भी मेसी नहीं होगा, उसमें कोई भी आटा नहीं फंसेगा और बहुत ही स्मूथली आपके पराठे पकेंगे। तो ये था आज का टिप ऑफ द डे फॉर किचन, क्योंकि ना हमेशा से हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। तो ये था हमारा आज का नया सेक्शन, क्योंकि हम आपसे लेंगे अभी विदा और कल आएंगे फिर सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें।

0: जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: अरे सुना?
1: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
7: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
9: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मंडे वाली वाइब्स के साथ में। मतलब कि बहुत ज्यादा भागा दौड़ी है लाइफ में, बहुत कुछ नया नया करना है और नया नया करने के चक्कर में नई नई उम्मीदें भी तो हमने पाल रखी है अपने से, अपने अपनों से और सामने वाले से भी लगा रखी है। और इन उम्मीदों के चलते हुए भाई एक ब्रेक बनता है बीच में कि थोड़ा सा थम जाए। इतनी तगड़ी वाली धूप है भैया, शुभ दोपहरिया हो गई है सभी की, मेरे को मालूम है, लेकिन किसी की भाई दोपहरिया के साथ में कुछ और भी, वो बताएंगे किसकी है, क्या है और क्या नहीं है। भाई अभी तो शुरुआत ही हुई है, स्टार्ट में ही सब कुछ जानने का इरादा है क्या? नहीं, मेरे को मालूम है आप सभी को स्टार्ट में नहीं जानना है, लेकिन बता दें कि 3:08 हो गए हैं भाई स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और आपका शो चल रहा है पसंदीदा वाला फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। और उसमें आप कॉल करते हैं फिर अपनी फरमाइशों को ट्यून करवाते, कभी डेडिकेशन के साथ, कभी अपने मन के मुताबिक, कभी बस ऐवे ही। तो हाँ जी, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेकिन लेकिन बात एक है ना कि कुछ हमारे जो नए वाले लिसनर्स होंगे उनको सोच आ रहा होगा भैया इतना सब बता तो रही है मैडम जी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर क्या है। तो नंबर बता देते हैं, वही वाला नंबर है, स्टूडियो वाला नंबर है 6393316429 यानी कि 6393316429। बखूबी आप इससे रूबरू हैं और जो नहीं रूबरू हैं हो गए होंगे क्योंकि मैंने अभी बता दिया है। अभी अपनी बातों का पिटारा हम ऐसे ही चालू रखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं उस नगमे की ओर जो हमने बताया नहीं कि दोपहरिया चढ़ गई, किसी का कुछ चढ़ गया, लेकिन हमारे मुंबई के गोरे छोरे यानी कि रिजू जी का दिन चढ़ गया है। दिन कैसे चढ़ा है? राहत फतेह खली अली, नहीं फतेह खली अली नहीं, हमारे राहत फतेह अली खान साहब की आवाज के जोर पे चढ़ गया है। कैसे चढ़ा है आइए हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं लव आजकल से सैफ अली खान जी पर और दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया ये सॉन्ग जो कि है ओपनिंग सॉन्ग आज के आपके अपने शो का। एंजॉय द ट्रैक। आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में और कुछ प्यारी सी बात के साथ।

कई रंगों पर चर्चा शुरू हो गई और हमने रिजू जी से पूछा था भैया आपका कौन सा कलर है, तो इन्होंने बता दिया भाई हमने तो आपका नाम गोरे छोरे रखा था लेकिन आपने अपना बता दिया गोल्डन, मतलब आपको जो भी देखता होगा टिमटिमा जाता होगा, उसकी आंखों में चमक आ जाती होगी बखूबी। और आप ऐसे ही शख्सियत से नवाजे गए होंगे ऊपर वाले से। और धर्मेंद्र मोहन जी का कहना मेरा रंग पीला है, मतलब सरसों का फूल, सूरजमुखी का फूल और सुबह सुबह का भोरे भोरे का सूर्यदेव का फूल, मतलब वो कलर। आप भी जहाँ जाते होंगे कहीं ना कहीं सभी को शाइन कराते होंगे, आपको कुछ मिले या ना मिले लेकिन आप दूसरों को शक्ति जरूर प्रदान करते होंगे। मेरा मतलब अंदाजा कैसे आप लोग बता सकते हैं फिलहाल, लेकिन उससे पहले भाई कुछ प्यारी सी लाइन आई है वो भी सुना देते हैं और नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। डिमांड बहुत सारी है और आप लोगों के ही गानों की बारी है। फिलहाल जो लाइन आई है वो आई है द ग्रेट सिंह साहब जी की ओर से, जो कि है राजस्थान बॉर्डर से। बॉर्डर की बात करें तो भैया बड़ा मजा आता है, कभी इधर का स्वाद कभी उधर का स्वाद। हाँ चलिए, और स्वाद के साथ में संस्कार भी मिलते हैं फ्री वाले। फिलहाल इन्होंने लिखा है हकीकत नहीं हो तुम मेरा भ्रम हो, झूठे तो सब हैं तुम थोड़े कम हो। वाह वाह वाह वाह, मतलब तारीफ भी कर दी और साथ ही साथ में हाथ भी साफ कर लिया बहती गंगा में। बहुत खूब बहुत खूब, बड़ी प्यारी लाइन थी भाई। हम तो ये लाइन आज चुरा के लेके जाएंगे और किसी को चेपेंगे शाम तक में पक्का वाला। और थोड़ी सी खुशी होगी मुझे जब मैं उसका रिएक्शन देखूंगी किसी का भी जिसको भी चेपूंगी। फिलहाल हमारे साथ में बहुत सारे लिसनर्स बने हुए हैं और सभी से रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और हमने देख लिया है कि हमारे साथ में कौन कौन जुड़े, चलिए फटाफट से नाम ले लेते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शैलेंद्र रिझारिया जी खजुराहो एमपी से। हेलो आरजी जी बोला है, नहीं नहीं हेलो आकांक्षा जी बोला है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद में हमारी दीपांशी जी ने बोला है ओहो क्या बात, ऐसा नहीं है दीपांशी जी, कलर कोई भी हो सकता है और हर एक कलर अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन करते हैं। काश के मेरे पास में वक्त होता तो मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर आप लोगों को कलर के बारे में बता पाती, लेकिन हाँ पीला लाल नीला हरा गुलाबी कुछ भी कलर हो, लेकिन जो कलर सफ़ेद रंग में है, जो पाकसाजी, जो बेदाग बना और जो सुकून, वो कहीं और नहीं, क्योंकि आपकी अपनी आरजे आकांक्षा का फेवरेट है। और एक और बात कहूंगी, ब्लैक भी उतना ही पसंद है क्योंकि वो रहस्यात्मक चीजों को बताता है, इतना राज अपने अंदर दफन करके रखता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए दोनों ही मेरे पसंदीदा। वैसे तो मेरे सारे कलर, जैसे सारे सॉन्ग मुझे पसंद है वैसे ही सारे कलर भी मुझे पसंद है। फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और फिर आते हैं आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों के मैसेजेस को भी लेते हैं। और ये डिमांड आई हुई है हमारे पास में इंडिया वाले देवी प्रसाद जी की ओर से, तो सुन लीजिए क्या कहते हैं ये। वैसे शादियों का सीजन है और ये किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं या इनसे कोई कुछ कह रहा है, ये तो सुन के ही पता चलेगा। फिलहाल एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में आपके अपने आरजे आकांक्षा को।

मान लिया और हमने मानी है अपनी नेहा जी की बात को। भाई हमको सभी के मैसेज दिख रहे हैं, बस सांस तो लेने दीजिए, एक सांस में कितना कुछ बोल जाऊंगी। यानी हमारे चंगू मंगू जी की जोड़ी भी हमारे बीच में उपस्थित है और इसके बीच में आ गए हैं हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी और अंबर गोयल साहब भी हमारे बीच में है और हमार करिया है जैसे कोयला। अच्छा ऐसा क्या आप लोग भी ना ऐसा मजाक वाला लिख देते हो, मैं पढ़ भी लेती हूँ बल। और इसके बीच में है सौरभ मौर्या जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आर्जी आकांक्षा। और साथ ही साथ में सबलु सावंत जी आ गए मुंबई बोरेवली से, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और भाई हमें लगा नहीं था कि काला कलर सभी को इतना पसंद आ सकता है, वैसे मुझे काला सफ़ेद दोनों पसंद है और मैं अगर कहूँ तो जीवन के हर एक रंग मुझे पसंद है, चाहे वो सुख हो दुख हो कुछ भी हो। पार्टिकुलर एक कलर की बात नहीं करी मैं, जिंदगी के रंगों की बात करी, मतलब आप सभी के इमोशंस की, हम सभी के इमोशंस की। और इसके बीच में हमारे साथ में मौजूद है धर्मेंद्र मोहन भारती जी, दीपांशु जी हैं, रिजु जी हैं, कमल नयन जी भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। और लिखते हैं शुभ ठंडी दोपहरिया, वाह मतलब आप कूलर लेके साथ में घूम रहे हैं या फिर एसी, ये भी मेंशन कर दीजिएगा आपको ठंडी कैसी लग रही है, मैं जानना चाहूंगी सच में। कमलन जी प्लीज मेंशन करिए, राधे राधे आपको भी। और गुलफशान सारी जी हैं सीतापुर से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। और भाई इन्होंने मैसेजिंग करना सीख लिया है, सबसे पहले तो आपको इसकी मुबारकबाद है। संजय जी हैं पटना से, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, राधे राधे आपको भी। और उम्मीद है आप कुशल मंगल के साथ होंगे। प्रीति शुक्ला जी हैं बहराइच से, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र यादव जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं गौरा चौकी से सुनने वाले सभी का मोस्ट मोस्ट मोस्ट वेलकम। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, हमारे प्यारे लिसनर हैं जिनका नाम है शाहिद अंसारी जी, जो हमें सुनते हैं मुरादाबाद से, उनकी डिमांड है। चलिए इसको ट्यून करते हैं, फिर आएंगे अमित जी की डिमांड लेके, उसके बाद सुरेंद्र यादव जी होंगे गौरा चौकी से, और फिर होंगे हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी।

फर्स्ट दफा मैं ये सॉन्ग सुनी हूँ। 98s में से आया हुआ सॉन्ग है और हमें तो लग रहा है भैया हमें मोहब्बत हो जानी, इतना रोमांटिक सॉन्ग आपकी पसंद हो सकती है शायद अंसारी जी। मजा आ गया सुन के। मुरादाबाद से आपने जो पेशकश की है और हमारे अलावा ही मतलब हम अकेले नहीं इसमें और हमारे सभी लिसनर शामिल हैं, क्योंकि इतना रोमांटिक सॉन्ग हो तो किसको पसंद नहीं आएगा। चलिए एंजॉय करते हैं इसी सॉन्ग को। 3 से 4 के सफर में मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त आरजे आकांक्षा, और आप भी अपने सॉन्ग्स को ट्यून करवाने के लिए 6393134629 पर कॉल कर सकते हैं।

आनंद आ गया सुन के, मन तो कर रहा था पूरा सुन लो, लेकिन क्या करूँ, डिमांड्स बहुत सारी है और बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना कॉल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और चूंकि हमारे जो नए लिसनर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी जाहिर सी बात है दी ही जाती है, और फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड है हमारे अमित जी की, और अमित जी को सुनना है हमारी प्यारी श्रेया घोषाल जी की आवाज, और साथ ही साथ में आप बताएं किसकी आवाज है ये। भाई आपके कानपुर के सिंगर हैं, अगर नाम नहीं पता है तो बड़ा दुख होगा हमें।

जवाब भी आ गया। सौरभ जी का कहना जुबिन नोटरियाल नहीं, जुबिन नोटरियाल जी नहीं है, रिजु जी का सही जवाब है। और भैया ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे जो वहाँ के निवासी है, मतलब आपने कहा कानपुर से नहीं, उन्नाव से, तो उन्नाव से हमारे विकास जी है। जब विकास जी हमको कॉल मिलाएंगे या कभी आएंगे तो उनसे जरूर पूछना चाहेंगे। और ये आवाज है विशाल मिश्रा जी की, बड़े प्यारे सिंगर है, बड़ी वर्सिटैलिटी है, और लेकिन इतना सुकून है इनकी आवाज में जितना की श्रेया जी की। और ये जोड़ी ने मिलकर इस गाने को दमदार बना दिया। एंजॉय द ट्रैक।

भाई गाना बहुत उम्दा है और इस पूरे गाने की ये जो लाइन है मेन, इसी में पूरा जैसे जान निकाल के रख दिया है लिरिसिस्ट ने। फिलहाल बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिमांड की और उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने नागेश्वर धाकर जी का, जो कि रतलाम की गलियों से हैं और मतलब कि एमपी से हैं, और मनी शर्मा जी हमारे बीच में प्रस्तुत हैं और मतलब उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फिलहाल के लिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे सुरेंद्र यादव जी की है गौरा चौकी से। फिर आते हैं धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर, फिर होंगे प्रबल जी, और अगर हमारे सौरभ जी ने अपना गाना सही से मेंशन कर दिया होगा तो नेक्स्ट डिमांड उनकी लेंगे। चलिए सुनते हैं फिलहाल शादियों के सीजन से ये वाला गाना, और किस किसने मेहंदी लगवानी है ये बता दीजिए भाई इस सीजन में। हम तो अभी भी कुंवारे ही रह जाएंगे ऐसा लग रहा है, इस सीजन में ढूंढ रहे हैं वैसे मेरे मम्मी पापा, दूल्हा मिल जाएगा तो बता देंगे।

माय मिस्टर कैप्सूल के साथ में सविता दुबे जी का भी हरखापुर से हम स्वागत करना चाहेंगे। आप दोनों का स्वागत और अभिनंदन करती है आरजे आकांक्षा। और भाई, जिसको भी अपने अपने डिमांड्स को ट्यून करवाना है, नंबर एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, 6393-31-64-29 ये आपका कॉल इन नंबर है, आपके स्टूडियो का नंबर है। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे हम धर्मेंद्र मोहन भारती जी के सॉन्ग की ओर। गाने आज भी बहुत सारे आए हुए हैं और बहुत सारे रह भी जाएंगे, लेकिन क्या करें, समय वही उतना होता है और आपके नगमे इतने प्यारे होते कि सभी के बजाने होते हैं, पर मैं कितना ही मशक्कत कर लूँ कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना लाइफ में, और छूटना भी ज़रूरी होता है, तभी तो हम कुछ नया इजाद कर पाते हैं। फिलहाल ये गाना। और हाँ, इस सॉन्ग के बाद प्रबल मिश्रा जी आपकी बारी होगी और फिर होंगे हमारे नेक्स्ट

हाँ जी, और चूंकि ये पंजाबी बीट है और आपको अगर मतलब आप थिरकने पे नहीं मजबूर होते हैं तो इसके बोल्स इतने प्यारे होते हैं कि आप अंतरात्मा से तृप्ति महसूस करते हैं। फिलहाल ये गाना था हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी के डिमांड पे और रिजू जी को काफी पसंद आया क्योंकि इनको और हमारा टेस्ट सेम ही है। और भाई मनी जी, आप अपने मैसेज को प्लीज फिर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दें ताकि हम उसको बोल पाए, क्योंकि आप कहाँ से बोल रहे इतने सारे मैसेजेस के बीच में ढूंढने में थोड़ा सा मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी। और हमारे प्यारे प्रबल मिश्रा जी हमको नजर नहीं आ रहे इसलिए हम उनके गाने को थोड़ा सा रोकते हैं। अगर आप हैं हमको सुनने तो प्लीज बताइए, वरना आने के बाद आप यही बोलेंगे कि हमने गाना बजाया या नहीं बजाया। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर जो कि हमारे सौरभ जी की है। तो चलिए सौरभ मौर्य जी की डिमांड पे ये वाला सॉन्ग आपको सुना देते हैं, किशोर अवस्था। आहा।

क्या बात है भाई, किशोर अवस्था की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है हमारे सौरभ मौर्य जी के गाने के, हाँ जी, लिरिक्स के अनुसार। फिलहाल हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आई डिमांड की ओर, और अगर बात करें समय की तो हो गए हैं भाई स्टूडियो क्लॉक 3:32, और कॉल इन का नंबर वही वाला है 6393 3164। कॉल आप कर सकते हैं, कॉल इन लाइन पूरी खुली हुई है आप ही के लिए। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अपने प्रबल मिश्रा जी पंडित जी के नगमे की ओर, और मनी जी आप जो भी अनाउंस करवाना चाहते हैं प्लीज एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर दें ताकि हम उसको पढ़ पाए। फिलहाल के लिए इन्होंने हमसे कहा, यानी हमारे पंडित जी ने हमसे कहा कि आज आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग बजाइएगा, तो हमारी ओर से आपके लिए ये बेस्ट वाला सॉन्ग हमारी प्लेलिस्ट से। एंजॉय करिए आप सभी 3 से 4 के सफर में आपके अपने फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून को।

जी श्रोताओं, तो ये थी हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी के लिए हमारी पसंदीदा प्लेलिस्ट से एक सॉन्ग। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले भाई मनी शर्मा जी ने एक प्यारा सा मैसेज भेजा है अपने प्यारे मित्र यानी कि सचिन जी को। और सचिन शर्मा जी का आज है बर्थडे। लिखते हैं विशु नागा भटपुरवा के सचिन शर्मा जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं हमारे गांव के, इनका 1,00,000 से भी ज़्यादा यूट्यूब पर ओके फॉलोवर्स हैं और इनको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इसी तरह इनका दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होता रहे, इनके फॉलोअर्स बढ़ते रहे और इस सभी को हंसाते रहे। और जिस तरह से कपिल शर्मा जी जाने जाते हैं, सचिन शर्मा जी हम लोग के दिलों में बसे रहे। और आर्य आकांक्षा की ओर से भी और पूरी रेडियो ज्ञानस्थली की ओर से भी इनके उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे रेनू तिवारी जी की ओर से और इनको सुनना है एक लोकगीत। चलिए हम भी सुनते हैं मिलके 3 से 4 के सफर में ये प्यारा सा नगमा। उसके बाद आनंद जी हैं हमारे साथ में, उसके बाद है निबर जी, अजीज जी हैं, साक्षी मिश्रा जी हैं और नेक्स्ट हैं राजू सलमानी जी, दुर्गा जी और रीत लाल जी हमारे इलाहाबाद से, नसीम साहब हैं और सबलू सावन जी हैं, रोशन लाल जी हैं, सुरेश जी हैं चौक गोंडा से, विकास जी हैं और ये गाना भी है भाई, सुन लेते हैं।

बलम जी केवल ताकेंगे और आज से उनका कोई काम नहीं रहेगा, ऐसा कहना है हमारी प्यारी रेणु तिवारी जी का। इतनी दफा ताका ना ताका ना ताका ना, मुझे याद आ गया ताकी रे ताकी। खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। रामकृष्ण नंदन जी हमारे बीच में हैं उपस्थित इलाहाबाद से, आपका भी स्वागत है और राधे राधे आपको भी सर। और चलिए बढ़ते हैं वाह वाह करते हुए। हाँ जी वाह वाह वाह वाह वाह वाह, थैंक यू दीपांशु जी। और नागेश्वर जी माफ करिएगा, कॉल करिएगा क्योंकि आज बहुत सारी डिमांड है, आप अच्छे से समझदार हैं कि ये आपका कॉलिंग शो है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड है हमारे प्यारे आनंद जी का। और आनंद हमारे आनंद जी का कई सारे लिसनर हैं तो पूरा नाम इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जिन्होंने भी कॉल किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना काफी प्यारा है और है क्या ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन सुनेंगे जरूर क्योंकि इसके जो शुरुआत है गप्पूची गप्पूची जरूर सुनेंगे। हाँ इसको हम नागेश्वर जी को डेडिकेट कर सकते हैं।

dabuchi dum dum. Kishiki kishiki dum dum. Dabuchi dabuchi dum dum. गपू जी गपू जी गम गम गम गम। एक तो गम वाला गम है, दुख वाला, दूसरा है चस्पा करने वाला गम, और दूसरा तीसरा है जब हम गिरते हैं कहीं ऊपर से नीचे गम से, वो वाला गम। हाँ, तो तीन तरह के गम हमको सिखा दिए गए हैं आनंद जी के द्वारा। फिलहाल आनंदित हो जाइए और आगे बढ़िए नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड हम डेडिकेट करेंगे आप सभी को, यानी कि हमारे प्यारे चैटबॉक्स वासियों को। एक दूसरे के आप बड़े प्यारे वाले यार हैं, और ये गाना कभी हमने किसी को डेडिकेट किया था, फिलहाल आज हम उन्हीं यादों में डूब जाते हैं। और सुहाग मूवी से, पुरानी वाली सुहाग मूवी से आपको एवरग्रीन सॉन्ग दोस्ती पर ये वाला सुनाते हैं। बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तीन से चार के सफर में मैं हूं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और ये डिमांड हमारे प्यारे निब्बर जी की। देखिए, गाड़ी चलाना सिखाया जा रहा है दोस्तों द्वारा, और हम भी चलाते हैं अपने जीवन की गाड़ी अपने दोस्तों के जरिए ही। फिलहाल ये गाना

गाना तो हो गया, ये दोस्ती के नाम गाना था और आप सभी हमारे मित्र हैं, तो आप सभी मित्रों और मित्राणियों को ये गाना हमने डेडिकेट किया था और किसी टाइम पे हमने भी किसी को ये गाना डेडिकेट मारा था, तो वो याद और वो जुड़ाव फिर से महसूस हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए निब्बर जी, आपने इतने प्यार से डिमांड की। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है जिसकी, उससे पहले भाई हम बताना चाहेंगे कि हमसे ये अजीज जी की डिमांड मुंबई से, और हमसे कहा गया है हमारे प्यारे लिसनर है जिनका नाम है अमर गोयल जी कि अपने मन से कोई सॉन्ग बजाइए, तो हम आपके लिए स्पेशल ये वाला गाना बजाते हैं। और आपने फिलहाल हमसे कहा था कि ये गाना मतलब जो भी होगा वो आप पे होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे ये आपके लिए, क्योंकि अगर आप लोग, मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी कि क्यों, फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए।

कटरिया पे आने का यही कहना है कि जब तक आप लोग आते नहीं है क्षमा नहीं बनती हो, और क्षमा जैसे बनना शुरू होती है कि हमारे जाने का भी वक्त हो जाता है। मैंने घड़ी देखा 3:45 हो गए, अभी तो स्टार्ट ही किया था, जाने की भी बारी। ओ माई गॉड, वेरी वेरी डेंजरस थिंग दिस इज फॉर मी। हाँ, जाने वाली बात भाई, फिलहाल कोई बात नहीं, दुख दिल पे रख लेंगे। और रेखा भरद्वाज जी की आवाज थी, बिल्कुल रिजु जी आपने सही फरमाया। मैं सवाल करती हूँ, उससे पहले आपने जवाब दे दिया और अच्छा किया, क्योंकि मेरा दोनों ही एक साथ में हो गया, मतलब कि सवाल और जवाब। फिलहाल बढ़ेंगे साक्षी जी की डिमांड की ओर, और ये गाना हम सभी लड़कियों को डेडिकेट करेंगे। डेडिकेट करने का कारण क्या है, क्योंकि लड़कियां होती है डायमंड की तरह, और गाना बड़ा सुंदर है। थैंक यू सो मच साक्षी मिश्रा जी, अपनी प्यारी सी डिमांड हम तक पहुंचाने के।

मैं सादगी में किसी का दिल फिदा हो या ना हो, लेकिन आप लोगों की बातों में मैं पूरी पागल हो जाती हूँ। मैं टोटली गॉन मैड एंड क्रेजी। क्या करूँ, आप लोगों के मैसेजेस इतने प्यारे होते हैं, लेकिन मैं किसी को बताऊंगी नहीं, क्योंकि बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो भी ऐसी मेरी तरह हंसने लगेंगे। अगर वो हंसने लगे तो फिर गाना कौन सुनेगा। और नेक्स्ट वाला गाना बड़ा ही प्यारा है, जो कि हमारे दुर्गा जी की डिमांड है। आहा, क्या डिमांड है, ये डिमांड तो डिमांड है, और सारी डिमांड एक से बढ़ के एक है, लेकिन ये गाना इमोशनफुल, एंजॉय करिए।

गाने होते हैं ना जो एवर ग्रीन हिट्स में से होते हैं, और उन्हीं में से एक ये गाना था दुर्गा जी। बहुत उम्दा मजा आ गया। एंजॉय करते रहिए लगातार 3 से 4 के सफर को। फिलहाल के लिए बस 10 मिनट ही शेष है मेरे पास में, लेकिन गाने बड़े बड़े प्यारे हैं और जिनकी डिमांड रह जाएगी आई एम सो सॉरी, प्लीज आप कल दोबारा से अपनी डिमांड करवा लीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी ओर से। वाह वाह वाह वाह वाह सॉन्ग।

बिल्कुल सही कहा रिजु जी आपने कि हर लड़की अपने लव के लिए ये सॉन्ग जरूर गाती है, एक दफा तो जरूर ही गाती है, सही फरमाया है। और सौरभ जी, एक दिन में एक ही डिमांड होती है, इतनी सारी डिमांड छूटने वाली है बाकी सभी की, एक वक्त पे एक ही गाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, और बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे प्यारे राजू सलमानी जी की है, आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। आवाज बिकॉज से सुनने वाले सभी लिसनर्स को पहले तो वेलकम और थैंक यू। और साथ ही में बड़े दिनों बाद हमारे रॉबिनहुड जी का सॉन्ग आज प्ले कर पाऊंगी मैं, इसके लिए इनको बड़ा वाला थैंक्स जो इन्होंने टाइम से कॉल किया।

हाँ जी, अब नेक्स्ट डिमांड लेंगे और नेक्स्ट डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर रीतलाल जी की। चलिए इनके डिमांड को कंप्लीट करेंगे और फिर आएंगे नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में, जो कि होगी हमारे विकास कुलकर्णी जी की, जिन्होंने आज पहली दफा हमें कॉल किया उत्तराखंड से। और उसके बाद में नेक्स्ट डिमांड देखते हैं किसकी होगी, लेकिन लास्ट डिमांड होगी हमारे मनीष शर्मा जी की फ्रॉम भटपुरवा। और उससे पहले ये वाला सॉन्ग।

तिवारी जी, आपका स्वागत है। बस आपसे एक सवाल था कि विशाल मिश्रा जी उन्नाव से हैं या कानपुर से, प्लीज क्लियर करें, क्योंकि रिजू जी का कहना उन्नाव से, हमारा कहना कानपुर से है। आप बताएं कि वो कहाँ से, विशाल मिश्रा जो हमारे बॉलीवुड के सिंगर हैं। फिलहाल ये गाना बहुत ही खूबसूरत है रीत लाल जी का, और जिन जिनके सॉन्ग्स रह जाएंगे उनसे

एक सवाल आया है, दिल परदेसी होता है विदेशी क्यों नहीं? तो भैया परदेसी मतलब किसी पराये को अपना दिल दे रहे हैं, और विदेशी का मतलब विदेश चले जाना, विदेश जाके किसी को ढूंढ के तब उसको अपना दिल देना। तो परदेसी और विदेशी में ये था अंतर। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे विकास कुलकर्णी जी की, जो हमें सुनते हैं उत्तराखंड से। चलिए सुनते हैं ये वाली डिमांड जो आज इनकी पहली दफा आई है हमारे ज्ञानस्थली पर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो

0: शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिए तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
6: है ना, लेट्स डाइन। कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
7: Now you're listening Gyanasthal 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली, और आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, तो बिना किसी सस्पेंस के हम बता दें, आज हमारे बीच डॉक्टर अतुल सिंह मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, MDC अल्ट्रासाउंड में, और साथ ही साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल से। सर वेलकम करते हैं आपका।
8: बहुत बहुत धन्यवाद
7: सर। यूँ तो चूंकि आप डॉक्टर हैं, तो आपको ना जाने कितने मरीज हर रोज़ आपसे ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपको पहचानते हैं, लेकिन स्टूडियो में बुलाने का हमारा सीधा सा मकसद होता है कि आपकी निजी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जाने, आपको भी जाने, आपकी जो जीवन आपका रहा, जो संघर्ष रहा है, अब तक का सफर जिसे कह सकते हैं, उसके बारे में भी जाने, यानी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दें अपने बारे में।
8: जी, मेरा नाम डॉक्टर अतुल सिंह है, और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई जो की है, जवाहर नवोदय विद्यालय गोंडा से की है। उसके पहले अपने गाँव के बगल में प्राइमरी स्कूल था, मैंने 1 से 5 तक वहाँ पढ़ाई की, 6 से 12 जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर गोंडा। उसके बाद काकादेव कानपुर में तैयारी की CPMT की, CPMT के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया 2009 से लेकर 2015 तक।
7: ओके सर
8: जी,
7: ये तो आपके बारे में हुआ, लेकिन हम फिर से एक बार आपकी फैमिली पे चलते हैं। आपने कहा तरबगंज से हैं।
8: जी जी जी
7: सर, तरबगंज जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि ये तो हमारा अर्बन में आता है, गोंडा शहर में, वो रूरल में आता है
8: जी।
7: और अक्सर जब आज भी हम कुछ रील को स्क्रॉल करते हैं, तो जब वो खेल जो दिखाते हैं ना, गिल्ली डंडा, गोली और टायर चलाना,
8: जी जी,
7: मैं बस ये जानना चाहता हूँ, सीधा आप शायद आप समझ गए होंगे, क्या आप भी इन खेलों के खेल चुके हैं?

0: हाँ बिल्कुल, चूंकि गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में घर, जो बचपन में जो सारे गेम ऐसे होते तो मैंने भी खेला है, मैंने भी इन्जॉय किया उन चीज़ों को, और बचपन बड़ा अच्छा भी था। एक बात ये भी है कि उस समय यहाँ पे माहौल कुछ दूसरा था
1: जी,
0: गोंडा में तहसील तरबगंज का खासकर, उसमें माहौल कुछ दूसरा था।
1: ओके,
0: तो उतना बेहतर तो नहीं भी था, पर हाँ ये था, जो भी था ठीक था। प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन लेते थे, साथ में मौका मिलता था तो गुल्ली डंडा हो गया, टायर चलाना हो गया, या बाहर निकल कर क्रिकेट खेलना, ये सारी चीज़ें जो भी गांव में थी, जैसा भी पॉसिबल होता था सारा की
1: आपने एंजॉयमेंट पूरा किया।
0: जी जी, जो चीज़ें जो साधन मिले वो बेहतर तरीके से।
1: जी, सिबलिंग्स के बारे में बताएं, कितने लोग हैं आप लोग?
0: जी, पिताजी वहीं गांव पे खेती करते थे और चार बहनें थी, मेरे बड़े भाई थे, मैं भाइयों में दूसरे नंबर पे हूँ, दो बहनें हमसे छोटी हैं, दो बड़ी हैं।
1: बड़े भाई आपके क्या करते हैं?
0: बड़े भाई हमारे प्राइवेट जॉब में थे, फिर प्रधान भी थे, विनय कुमार सिंह प्रधान भी थे, समय प्रधान नहीं है, और उनका एक हमारे यहाँ विपिन बिहारी कॉलेज है तो उसके प्रशासक भी हैं वो इस समय, और अपना उनका रोड कंस्ट्रक्शन फर्म है तो सड़क वगैरह बनाना यही उनका अपना काम है प्राइवेट। मेरा शुरू से थोड़ा पढ़ाई की तरफ रुझान था तो जो भी मुझसे बन पाया, मैं पाँचवीं तक गांव में पढ़ा, फिर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा था, उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर मैं 6 से 12 तक नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किया।
2: जी, तो आपने नवोदय विद्यालय देवरिया कला मनकापुर में?
0: जी
2: जी, तो वहाँ पे तो फिर चूंकि नवोदय विद्यालय होता है वो आवासीय विद्यालय होता है,
0: जी जी,
2: तो कंप्लीट आप फिर 6 साल अपने परिवार से दूर होकर आपने आवासीय वहाँ पर शिक्षा ग्रहण?
0: जी, हॉस्टल का पूरा था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित संस्था है तो हॉस्टल का सिस्टम था। एक साल में त्रिपुरा भी था, 9th क्लास में मैं एक साल पूरा त्रिपुरा भी था, माइग्रेशन के थ्रू लोग जाते हैं, तो मैं 2002 के बाद में 2002 से 2003 जो मेरा था 9th क्लास का जो दौर था एक साल का, वो मेरा त्रिपुरा में भी था।
2: जी,
0: रामचंद्र घाट त्रिपुरा।
2: जी, ये बताइए डॉक्टर साहब, चूंकि ये हमारा कम्युनिटी रेडियो है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, तो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोता ये जानना, मतलब श्रोताओं को हम लोग का फर्ज है, हम लोग के लाइसेंस में भी ये होता है कि हम श्रोताओं को अपनी चीज़ों से अवगत कराते रहें, तो एक चीज़ यहाँ निकल के आ रही है, आपने कहा थ्रू माइग्रेशन हम एक साल के लिए त्रिपुरा गए थे, तो क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के लिए ये कंपलसरी होता है कि एक साल वो माइग्रेट करके जाए?
0: नहीं, वहाँ लॉटरी सिस्टम होता था, 8th क्लास में लॉटरी निकलवाते थे, जिन 14 लोगों का नाम उसमें आता था उन लोगों को भेजा जाता था।
2: 14 ही क्यों?
0: 14 क्योंकि उनका अपना एक,
2: अच्छा, एक मानक होगा,
0: एक मानक है कि इतने बच्चों को दूसरे स्टेट भेजा जाए, वो वहाँ का कल्चर सीख के आए, वहाँ की भाषा सीख के आए, और वहाँ के उतने बच्चे हमारे यहाँ आए, वो यहाँ का कल्चर सीख के जाए, वहाँ बताएं, बेसिकली यूनिटी जो हमारी
2: यूनिटी इन स्ट्रेंथ की बात होती है। तो सर, जब त्रिपुरा गए
0: जी,
2: साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ,
0: ईस्ट,
2: त्रिपुरा ईस्ट हो गया
0: जी, जी।
2: तो वहाँ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आ गई होगी।
0: हाँ जी, वहाँ पे बंगाली चलता है, उनका जो मूल भाषा है बंगाली है, पर हिंदी लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, हम भी बंगाली सीखने गए थे, तो बस किसी तरह मिक्स करके अप डाउन में एक साल बीता।
2: तो आपने वहाँ पर जोल खोबो?
0: हाँ, ये जल खोबो, बाकी हाँ मोस्ट ऑफ द लोग यही सीखते हैं, अमित तुम्हारा को भालो
2: अशी, अमित तुम्हारा को भालो अशी,
1: पूछने वाले थे वहाँ, किसी को बोला तो नहीं था आपने?
0: मैंने बोले नहीं थे पर वहाँ के लोगों ने मेहनत करके इस चीज को सिखाया था कि कुछ सीखो चाहे ना सीखो, ये चीज सीख के जरूर जाओ।
1: मुझे भी लगता है प्रेम से बड़ा क्या होता है।
0: बिल्कुल सही बात
2: जी। तो हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारे श्रोताओं को चूंकि हमें अवगत कराना है कि नवोदय विद्यालय में आप जब वहाँ पे गए, तो ये तो आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात बता दी
0: जी,
2: जो मेथड होता है पढ़ाने का
0: जी जी,
2: वहाँ के क्या जो टीचर्स हैं
0: जी,
2: उनका मेथड और यहाँ का मेथड सेम है?
0: बहुत बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, अगर नवोदय ना होता तो आज मैं यहाँ पे ना होता इस चीज़ को। पहला कॉन्सेप्ट उनका था कि जो मतलब गरीब घर के बच्चे हों, पढ़ने में तेज हों, एग्जाम के थ्रू उनका सिलेक्शन किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ मिला। अदरवाइज गांव से निकल कर और फिर आगे जाना एक बहुत ही कठिन चीज़ है। गांव में प्राइमरी स्कूल में थे, अगर वहां ना गए होते तो मुझे नहीं लगता शायद मैं यहां तक आ पाता। वहां का पढ़ाई का सिस्टम और एक जो इंडिपेंडेंसी कि आपको खुद सारा काम खुद करना है बचपन से, क्लास 6 से, और एक स्ट्रगल, वो लाइफ में आपको बहुत मजबूत बनाती है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ नवोदय विद्यालय का और उस संस्था का, हमारे जैसे तमाम नवोदय विद्यालय के लोग जो गाँव से बहुत ही पिछड़े, मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS जो भी, वो सपना देखते हैं और फुलफिल करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, लोग जब जाते हैं कोचिंग में
0: जी जी,
1: या जब कहीं सिलेक्शन होता है, फेलोशिप करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उस दौरान इंडिपेंडेंट होके सीखते हैं।
0: हाँ।
1: आपका कहने का मतलब है
0: सिक्स क्लास
1: स्टैंडर्ड से ही आपको ये ट्रेनिंग मिल गई थी?
0: मिल गई थी। अकेले रहना है, अकेले खाना है, लोगों को होम सिकनेस होता है। 12th क्लास के बाद में लोग शहर छोड़ते हैं, उनको होम सिकनेस होता है। हमें क्या होम सिकनेस होगा, हम क्लास 6 से ही घर से बाहर थे।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर था।
0: बहुत बेहतर, मैं
1: वहाँ पढ़ाई को लेके, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ के लोग उसे कैसे देखते हैं ये बताइए।
0: देखिए, नवोदय विद्यालय का हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होकर आता है, तो अपने स्कूल का कहीं ना कहीं वो एक बेहतर स्टूडेंट रहता है ऑलरेडी। और अगर टीचरों के पढ़ाने की बात करें, वो अपना 100% देते हैं। एक ही कैंपस के अंदर टीचर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लड़के लड़कियां, सारे कोएड एजुकेशन का सिस्टम होता है। अब हर तरह के लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे टीचर बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं, या सारे उतना अच्छा नहीं पढ़ते, या सारे लड़के बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, सारे नहीं पढ़ते। पर वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपको पकड़ना है। अगर आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम करके जाते हैं क्वालिफाई करके, तो मैं ये मानता हूँ, ओवरऑल मैं यही कहूँगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको आप भुना सकते हैं। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी मतलब फीस का उस समय नहीं था। 9th से मैं 200 रुपये महीना दिया था। वो रूल आया था कि जनरल कैटेगरी के जो लोग होंगे वो देंगे, बाकी कोई नहीं देगा। लेकिन 200 रुपये तब भी कुछ नहीं है, रहना खाना सब कुछ फ्री था। और जो एजुकेशन मिली, जो कुछ भी आज मैं हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ।
2: जी, आपने बताया कि जीवन में अपॉर्चुनिटी शब्द भी यूज किया आपने, कि नवोदय में जो अपॉर्चुनिटी मिली वो कहीं ना मिलती और आप उसके लिए थैंकफुल हैं। जीवन में दो शब्द आते हैं, एक स्ट्रगल और एक सैक्रिफाइस। इन दोनों चीजों को आपका कैसे बैलेंस बैठा रहे हैं? मैं नवोदय स्कूल की बात कर रहा हूँ।
0: देखिए, वहाँ दोनों चीज है। आप घर से दूर जाते हैं, अवस्था आपकी मात्र 9 या 10 साल की होती है, तो आप सैक्रिफाइस तो शुरू ही कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ जाकर आप स्ट्रगल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और सीधी सी बात है, आप बहुत लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, तभी आपका सिलेक्शन हुआ है, उसका क्राइटेरिया है। आप पढ़ने में तेज हो, इंटेलिजेंट हो, अर्बन एरिया से भी लिए जाते हैं लोग, लेकिन उसमें प्रायोरिटी दी जाती है जो गाँव का गरीब बच्चा हो, जो पढ़ने में तेज हो, उसको मौका दिया जाए। तो चूँकि आपके पास वैसे भी कुछ नहीं है, लुटने को कुछ है नहीं, जो है मिलने को ही है।
1: क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, चूंकि अभी उपवन जी ने स्ट्रगल की बात की, सैक्रिफाइस की बात की,
0: जी
1: ये तो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्ड है, और किया भी आपने, हार्ड वर्क करके। लेकिन अब हम आते हैं थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट एरिया की तरफ।
0: जी
1: जाहिर सी बात है, आप पढ़ने में, आपने बताया कि भाई बहनों में आपको ज्यादा रुचि थी पढ़ने में।
0: जी
1: एंटरटेनमेंट का अगर हम बोल सकते हैं, या खेलकूद में, या सांस्कृतिक, किस कार्यक्रम में आपको, किन चीज़ों में, एक्टिविटी में?
0: गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी गा नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर मुझे प्ले करना पसंद था। लेकिन चूंकि स्कूल में था, तो मैं प्ले वगैरह नहीं कर पाया। 9th में त्रिपुरा गया था, चूंकि प्रेशर पढ़ाई का था, क्योंकि मुझे पता था मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं पढ़ाई की तरफ नहीं गया तो मेरे पास और कोई दूसरा मौका नहीं है कि गाँव से निकल कर मैं गोंडा भी पहुँच पाऊँ। लखनऊ दिल्ली तो बहुत बड़ी बात है
1: जी,
0: तब तहसील भी आने में जब आपको आधे घंटे 45 मिनट लगता हो, तो फिर जिला ही हमें बम्बई और दिल्ली नज़र आता था। तो मुझे ये सीधी सी बात थी कि मुझे पढ़ना। जब हाँ MBBS में मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने प्ले, वो मेरा इंटरेस्ट था, मैं एक्टिंग करता था और डायलॉग लिखता था, प्ले करता था, एक्सप्लोर किया अपने आप को। बेसिकली मैं खोजना शुरू किया कि मैं हूँ क्या, क्योंकि एक टेंशन खत्म हुआ कि अब MBBS कर रहा हूँ, 1 लाख की नौकरी कहीं मिलेगी, अब मेरे अंदर और क्या क्या है। उन चीज़ों का जब मैं खोज किया, तो मुझे लगा कि मैं प्ले करता था, डायलॉग लिखता था, ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने MBBS टाइम पे किया।
2: अभी आपने कहा कि मैं, मुझे गाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास आवाज़ नहीं है। मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि मैं गा सकता हूँ लेकिन मेरे पास आवाज़ नहीं है, मैं बजा सकता हूँ लेकिन मेरे पास साज नहीं है, बनवा तो लेता मैं भी एक ताजमहल लेकिन मेरे पास मुमताज नहीं है। तो क्या आपके पास कोई मुमताज है या नहीं है, इसी के बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
0: नहीं नहीं, अभी तक आपने घुमा के बहुत अच्छा।
1: अरे उपवन जी, मुमताज से पहले मैं आऊंगा, आपने कहा मेरी आवाज अच्छी नहीं है।
0: जी
1: ये लफ्ज किसने कहा आपसे?
0: नहीं, एक्चुअली मैं गाने का ट्राई, मतलब मेरा बड़ा शौक, म्यूजिक हमेशा सुनता हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, अगर गाना ना बजे मैं गाड़ी नहीं चला सकता।
1: ओके।
0: मैं पंजाब था तो पंजाबी गाने बहुत सुना, आज भी सुनता हूँ, पर मैं गा नहीं सकता। मुझे एक्टिंग का शौक है, वो मैं अभी तक मौका ढूंढ नहीं पाया। बीच में मैंने ट्राई किया, कैनो स्लाफ क्लब में मैं सेलेक्ट हुआ, ऑडिशन दिया, तो स्टैंड अप कॉमेडी मैंने किया। मैंने वहाँ पर 2-3 महीने कई सारे शो किए घूम घूम के, गिगल्स कॉमेडी क्लब, कैनो स्लाफ क्लब। बट चूँकि कुछ जिम्मेदारियाँ और दूसरी चीज़ कुछ हमारा प्रोफेशनल जो अपना एक है कि ऑलरेडी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है।
1: डॉक्टर साहब, बिल्कुल
2: डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ।
0: जी
2: और विद इन 15 डेज दे रहा हूँ।
0: जी
2: अभी 15 दिन के अंदर जयपुर में एक फेस्टिवल होने वाला है।
0: जी
2: और वो फेस्टिवल इंडिया लेवल का फेस्टिवल है।
0: जी
2: जिसमें बतौर एंकर मैं जा रहा हूँ।
0: जी
2: और वहाँ पर कॉमेडी शो भी है।
0: जी
2: और एक 15 मिनट का डायलॉग बोलना भी है उसमें जी, और उस डायलॉग के पीछे की एक उसमें संदेश देना है
0: जी, जी, जी।
2: और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ चलें और चूंकि वो नेशनल लेवल का है उसमें एक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा मिलेगा
0: जी,
2: और संभवतः इंडिया के बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो सब वहां आएंगे क्योंकि तो जैसे यहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ अभी यूपी में उसी तरह का कोई सम्मेलन शायद वहां पर होने वाला है
0: जी, जी।
2: तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलें तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: मौका तो आप दे रहे हैं लेकिन उसी बीच का कोई पेशेंट आ जाता है, कोई केस, सब क्या किया जाएगा?
2: देखिए शौक भी बड़ी चीज है।
1: क्या बात है। सो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपको ड्रामा में इंटरेस्ट था
0: जी, जी।
1: मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां पे कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ड्रामा ही क्यों?
0: जी, मैं जब अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैं टेबल टेनिस खेलता था, टेबल टेनिस खेल में मैंने टेबल टेनिस और चेस खेलता था, इंडोर गेम बेसिकली। और जब मैं अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू किया कि और मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो प्ले था। मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना, डायलॉग मारना बड़ा अच्छा लगता है आज भी। मतलब लाइफ तो बड़ी सीरियस हो गई है, हम अब डॉक्टर होकर अगर शेरो शायरी और डायलॉग मारेंगे तो मतलब सही, ये तो मामूली सी बात है, मरीज को लगेगा हम दिखाने आए हैं कि तो ये चीज़ तो हम अपने मतलब हमारा प्रोफेशन थोड़ा सा सीरियस और बड़ा ही मतलब इस तरह का नहीं है कि हम बैठ के डायलॉग करें, पर हाँ ये है मतलब मुझे बड़ा पसंद है।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, इसी बार ने थोड़ा सा आपका IQ लेवल भी मैं भी टेस्ट कर लूंगा
0: जी, जी जी जी।
1: कि वो कौन सा इंसान है जो किसी भी प्रोफेशन को अपना सकता है?
0: जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कोई डिग्री ना हो। रतन टाटा जी की एक लाइन है कि जो अनपढ़ होता है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आप लग रहा है ज्यादा सीरियस हो गए हैं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब था, एक एक्टर सब कुछ कर सकता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: जब वो कैरेक्टर होता है तो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है
0: जी।
1: तो जस्ट किडिंग, ये छोटा सा आपके साथ मजाक था और कुछ नहीं। बट चूंकि मेरा कहने का मतलब लोगों को भी समझाने का इसलिए था, इस मजाक को इसलिए किया कि एक एक्टर होना बहुत बड़ी बात है
0: जी, जी।
1: लोगों को शायद ये लगता होगा कि ये ना मतलब नौटंकी के नाम से लोग कहते हैं, नाटक के नाम से, बड़ा अभी भी कई लोग हैं जो शायद उस तरह उसको उतनी इज्जत नहीं देते हैं जिसका वो हकदार है वो कला
0: जी, जी, जी।
1: और ये बहुत टफ है और बहुत अमेजिंग और बहुत क्रिएटिव फील्ड है
0: जी, जी।
1: क्या मानना आपका?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: क्योंकि आपने किया हुआ है
0: जी, जी जी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप अंदर से अगर किसी बात को लेकर दुखी हो तो आपको अपने इमोशंस को हाइड करना पड़ता है और आपको एक्ट में उतरना पड़ता है
2: जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको अभी जो अदनान जी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा आपसे बातचीत के दौरान, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ और वो गोंडा से ही निकली थी
0: जी।
2: गोंडा में स्थानीय फातिमा स्कूल है
0: जी, जी, जी।
2: अगर आप जानते हो
0: जी, जी, जी।
2: और ये बहुत पहले की बात है, फातिमा स्कूल में एक फंक्शन हुआ था और पैरेट ऑर्केस्ट्रा आई हुई थी कानपुर से
0: जी,
2: और उसमें राजू श्रीवास्तव जी आए थे
0: जी,
2: और राजू श्रीवास्तव का वो बिगिनिंग स्टेज था
0: जी।
2: और उस समय वो केवल ऐसे कैरिकेचर कहके और मोटरसाइकिल पे बैठ के, उस समय राजदूर मोटरसाइकिल का जमाना था, रेलवे स्टेशन गए थे
0: जी, जी।
2: और राजू श्रीवास्तव ने उस समय उनकी नेक्स्ट डे जब हमने पत्र पत्रिकाएं पढ़ी, पेपर जी, पढ़े जी, तो उसमें लिखा था कि अगर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर अच्छा पैसा कमा सकता है, अगर कोई सिंगर अच्छा पैसा कमा सकता है तो सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरे की नकल उतार रहा हूँ, हूबहू उतार रहा हूँ, और आप तो कॉपी कर रहे हो, और हमें तो पूरी चीजों को समावेश करके निकालना है, और तो हम इसको कहीं ना कहीं इसको हम कमर्शलाइज्ड करेंगे। और शायद वही था कि वो फिर जब बॉम्बे गए और जब लाफ्टर शो, चैलेंज लाफ्टर शो आया, तो उन्होंने उसको पूरी तरह से कमर्शलाइज्ड कर दिया था, और आज आप देख रहे होंगे कि टीवी चैनल्स पे, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे लाफ्टर के कई शोज आ रहे हैं और हाईली पेड हो गए हैं सर। तो ये भी एक कला है और इस कला को नकारा नहीं जा सकता है
1: जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस कला को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम चूंकि बता दें डॉक्टर साहब, अभी हमारे म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है
0: जी। बिल्कुल।
1: सो अभी आपने जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि पंजाबी गाना पसंद है
0: जी,
1: तो आप कोई पंजाबी गाना सजेस्ट करें, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे, मैं भी सुनता हूँ।
0: आप टेम्पररी प्यार काका का बजा दीजिए।
1: काका का टेम्पररी प्यार, ओके। सो दोस्तों, आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली। बाकी ये जो टेम्पररी प्यार है, ये हमारा सर का टेम्पररी नहीं रहेगा, परमानेंट होने वाला है। और चूंकि मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में? क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस ब्रेक के बाद, और शो चल रहा है गौधुली। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अतुल सिंह सर, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं MDC अल्ट्रासाउंड और लाइफलाइन हॉस्पिटल से। सर, एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं। और
1: थैंक यू जी।
0: बढ़ते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ, चूँकि आपने बताया कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं
1: जी,
0: और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या बचपन में या अपनी जब आप यंग थे
1: जी,
0: तो सनी देओल या अजय देवगन की फिल्में देख देख के हड्डियां टूटती थी, इस वजह से कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज किया, मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन ही क्यों? ये पूछना चाहते हैं।
1: एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत में।
0: Okay.
1: मैं मेडिसिन करने के बाद में DM कार्डियो करना चाहता था, सच्चाई ये है। पर काउंसलिंग में गया था तो फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था कि सेकंड में और बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी, और ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैं लिया, क्योंकि रिप्लेसमेंट वगैरह थी। तो मैं सोच के लिया कि नहीं करूँगा तो कुछ बड़ा करूँगा मैं, क्योंकि सिर्फ टूटी हड्डियों को सिंपल जोड़ देना मुझे थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं लगता था, सच्चाई ये। इसलिए मैं इंटरेस्ट नहीं शो करता था ज़्यादा इस ब्रांच में। फिर जब मैंने लिया तो चीज़ों को जाना, तो फिर 3 साल मैं PG किया। PG के बाद में मैंने 6 महीने दिल्ली में काम किया, मैं एक्स गुड़गांव में। उसके बाद में मैं शिफ्ट हो गया काम सीखने के पर्पज़ से ही इलीजारो सीखने, जो रशियन टेक्निक होती है, पंजाब, अबरोल मेडिकल सेंटर गुरदासपुर में। तो अगर कहूँ कि मैंने क्यों लिया ऑर्थोपेडिक्स, तो मतलब किस्मत में थी मेरी, मैं यही कहूँगा, डेस्टिनी थी। उस समय सिचुएशन मेरी कुछ ऐसी बनी फैमिली का, या ऐसा ही सिचुएशन आई कि मुझे लेना ही पड़ा।
0: ओके
2: जी, थोड़ा ऑर्थोपेडिक्स से थोड़ा सा पहले चलते हैं
1: जी।
2: MBBS आपने किया
1: जी,
2: तो क्या आपने अपने स्लैम बुक में पहले से लिख रखा था कि हम MBBS ही करें?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं लिख रखा था।
2: क्या बनना चाहते थे उस समय?
1: मैं जब नवोदय विद्यालय में था तो मैं सच बताऊं तो मुझे यही लगता था मैं टीचर बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर में कोई सरकारी जॉब करता नहीं था, तो इतना मुझे नहीं पता था कि चीज़ें कैसे आगे होंगी, नहीं चीज़ें पता, ना कोई बताने वाला था। तो उसमें मेरा यही था कि मैं प्राइमरी का टीचर बन जाता तो मेरा लाइफ सेट हो जाता। फिर हुआ क्या कि जब मैं इंटर में गया तो इसी ज़िले के डॉक्टर पंकज गुप्ता जी हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं लखनऊ में, नवोदय विद्यालय के हमारे सीनियर थे।
0: ओके।
1: डॉक्टर अनुराग सिंह जी, इस समय वो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं मनकापुर में, वो और डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, ये दोनों लोग नवोदय विद्यालय में सीनियर थे मेरे, तो इनका सिलेक्शन हो गया। मैं इंटर में था, मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आए, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा काका देव कानपुर आ जाओ, हमने यहीं से तैयारी की थी CPMT की। एक मिथ था उस समय कि लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, सीटें बिक जाती हैं, करप्शन बहुत है, ऐसी चीज़ें उस समय थी। तो फैमिली भी नहीं सपोर्ट करती थी कि तुम जाकर टाइम बर्बाद करो, 6-7 साल बर्बाद करके खाली हाथ लौटो, BSc 20 से अच्छा कर लो। तो चूँकि उनका सिलेक्शन हो गया तो मैं काका देव गया तैयारी किया, फिर मेरा भी सिलेक्शन हो गया।
0: आपने नाम लिया कि CPMT का आपने पेपर दिया था, अभी नीट होता है
1: जी जी,
0: हमारे श्रोताओं को दोनों के बीच का डिफरेंस बता दें।
1: अब हुआ क्या कि पहले स्टेट अपना अलग कराता था, ऑल इंडिया का एग्जाम अलग होता था, तो स्टेट जो अपना UP कराता था उसका नाम CPMT था, और ऑल इंडिया का CBSE वाले कराते थे उसको ऑल इंडिया PMT बोलते थे। अब नीट में कंबाइन हो गया, स्टेट और सेंट्रल की सारी सीटें मिला दी गई, एग्ज़ाम एक बोर्ड को दे दिया गया, तो NEET UG हो गया, NEET PG हो गया। NEET UG मतलब कि आपका सिलेक्शन होता है, आप MBBS करते हो, फिर उसके बाद वही बोर्ड आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, NEET PG, मतलब पूरे इंडिया का एक एग्ज़ाम होने लगा है। अब ऐसा नहीं हर स्टेट अपना अलग एग्ज़ाम करवा रहा है और ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग एग्ज़ाम करा रही है, अब सीधा नीट हो गया, NEET UG, NEET PG
2: जी। तो अभी तो नीट की बात हो गई, MBBS आपने बता दिया, और आपने गुरदासपुर से आपने एक ऑर्थोपेडिक्स में एक नया कोर्स किया
1: जी,
2: और उसके बाद कहीं आपने जॉब वगैरह भी किया या डायरेक्ट प्राइवेट पे?
1: हाँ, मैं जब PG कंप्लीट किया दिल्ली में, बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी न्यू दिल्ली से, उसके बाद में मैंने मैक्स गुड़गांव में काम किया, फिर मैं शिफ्ट हो गया हिमाचल, मेरे सीनियर थे डॉक्टर उत्तम सिंह जी, उनके साथ में 2-3 महीने काम किया।
2: हिमाचल में कहाँ पे?
1: हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा।
2: जी जी, कांगड़ा जाना।
1: कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ककीरा हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था
2: जी।
1: तो वो डलहौजी के नीचे था, घूमने की बड़ी अच्छी जगह थी। तो मैं बेसिकली 3 साल पीजी करके थोड़ा थका महसूस कर रहा था, तो मैं सोचा जाके शाम को डेली डलहौजी चाय पीऊँगा और नीचे उतर के फिर काम करूँगा। तो 2-3 महीने अच्छा खासा वहाँ काम किया। फिर वहाँ पंजाब में गुरदासपुर में आर्थो पंजाब की एक अलग लेवल की है, ये मैं आपको बता दूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में, साउथ इंडिया में गंगा हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो पंजाब की आर्थोपेडिक ब्रांच एक अलग लेवल पे चल रही है, मुझे पता चला वहाँ जाके, क्योंकि हिमाचल और पंजाब बगल बगल हैं। फिर मैं चला गया अब रोल मेडिकल सेंटर गुरदासपुर को ज्वाइन कर लिया। 6 महीने में ट्रॉमा सिर्फ ऑपरेट करता था और बड़ी बड़ी सर्जरी जो थी वो असिस्ट करता था, सीख रहा था, रशियन टेक्निक होती है इलीजारो। 1 साल में सिचुएशन ऐसी बनी कि सर हमारे पेरिस मूव कर गए और उस हॉस्पिटल को उन्होंने लीज पे दे दिया और मुझे आर्थो का काम, उनको मेरा काम बड़ा अच्छा लगा था कि लड़का सिंसियर है, मेहनती है, तो आर्थो का मुझे हेड बना दिए वो, बाकी लोगों को मेरे अंडर में डाल दिए। तो फिर मैं इंडिपेंडेंट सारा काम किया 2.5 साल। 31 जनवरी को मैं आया हूँ यहाँ पे रिजाइन देके, 2 फरवरी को घर पहुँचा हूँ, तब से फिर मैं, मतलब मेरी जर्नी प्राइवेट ही चल रही है
2: जी। एक अभी आपने बताया कि एक रशियन टेक्निक बताया इलीजारो।
1: जी जी,
2: इलीजारो के बारे में जैसा थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं डिटेल्स में, और क्या उसके पैरेलल इंडिया में भी कोई टेक्निक है?
1: इलीजारो रशियन टेक्निक की खोज ही इलीजारो सर थे हमारे, वो उन्हीं के नाम पे इलीजारो रखा गया। आज उनके नाम पे रशिया में एक बहुत बड़ा सिटी डेवलप हो गया है। तो
2: उसमें क्या स्पेशलिटी है?
1: स्पेशलिटी ये है कि जैसे बोन, कहीं बोन लॉस हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, ट्रक चढ़ गया या कोई हैवी व्हीकल चढ़ गया, मिस हो गई, इस टेक्निक से नई बोन बनाई जाती है। पहले यही होता था कि काट दो, पैर काट दो, आपका बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा चूरा चूरा हो गया, कुछ नहीं बचा, कंटामिनेटेड है, आप काट दो। इलीजारो टेक्निक से हम नई बोन बनाते हैं, 30 से 40 सेंटीमीटर मतलब बोन बना सकते हैं। मैं बना के रखा हूँ सारी फोटो। उसके बाद में इलीजारो का में कोई चीड़ फाड़ ज़्यादा नहीं करना होता, सिंपल तार, आप जैसे साइकिल के व्हील्स जो होती हैं
2: जी जी,
1: सिंपल वैसे तार होते हैं। और डिस्ट्रक्शन एंड उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था सेकंड वर्ल्ड वार में, कुछ चीज़ें आर्थो में बहुत सारी चीज़ें खोजी गई क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत मास कैजुअलिटीज़ हो रही थी, तमाम लोगों के हाथ पाओ, तो उन्होंने उस समय तमाम सारी डिस्कवरियाँ हुई सर्जिकल ब्रांचेज में, तो इलीजारो उसमें से एक है।
3: आप बता रहे बोन को डेवलप किया जाता
1: जी,
3: है,
1: नई बोन बनाई जाती है, इलीजारो से बहुत सारी चीज कर सकते हैं।
3: तो मतलब ये पेशेंट की बॉडी में ही बनाई जाती है, अलग से डेवलप करते हैं?
1: बॉडी में ही, जितने बची हुई बोन है उसी बोन के टुकड़े की मदद से पूरी बोन बना देंगे।
2: डॉक्टर साहब अभी तो हम लोग इस मामले में लेमैन हैं, लेकिन एक चीज जो सुनाई पड़ती है कि जैसे कभी भी हड्डियां टूटती हैं
1: जी,
2: तो जब डॉक्टर से बात करो तो डॉक्टर बताता है, मैं बिल्कुल लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ आपसे, कि डॉक्टर बताता है कि हड्डी को खींचकर दोनों हड्डियों को एक साथ लगा दिया जाता है, उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि हड्डियां ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं और जुड़ जाती
1: हैं।
2: तो जो इलीजारो पद्धति से आप हड्डियां बनाते हैं
1: जी जी,
2: और तो क्या कैल्शियम D3 वगैरह देखा, उनमें भी वही गुण आ जाते हैं जो ओरिजिनल हड्डी में होते हैं?
1: बिल्कुल ओरिजिनल, आपको एक्सरे में, क्योंकि बॉडी ही तो बनाती है, आप तो बस एक टेक्निक इस्तेमाल करते हो, जैसे कोई चीज खींचते हो तो उसमें डेली 1 mm खींचना रहता है, स्क्रू पेच वगैरह की मदद से डेली 1 mm का डिस्ट्रक्शन करते हैं हम, बॉडी खुद बनाती है बोन
2: जी, क्योंकि आपने बताया
1: 1 mm पर डे
2: जी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर
1: मतलब महीने में 3 सेंटीमीटर, 1 mm पर डे, महीने में 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर
2: जी जी।
1: तो जितनी बोन डिफेक्ट है, जैसे किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, अब हम पहले सर्कुलेशन प्लास्टिक सर्जन या भगवान के आशीर्वाद से मैं प्लास्टिक सर्जरी में न्यूरोवैस्कुलर पे सारा करता हूँ, तो पहले वैस्कुलरिटी बचाएंगे, कंटामिनेशन जो गंदगी उसको दूर करेंगे, फिर देखेंगे कितना बोन बचा है, कितना लॉस है, 10 सेंटीमीटर है तो 3.5 महीने में हम बोन बना देंगे
2: जी
1: जी, साथ में डिफार्मिटी करेक्शन वगैरह भी करते हैं।
2: ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इलीजारो के बाद क्या इंडिया में भी कोई ऐसी पद्धति है जिसके वजह से आप ऑटोमेटिकली ये आप कोई नई बोन डेवलप कर सकें?
1: इलीजारो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है नई बोन बनाने का, जो भी बचा हुआ बोन होता है उसकी मदद से इलीजारो टेक्निक ही है। अब इसका इन्वेंशन रशिया में किया गया, नाम इलीजारो टेक्निक है, पर इंडिया में भी यही यूज किया जाता है कि नई बोन पुरानी बोन से अगर नई बोन बनानी है तो यही एक टेक्निक है।
3: सर इससे पहले आपने बताया कि इन्वेंट वहीं रशिया में हुआ है
1: जी जी,
3: तो इससे पहले इन केसेस में क्या करते थे?
1: इम्प्यूटेशन होता था बहुत, अगर गंदा रोड साइड एक्सीडेंट है तो काट के निकालना पड़ता था क्योंकि बोन बचा ही नहीं है, बोन बचा नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू गंदा है, तो सॉफ्ट टिश्यू अगर रहेगा भी तो बोन नहीं तो कैसे होगा?
3: तो फिर भी अभी भी कुछ ऐसे केसेस तो होते होंगे ना जिसमें ये टेक्निक यूज नहीं हो पाती है कि सारी ही केसेस में हो जाती है?
1: अगर मैं आपको कहूँ तो बेहतर हमारा सिस्टम है, मतलब प्रॉपर ओटी हो और इलीजारो मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ऐसे केस में नहीं जहाँ वैस्कुलरिटी ही खत्म हो गई, सर्कुलेशन खत्म हो गया, प्लास्टिक सर्जरी की गई लेकिन सर्कुलेशन नहीं बचा, तब तो काटना ही पड़ेगा
3: जी जी।
1: पर अगर सॉफ्ट टिश्यू कवरेज है, सॉफ्ट टिश्यू मतलब मांसपेशियां कुछ बची हुई हैं, क्योंकि बोन को ढकने के लिए हमें मांसपेशियां चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू चाहिए, वो सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो इलीजारो बेहतर रिजल्ट देता है। और कई बहुत बड़ा एक रोल है इलीजारो का, केवल बोन बनाने में ही नहीं है, डिफॉर्मिटी डिफॉर्मिटी में जो बच्चों का हाथ पैर टेढ़ा होता है, शुरुआत में कुछ बच्चे पैदा होते हैं आप देखेंगे पैर टेढ़ा रहता है, प्लास्टर लगता है, प्लास्टर से नहीं ठीक होता है, फिर उसको अगर बड़ा हुआ तब भी नहीं ठीक हुआ, रिजिड टाइप का है, रिजिड मतलब नहीं ठीक हुआ, फिर उसको हम इलीजारो टेक्निक से ठीक करते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को ठीक किया, उनकी उम्र 13 साल थी, वो होपलेस थे, मैं वहाँ पे था, जम्मू के लोग खालसा वाले लेकर आते थे, खालसा एड वाले जो फ्री में गरीब बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं, मैंने ठीक किया है, बहुत बेहतर रिजल्ट
2: जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने इलीजारो पद्धति आपने अपनाई और आप बता रहे हैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपसे बात चीज से लग रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं कि इससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं
1: जी।
2: और ये बताइए कि कैसा लगता है कि आप गोंडा में अब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, कैसा आपको लगता है, क्या स्कोप लगता है कि गोंडा में इलीजारो पद्धति से आप इलाज करेंगे और आपको आपका मुँहमांगा पैसा मिल जाएगा?
1: देखिए क्या है कि यहाँ पे सड़ी हड्डियों के साथ बहुत लोग घूम रहे हैं जो मैंने अभी तक देखा है, चाहे उनका ऑपरेशन हुआ हो पहले किसी भी कारण से, जो भी कारण रहा हो, इन्फेक्शन हो गया।
3: थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये सड़ी हड्डी किस टर्म में आप यूज करते हैं?
1: ऑस्टियोमलाइटिस, इंग्लिश में बीमारी का नाम ऑस्टियोमलाइटिस बोलते हैं, कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूटी, ऑपरेशन हुआ, कारण कोई भी हो, हड्डी सड़ गई, जुड़ी नहीं, सड़ती जा रही है, मवाद निकल रहा है, पिछले 2-3 साल से 4 साल से पूरा परिवार परेशान है, हड्डी टेढ़ी हो गई, दोबारा टूट गई, ये सारा लगा। इसका इलीजारो करके मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बेहतर जिंदगी देने की मैं बात करता हूँ, कि उनका पूरा परिवार सुखी रहेगा, हर चीज़। बात पैसे की नहीं है, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, यहीं का मैं नागरिक हूँ, अगर उनकी चीज़ों को मैं नहीं समझ पाऊँगा तो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यहाँ इस जिले का जो सबसे पिछड़ा एरिया तरबगंज है, वहाँ का जो सबसे पिछड़ा एरिया है वहाँ मेरा घर है, मैं बोल सकता हूँ शुरुआत बाढ़ पीड़ित इलाका है, वहाँ से मैं निकल के आया हूँ, अगर यहाँ के लोगों की अवस्था को या आर्थिक स्थिति को अगर मैं नहीं भाप पाऊँगा तो कोई नहीं भाप पाएगा। और ये बहुत महंगी टेक्निक नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है कोई बहुत महंगा नहीं है, ऑल अबाउट टेक्निक, कितना आप स्किलफुल हैं, तो वो मेरे पास है परमात्मा की कृपा से, मैंने 3.5 साल 6 साल यही किया और कुछ नहीं किया। तो बात अगर ट्रीटमेंट की आएगी कि लोगों का लाइफ सुधरे मेरी वजह से, तो बात पैसों की कुछ नहीं है, बस सकती वो इस चीज़ को जाने कि हाँ इसका इलाज होपलेस ना हो, बच्चे का पैर टेढ़ा, गाँव लोग पड़े हुए हैं।
2: अतुल जी
1: जी,
2: आपने बताया कि और आपकी बातों से लग रहा है कि आप सर्जन हैं, आर्थोपेडिक सर्जन
1: जी।
2: थोड़ा सा फिजिशियन वाली भी बात कर लेते हैं
1: जी।
2: एक बहुत आम समस्या है गठिया
1: जी, जी।
2: आर्थराइटिस
1: जी जी।
2: इसके पीछे का रीजन जो है और जो हड्डियों में रोग हो रहे हैं
1: जी,
2: उसका जो मेन रीजन समझ में आ रहा है वो गलत खान पान है और आदमी वर्किंग नहीं रह गया। अगर इस समय हर हाथ में मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, अगर आदमी को सब्जी भी लेने जाना है, मुश्किल से 200 मीटर भी जाना है तो वो अच्छा। दूसरी बात क्या है कि पहले तो थोड़ा बहुत वर्क हो भी जाता था, किक भी लगा लेता था, अब तो हाथ में इग्निशन है, खट से दबाया बटन उछल दिया, तो वर्किंग नहीं हो पा रही है। तो क्या इसको आप मानते हैं कि हड्डियों में जो विकार आ रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है, गलत खान पान और नॉन वर्किंग?
1: बिल्कुल सही बात है, बीमारी के कई सारे कारण होते हैं, उसमें जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो हैबिट होता है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो गठिया है, दो तीन तरीके की गठिया होती है, एक आर्टियोमीन होती है, उसको रेमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये 20-30 साल के बीच में या 30-40 साल के बीच में लोगों को मिलता है, तो आर्टियोमीन है। जो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आप नी ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, इसमें सही बात है, आदमी का आजकल का खान पीन वैसा नहीं रहेगा जैसा लोगों का पहले होता था। शहर में रहने वालों के लिए शुद्ध दूध, शुद्ध खाना पीना मिलना बहुत मुश्किल है, हर चीज़ में मिलावट है, जनरली बात बोला जाए तो, फ्रेंकली अगर बोलूँ तो यही सच्चाई है कि हर चीज़ में मिलावट है, अगर आप सतर्क नहीं है तो आपको चीज़ें साफ नहीं मिलेंगी पैसा देने के बावजूद भी। दूसरी चीज़, हमारी डेली हैबिट्स हर किसी की सिटिंग बढ़ती जा रही है, हम फिजिकल एक्टिव उतने नहीं हैं जितना पहले होते थे, चाहे हम ऑफिस में बैठे हैं, चाहे हम कोई भी काम करें, हमारा सिटिंग बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारी हड्डियाँ डे बाय डे, क्योंकि हम उतना रहते नहीं सनलाइट के नीचे, विटामिन डी की डिफिशेंसी, 10 लोगों का अगर आज मैं विटामिन डी करवाऊँ जिनकी एज 25 सालों में बता रहा हूँ, 10 में से 6 लोगों का कम निकलेगा, ये यंग एज की हाल है, बूढ़े लोगों के जिनकी एज 40 से ऊपर है या जिनकी 60 के ऊपर, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। जो यंग जनरेशन हमारी, क्योंकि वो डेली ऑफिस में रहती है तो घर के अंदर रहती है, लोगों के पास अगर सुविधा है तो लोग एसी में रहते हैं, चाहे घर के अंदर चाहे ऑफिस के अंदर, तो सनलाइट कम से कम लोग ले रहे हैं। दूसरी चीज़, खान पियन में हमारी चीज़ जो है फ्राइड चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बाहर का खाना पीना लोगों का बढ़ता जा रहा है,
2: फास्ट फूड टाइप,
1: हाँ फास्ट फूड, वो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारे चीज फैक्टर हैं कि जो हम लोगों की ओवरऑल देखें तो चाहे हार्ट संबंधी बीमारी हो चाहे हड्डी संबंधी बीमारियाँ हो, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं।
3: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि विटामिन डी की कमी है, लोग सनलाइट के सामने नहीं आते हैं।
1: जी जी,
3: एक तरफ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा जब निकले तो टैनिंग की एक प्रॉब्लम आती है।
1: जी जी,
3: सो इसको कैसे मैनेज करें? एक तरफ तो एडवाइस दी जाती है कि टैनिंग हो रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सनलाइट
1: अगर आप बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में बैठें धूप में, ये बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग में, अब दोपहर के टाइम पे बैठेंगे तो पूरा शरीर
3: करेक्ट। तो हम यही चाह रहे थे कि आप श्रोताओं को हमारे बताएं कि आखिर वो करना क्या है।
1: वो फिर दोपहर में एक मीम्स हुआ था ना बच्चे का कि भगवान कुछ भला कर, मैं करिया हो गया हूँ, वो वाला हाल हो जाएगा। दोपहर में नहीं बैठना है, सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग जब सनलाइट कम रहती है, कपड़े निकाल के आप बैठिए, जब सुबह धूप होती है, हल्की धूप रहती है, आप हल्की धूप में बैठिए, एक्सरसाइज करिए। और खान पीन में देखिए, हर आदमी को मैं आपको बताऊँ आज के ज़माने में नमक और शुगर दो चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए।
3: नमक और शुगर,
1: नमक शुगर, मीठा हमारा हर आदमी के लिए जरूरी हो गया है। वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, वो मेडको है या मेडको नहीं है, उसके दिमाग में दो चीज़ होनी चाहिए कि सफ़ेद, दो चीज़ सफ़ेद हमें अवॉइड करना है, एक चीनी और एक नमक, बीपी और शुगर, साथ में हड्डियों का भी, हड्डियों की भी बीमारियाँ नहीं सब चीज़ों से होती हैं। पता चला डायबिटीज़ हो गया, आप कुछ दिन बाद आपको हाथ पैर में झंझनाहट सुनपना शुरू हो जाता है, बोन का डिजनरेशन जल्दी होने लगता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हम सभी को।
2: डॉक्टर साहब, अभी आपने एक शब्द यूज़ किया था दूध,
1: जी जी,
2: और मिलावट की बात हो रही थी कि शुद्ध दूध नहीं है।
1: जी,
2: जहाँ तक दूध के बारे में बताया जाता है कि दूध कैल्शियम उससे मिलता है,
1: जी,
2: और कैल्शियम की कमी अगर होगी तो हड्डियाँ कमजोर होंगी,
1: जी,
2: तो क्या आप कहते हैं कि दूध का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या?
1: बिल्कुल है, आप हरी सब्जियाँ खाइए, और उसके बाद में अगर आपको देखिए पनीर है तो सोयाबीन पनीर मिल जाए, सोयाबीन पनीर खाइए, उसके बाद में आप दाल का सेवन करिए। प्रोटीन हमारा सबसे बेसिक होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बताऊं हर किसी को, जनरल एक लाइन में बोलूं, तो आप खाने में इतना ध्यान रखिए कि आपके प्रोटीन प्रॉपर मेंटेन हो, प्रोटीन हमारा बिल्डिंग एजेंट होता है, और शुगर कम से कम लें, हर इंसान के लिए शुगर की मात्रा कम से कम लेनी है। कुछ लोग डेली चाय पीते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कितना शुगर वो ले लिए, ऑफिस में है घर में है, हमें कम से कम शुगर लेना चाहिए, प्रोटीन और फैट बस सफिशियंट है हमारे लिए।
3: डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया डिफॉर्मिटी करेक्शन के बारे में,
1: जी जी,
3: और साथ ही ऑस्टियोमेलाइटिस,
1: जी
3: राइट, और किन किन चीज़ों में आपका स्पेशलाइजेशन है?
1: जी, मैं यहाँ जो इतने दिन में मैंने जो प्रैक्टिस के दौरान देखा, यहाँ सियाटिका के मरीज बहुत, लोगों को कमर दर्द है और झुनपना, नसों की सुन्नपना पैरों तक जाता है उनके, वो आते हैं, इसका मैं ब्लॉक लगाता हूँ। दर्दिया इंस्टीट्यूट है इंडिया का, कोलकाता में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इस समय इंडिया का, वहाँ से मैंने फेलोशिप एडवांस किया है, अल्ट्रासाउंड एंड सीआरएम गाइडेड ब्लॉक लगाता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ मरीज को चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं दो मिनट में उसको चला के घर भेजूंगा, अनटिल अनलेस ऐसा ना हो कि उसकी जो पीछे कैनाल होती है वो पूरी ब्लॉक हो, ये मेरा दावा है। मरीज को चाहे जितना बड़ा डिस्क बल्ज होगा, मैं उसको चला के भेजूंगा दो मिनट तीन मिनट के अंदर।
3: सियाटिका में प्रॉब्लम कैसे देखते हैं आप, क्या होता है?
1: बेसिकली जो कमर हमारी होती है,
3: जी,
1: हड्डियाँ होती है कमर की, वर्टिब्री बोलते हैं, उसके पीछे हमारा स्पाइनल कैनाल होता है, उसमें नसें पूरी जाती हैं। अब होता क्या है, कोई वजन चीज़ उठा लिए या विटामिन डी की कमी है, कई सारे फैक्टर होते हैं, या हैवी एक्सरसाइज कर लिए, एक्जर्शन हो गया, तो डिस्क बाहर आ जाती है, नसों को दबाने लगती है, पैर में सुन्नपना, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। ये होता है यंग एज में। एडल्ट जो हमारे एडल्ट होते हैं, कभी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या बेचारे अगर उनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि हैवी लेबरन है,
3: करेक्ट,
1: तो उनको दिक्कत हो जाती
3: है। जिम ट्रेनर भी जैसे इसमें हो सकते हैं।
1: अब जो बूढ़े लोग होते हैं उनका तो उम्र के साथ डीजनरेशन, जैसे बता रहे थे भी गठिया होता है, वैसे ही वो भी घिस जाती है, हमारी जो कमर की हड्डियाँ होती हैं वो भी घिस जाती हैं उम्र के साथ, वहाँ पर मल्टीपल ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, तो कैनाल को दबाने लगते हैं। उन नसों को प्रॉपर जाके कौन सी नस दबी हुई है उसको देख कर मैं सुन करता हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी चाय जीतने, अभी तीन दिन पहले मेरे पास अकबरपुर में पेशेंट है, दो साल से घूम रहे थे दिल्ली मुंबई कई जगह दिखा चुके थे, ऑपरेशन बोला गया था, वो चल के गए हैं, वीडियो मेरे पास है उनका। तो सियाटिका का सटीक इलाज अगर ऑपरेशन के बिना संभव होगा तो मैं करके दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है, गठिया का एक पीआरपी थेरेपी होती है, जैसे अर्ली स्टेज की गठिया है, आपका ब्लड ही निकाल के पीआरपी बना के मैं लगाऊंगा, रीजनरेटिव थेरेपी बोलते हैं।
2: ये पीआरपी क्या होता है पूरा बताइए।
1: पीआरपी होता है कि आपका ब्लड लेते हैं और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है पीआरपी की, है मेरे पास, उस ब्लड से मैं पीआरपी बनवाता हूँ। उस पीआरपी को लगाते हैं, वो क्या करता है बेसिकली आपका वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ग्रोथ फैक्टर बढ़ाएगा, जिससे वहाँ पे रीजनरेशन होता है, जो कार्टिलेज आपको डैमेज हो गए हैं वो फिर से बनते हैं और वहाँ पे ग्रोथ होता है नॉर्मल टिश्यू का जो वहाँ पे थे। तो अगर अर्ली स्टेज की गठिया है, जैसे 45 या 50 साल की उम्र है कोई आता है, तो उसको मैं पीआरपी ही एडवाइस करता हूँ। शुरू के 3-4 दिन बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, लगता है प्रॉब्लम और बढ़ गई, सूजन आता है, लेकिन 2 से 3 महीने वो परमानेंट रिलीफ देता है। कुछ लोगों को टेनिस एल्बो होता है, आप देखे होंगे यही बीमारी सचिन तेंदुलकर जी को जी तमाम लोगों को टेनिस एल्बो होता है। इन चीज़ों में पीआरपी थेरेपी में देता हूँ, बहुत अच्छा रोल है। पेन मैनेजमेंट के सारे, चाहे सर्वाइकल का पेन हो, गर्दन का हो, गठिया हो किसी भी तरीके का, और एड़ियों में दर्द होता है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है।
3: तो आपने दर्द के निवारण की बात की और अभी हम आपके और श्रोताओं के दर्द का निवारण एक छोटा सा प्यारा सा गाना सुना के करते हैं।
1: जी जी जी।
3: सो जैसा कि आपने कहा था पंजाबी गाने आपको पसंद है
1: जी,
3: तो अभी इस म्यूजिकल ब्रेक के लिए आप कोई सॉन्ग सजेस्ट करना चाहेंगे?
1: हाँ, सॉन्ग बजाना हो तो आप 295 बजा दीजिए, या शाम का समय है तो आप हर हर शंभू जो शंकर जी का
2: है
1: वो
2: बजा दीजिए। हर हर शंभू बजा दीजिए,
3: हर हर शंभू। ओके, बिल्कुल। सो आपकी रिक्वेस्ट पे हम हर हर शंभू प्ले करने वाले और अपने लिसनर से कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
5: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
4: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
5: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
4: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबरा हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
5: पालतू जानवरों को छाव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
4: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
7: अच्छा ये बताओ।
8: हाँ सर।
7: तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है?
8: हाँ बिल्कुल किया ना सर।
7: क्या किया?
8: एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया और जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: नाउ लिसनिंग ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गौधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल सिंह सर, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सर, आपने बताया लास्ट टाइम अभी जब हम लोग जा रहे थे म्यूजिकल ब्रेक से पहले
1: जी,
3: तो आपने रिप्लेसमेंट की बात की थी
1: जी।
3: तो हम जानना चाहेंगे क्या शोल्डर, नी और हिप का भी रिप्लेसमेंट आप करते हैं?
1: जी, बेसिकली मैं लगभग 150 के ऊपर मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया है। और 100 के ऊपर मैंने नी रिप्लेसमेंट किया है और 5 मैंने रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी की है। शोल्डर के रिप्लेसमेंट बहुत रेयर हैं, बहुत कम लोग करते हैं। ये मैं मेरे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत गिने चुने लोग होंगे जो करते होंगे। मैं 5 करके आया हूँ, सारे रिजल्ट अच्छे हैं मेरे पेशेंट के, और एल्बो रिप्लेसमेंट भी मैंने 2 किया है। तो रिप्लेसमेंट का ये है कि आजकल जो एडल्ट हैं, कुछ लोग जिम वगैरह जाते हैं तो कभी कभी स्टेरॉयड लेने लगते हैं बॉडी बनाने के चक्कर में, तो एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। पता चलता है बाद में चूल्हे की मतलब हड्डी सड़ रही है, उसमें फिर आपको कराना ही पड़ता है अगर अर्ली स्टेज है। हाँ, उसमें एक चीज़ बताऊंगा मैं, अगर आप यंग एज के हैं, कोई दवा बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, या आप जिम जाते थे और आप बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉयड ले रहे थे, आपको हिप पेन स्टार्ट हुआ, जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। होता क्या है, अगर स्टेज बढ़ती है तो रिप्लेसमेंट ही इलाज है। अगर अर्ली स्टेज पर आएंगे तो उसमें भी यही है, कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको कर दूंगा कि आपका रिप्लेसमेंट ना हो। तमाम चीज़ें हैं उसमें जो अर्ली स्टेज पे अगर की जाए तो हो सकता है आपका रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े। दूसरी चीज़, अगर है पता चला बहुत डिफार्म हो गया है तो आप रिप्लेसमेंट कराइए, क्योंकि उसमें होता क्या है, आपका कमर भी धीरे धीरे टेढ़ा हो जाता है। आप लोगों से कहते हैं नहीं कराऊंगा ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सारी चीज़ों को पहले समझ लीजिए फिर कराइए। कुछ लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, बेचारे बहुत दर्द में रहते हैं, तो उसके लिए एल्बो रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट, जो भी उनका जो भी जोड़ खराब है वो बदलते हैं, बेहतर रिजल्ट है। परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक कोई फेल के साथ नहीं आया मेरे पास जिसको मैंने किया है। तो अगर गोंडा जिले के हमारे तमाम मतलब माताएं बहनें भाई बुजुर्ग उन लोगों को इस तरह की समस्या है या डाउट है, तो मैं तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ यहाँ पे।
3: डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रहा है ऑपरेशन के मामले
1: जी,
3: में
1: जी।
3: अभी गोंडा में आपने कुछ केसेस भी हैंडल किए होंगे?
1: हाँ जी, गोंडा के लोग, तरबगंज के लोग, मैं फैजाबाद में मेरे से कई लोग ऑपरेट कराए, वो भी ठीक है।
3: कैसा रिस्पांस उनको मिल रहा है?
1: सब सारे ठीक हैं। और दूसरी चीज, अभी पिछले हफ्ते मैंने लाइफ लाइन हॉस्पिटल में कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बायलेटरल रेडियो अल्नर साइनोसिस बोलते हैं, एल्बो जॉइंट की दिक्कत होती है पैदा होने से ही रहती है, तो उसका सुपिनेट मतलब हाथ जैसे हम लोग सीधा पलट लेते हैं, हथेली आसमान की तरफ हो जाती है, उसका नहीं हो पाता था, उसको कंजेनाइटल थी। कई जगह कंसल्ट किए थे, नहीं हो पा रहा था, तो मैंने भी पिछले संडे को ऑपरेट किया है, तो अब वो कर लेगा।
3: ओके डॉक्टर साहब, चूंकि मेथड बहुत सारे होते हैं ऑपरेशन करने के, एक दूरबीन विधि होती है।
1: जी जी जी,
3: दूरबीन विधि का क्या इस्तेमाल आप भी करते हैं, और दूरबीन विधि का इस्तेमाल किया क्यों जाता है?
1: अभी जैसे मैंने बताया कि स्पाइन की अगर समस्या है, डिस्क अगर बल्ज है, कभी कभी डिस्क फट के पूरा आ जाती है, उसको डिस्क एक्सट्रूजन बोलते हैं, पता चला पूरी कैनाल को वो दबा रही है, तो एक नया तरीका आया स्पाइन एंडोस्कोपी, वो मैं करता हूँ। स्पाइन एंडोस्कोपी बीते मुश्किल से आपको बता दूं 1 सेंटीमीटर का भी चीरा नहीं लगता, 8 mm के चीरे में, 8 mm के चीरे में आपका डिस्क निकाल के बाहर रख देंगे, और सेम डे आप चलकर घर जाइए, सुबह आप हमारे पास आएंगे, सेम डे शाम को चलकर जाएंगे, एक स्टिच लगेगा बस। दूसरा, कुछ लोगों का लिगामेंट टूट जाता है या कंधे के जो लिगामेंट होते हैं टूट जाते हैं, तो उनका दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर का रिपेयर किया जाता है। जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनके नी जॉइंट के लिगामेंट टूट जाते हैं, वो भी सारा मैं करता हूँ। तो ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं, उनके दिमाग में मिथ होता है कि ऑपरेशन के बाद में चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, या स्पाइन का ऑपरेशन कराने से हमेशा के लिए मरीज लेट जाता है, वैसी कोई बात नहीं है। आप आइए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को जानिए, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमें अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है।
3: ओके डॉक्टर साहब, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, बज़ाहिर आपने कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए ही हैं
1: जी,
3: लेकिन अगर मान लीजिए गोंडा का कोई लिसनर है सुन रहा है और उसको किसी आपको आपकी सेवा की नीड है
1: जी जी,
3: तो आप कितने दिन कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, अपना स्केड्यूल आपका क्या है?
1: अभी मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अकबरपुर अम्बेडकर नगर में रहता हूँ, और साथ में लखनऊ हो गया, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर ऑन कॉल भी जाता हूँ रिप्लेसमेंट वगैरह करने में, और गोंडा में शुक्रवार शनिवार रविवार में सिर्फ गोंडा रहता हूँ, अगल बगल में सिर्फ फैजाबाद जाता हूँ, नहीं तो मैं टोटल गोंडा में रहता हूँ शुक्रवार शनिवार रविवार, किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या हो। और मैं एक चीज़ अकली बोल रहा हूँ, अगर पैसे नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, अगर मैं आपकी चीज़ों को नहीं समझ पाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से आके आपकी तकलीफ़ को समझ पाएगा। बात पैसे की एकदम नहीं होनी चाहिए, आप अपनी बात रखिए, झिझक नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, इलाज कहाँ से कराएं। कुछ लोग, एक चीज़ बताना मैं भूल रहा था, इलीजारों से लिम हाइट भी बढ़ाई जाती है, जिनकी हाइट छोटी हो, कुछ लड़कियाँ होती हैं शादी की प्रॉब्लम आती है, तो इलीजारो टेक्निक से लिम लेंथनिंग करते हैं, हाइट बढ़ाते हैं, वो मैं करता हूँ, कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है वो
3: डॉक्टर साहब। लेकिन कहा जाता है कि किसकी स्पेसिफिक एज होती जिसके बाद
1: नहीं, नहीं वो इलीजारो आप मेच्योरिटी के बाद ही करते हैं, 18-20 साल के बाद ही करते हैं, जब हमारी एज हो जाती है, पता चला कि 25 साल तक इंतजार किए, कुछ लोग कहते हैं बच्चा बढ़ेगा 20-22 साल एज हो गई नहीं बढ़ी है, अभी मैं लास्ट ईयर किया था तो उनकी 32 थी, हमने बढ़ाया था 5 सेंटीमीटर। कुछ लड़कियां बड़ी पजेसिव होती हैं कि हाइट हमारी छोटी है, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है कि हाइट छोटी है। तो अगर आपको कराना है तो वो मैं करता हूँ, बाकी मेरे तरफ से तो भगवान ने जितना दिया है उतने पे संतुष्ट रहना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, तो वही जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कराता भी है सर्जरी तो कोई साइड इफेक्ट भी इसका होता है मैच्योरिटी के बाद अगर होती है जो बता रहे हैं?
1: साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है कोई साइड इफेक्ट। लिम्ब लेंथनिंग का सिंपल सा प्रोसीजर, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिनको नहीं पता है उनको लगता होगा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
2: जी एक बहुत बड़ी बात अभी आपने बताई कि किसी बालिका की आपने हाइट बढ़ाई 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर जैसे आपने ये कहा था कि शादी वगैरह में दिक्कत आती है तो क्योंकि हाइट अगर कम है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए सपोज कोई शादी के लिए देख रहा है अपने कोई गर्जियन अपनी बिटिया के लिए या कोई अपनी बहन के लिए, तो ये 5 सेंटीमीटर जो आपने बढ़ाई ये कितने दिन में बढ़ गई?
1: अब जैसे मैं आपको बताया था ना कि उसका कॉन्सेप्ट है ये 1 mm पर डे।
2: जी
1: तो महीने में 3 सेंटीमीटर और अगले महीने के हमारे 20 दिन और दे दीजिए, 50 दिन। फिर उसके बाद में वो हड्डी जो बनती है मजबूत होने में टाइम लेती है, तो लगभग 2 से 3 महीना और दे दीजिए, तो लगभग टोटल 6 महीने का कंप्लीट 6 महीने का प्रोसीजर स्टेप होता है ये।
2: डॉक्टर साहब यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं
1: जी,
2: और ये हमारे श्रोताओं को आप अवश्य बताएं
1: जी
2: कि जो आपने कहा कि हड्डी तो जुड़ गई 50 दिन में
1: जी,
2: और उसके बाद उसको मजबूत होने में 2-3 महीने लग गए।
1: हड्डी हम बनाए
2: जी
1: पर डे 1 mm हड्डी,
2: 1 mm जी,
1: महीने में 3, और फिर पता चला 5 सेंटीमीटर बनाना है तो अगले महीने के 20 दिन हमें और चाहिए।
2: जी, हो गया
3: 50।
1: अब बना के रोक दिए, अब वो हड्डी बनी हुई है। अब कंसोलिडेशन एक टर्म होता है मेडिकल टर्म, वो हड्डी मजबूत हो रही है। जैसे ईटा कच्चे ईटे को पक्का बनाते हैं, सिंपल सा लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, तो वो मजबूत होती है। तो लगभग 2 से 3 महीना हम चलना फिरना अलाउ कर देते हैं 6 हफ्ते बाद में, क्रच के हेल्प से या हम सपोर्ट उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, आप उसके वॉकर के सपोर्ट से चलिए, पर वो हड्डी कंप्लीट मजबूत होने में फर्दर 2-3 मंथ और लेती है। मतलब मैं ये एक मैं कह सकता हूँ कम से कम 6 महीने का प्रोसीजर मान के चलिए। ये सर्जरी वही लोग बेसिकली कराते हैं जिनको बहुत कॉस्मेटिक
2: इशू
1: है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत खून पसीने की कमाई आप चल के अपनी लंबाई बढ़वाइए और जिंदगी में कुछ काम है आप वो करिए, लेकिन अगर आपको लगता है तो हाँ एक बार आप हमसे मिल सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ
2: लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा।
1: लगभग मैं कम से कम बताऊं तो लिम्ब लेंथनिंग मतलब 3-3.5 लाख तक खर्चा आ जाता है।
2: जी
1: जी 6 महीने का मैं आपका इतना लग जाएगा कम से कम। यहाँ के लोगों के लिए जो जो मतलब बेचारों के पास ना तो कोई बहुत मोटा रोजगार मुझे दिख रहा है, ना कोई यहाँ कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, लोग छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास सरकारी जॉब है, बहुत अच्छी सारी सुविधाएं हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा अगर आपके पास टूटी हड्डियां हैं और साथ में सड़ी हुई हड्डियां हैं, आप परेशान चल रहे हैं या पैर टेढ़ा मेरा है, आप उसके लिए मौका निकालिए, मैं वो बेहतर करके दूंगा। या आपके घुटने खराब हैं, जॉइंट खराब है, पूरी फैमिली प्रॉब्लम में चल रही है, नो डाउट आप मेरे पास आइए, मैं बेहतर इलाज आपको दूंगा, चाहे स्पाइन की हो, चाहे किसी भी जॉइंट की हो, चाहे सर्वाइकल का हो, पेन मैनेजमेंट दूंगा, सेम डे डिस्चार्ज, आप सुबह आएंगे शाम को चलते हुए जाएंगे, ये मेरा दावा है।
3: जी तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इसमें से कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आप डॉक्टर साहब से MDC अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लाइफलाइन हॉस्पिटल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर अतुल सिंह है
1: जी।
3: आप इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आज का जो ये सेशन था बहुत ही मीनिंगफुल रहा, काफ़ी सारी चीज़ों पे आपने खुलकर बातचीत की और बहुत ही डिटेल में जाके हमने आपसे पूछा और आपने उसका बेहद सरलता से जवाब दिया। हमारे लिसनर्स के मन में जो सवाल पैदा हो रहे होंगे आज कई हद तक वो शांत हुए होंगे। सो चूंकि अभी ये सेशन जो आपका था ये तो खत्म हो चला है, लेकिन चूंकि जाने से पहले हम आप गोंडा में बैठे हैं और
1: जी,
3: तो गोंडा वालों के लिए कोई अगर संदेश देना चाहे आप?
1: मैं यही कहूँगा कि आने वाली जनरेशन हमारी मेहनत करे और कुछ अच्छा करे, बहुत एक मैं होपफुल नज़रिए से यही कहना चाहता हूँ कि लोग अपना एक गोल डिसाइड करें और अचीव करें, बहुत आगे जाना है, गोंडा ज़िले को बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में, मैं अपने ज़िले को नहीं मानता हूँ प्रेजेंट टाइम में, चाहे क्षेत्र हो, तो नवयुवकों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमारे ज़िले को खेल कूद पढ़ाई लिखाई अपना एक गोल डिसाइड करें, टाइम न बर्बाद करें, खासकर 25 साल के पहले आप टाइम मत बर्बाद करिए। आपको जो भी प्यार मोहब्बत या जो भी फालतू काम करने 25 के बाद आप गोल सेट करिए कि 25 तक आपको कुछ बन के दिखाना है,
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि जैसा कि आप नहीं मानते कि अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, मुझे लगता है कि शायद सच्चाई को एक्सेप्ट करना ज्यादा बेहतर होता है।
11: जी,
3: बहुत ज्यादा खुद की तारीफ करने से बेहतर कि अपने इम्प्रूवमेंट एरिया पे अगर हम फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाने का स्कोप हमारे लिए बढ़ जाता है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा जो संदेश दिया, और हमारे इस वक्त के जो लिसनर सुन रहे हैं वो जरूर इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जाते जाते अंतिम सवाल है, चूंकि आप बैठे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि अवध मंडल और गोंडा का पहला एफएम है, इसको लेके आपका क्या मानना है?
11: मैं आपको दिल से बताऊं, जब मैं पहली बार आया, मैं पंजाब में रहता था, साल में एक बार घर आता था, पहली बार मैंने सुना कि यहाँ पे रेडियो खुला है, मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि मुझे लगा अब हमारा भी शहर लखनऊ और कानपुर जैसे शहर के बराबर हो गया, क्योंकि मैं सोचता कि रेडियो कभी लखनऊ और कानपुर के नीचे तो नहीं
3: नीचे नहीं आएगा।
11: तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये लगा कि हमारा गोंडा विकास कर रहा है। मैं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम की पूरी टीम को, आप सभी को, मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे मतलब मौका दिया अपनी ये बात को रखने के लिए। और आप आगे चलकर सिर्फ गोंडा शहर की धड़कन ना बने, पूरे राष्ट्र की धड़कन बने, ये मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरह ब्लेसिंग नवाजा है,
11: आप लोग बहुत आगे जाएं, बस यही।
3: बिल्कुल, तो आप जैसे एक्सपर्ट्स जो आज बेहद अच्छा काम कर रहे हैं किसी ना किसी क्षेत्र में, आप जैसे लोग हर रोज आते हैं हमारे स्टूडियो में और वो बताते हैं, जो लोगों की समस्याएं होती है उस पर बात करते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है। कम्युनिटी रेडियो का एक विजन होता है कि लोगों के लिए सेवा भाव, तो हम लोगों की सेवा ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुद्दों पर बात करके उसका सोल्यूशन देके। और चूंकि अब चलने का वक्त हो चला, लेकिन उससे पहले मैं अगर चाहूंगा उपवन जी कुछ अगर कहना चाहें।
2: जी अदनान जी, मुझे चलते चलते एक बात याद आ जाती है, चार लाइनें याद आ जाती
3: है, क्या बात
2: जो डॉक्टर साहब के लिए ही है
3: जी,
2: कि जिसकी लहरों में ना हो आग वो पानी ही नहीं
11: जी,
2: जिसकी लहरों में ना हो आग वो पानी ही नहीं, हो जो तूफान से खाली वो रवानी ही नहीं, भूल जाए जिसे दुनिया वो कहानी ही नहीं, जो ना काम आए वतन के वो जवानी ही नहीं। तो अपने वतन पे जवानी कुर्बान करने के लिए डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ये उनका वतन वैसे तो भारतवर्ष ही है, लेकिन वो अगर पंजाब और हिमाचल को छोड़कर अपनी माटी की सोंधी मिट्टी के खुशबू को लेने के लिए गोंडा आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी जवानी को सलाम करते हैं।
11: सबको धन्यवाद देता हूं, और एक ही सपना मेरा, दर्द मुक्त गोंडा।
3: क्या बात,
11: दर्द मुक्त अवध, दर्द मुक्त गोंडा,
3: क्या बात है। तो आज कहीं ना कहीं डॉट साहब के विजन से हमारा विजन मिलता जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है
11: जी। हम सभी को मिलकर गोंडा को बहुत आगे ले जाना है, हम सभी को।
3: बिल्कुल,
11: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत।
3: थैंक यू सो मच सर। तो हम आप लोगों से बता दें कि आज हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर अतुल सिंह, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपको ये मिलते हैं एमडीसी अल्ट्रासाउंड पर और लाइफलाइन हॉस्पिटल पर, डॉक्टर साहब बैठते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो डॉक्टर साहब ने चीजें बताई, आई होप कि वो आपके काफी काम
11: जी। अद्वैत ऑर्थो सेंटर के नाम से है हमारा,
3: अद्वैत
11: ऑर्थो सेंटर,
3: ऑर्थो सेंटर,
11: अद्वैत ऑर्थो सेंटर के नाम से। अभी भविष्य में मैं बहुत बड़ा ऑर्थो का सेट खड़ा करूंगा, अभी मेरा एक विजन है। अभी अद्वैत ऑर्थो सेंटर के नाम से एक छोटी सी शुरुआत मैंने एमडीसी अल्ट्रासाउंड से की है। मैं संपूर्ण गोंडा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भविष्य में कुछ बेहतर के साथ उतरूंगा मैदान में।
3: क्या बात है सर, ऑल द बेस्ट आपको आने वाले दिनों के लिए, इस विजन और मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
11: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सो दोस्तों, हमारे बीच ये मौजूद थे डॉक्टर अतुल सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आपसे हम यही कहेंगे कि कल हम फिर मौजूद होंगे इसी वक्त इसी टाइम किसी और मेहमान के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
8: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
7: और जेंट्स के लिए?
8: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
7: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
8: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
9: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
10: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
12: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
13: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
14: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
13: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
14: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
13: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
14: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
15: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
16: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल, सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने

0: वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हो या ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ एंट्री हमेशा परमिट रहती है हम लोग की। अब आप सोच रहे होंगे किस एंट्री की बात कर रही है आरजे बीना। वेलकम माय डियर लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। एंड यस, जब एंट्री की बात मैंने की तो आपके दिमाग में बहुत सारी एंट्रीज आ गई होंगी। कई बार आपने नो एंट्रीज में भी एंट्री की होगी, लेकिन कोई एक ऐसी एंट्री जिसमें आपकी एंट्री कभी बैन नहीं हुई, हाँ वो है माँ का दिल। माँ के दिल में आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय घंटी बजा सकते हैं और जाके अपने प्यार भरे कदमों से उस दिल में तहलका मचा सकते हैं, लेकिन माँ उफ तक नहीं करेगी। तो हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। कल ही हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन क्या करें, एक दिन से वो सेलिब्रेशन तो कंप्लीट नहीं होगा। मदर्स डे हर दिन है, हर दिन जवां है, और आज एक खास मदर की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो आप सभी के साथ आरजे बीना सेलिब्रेट करेंगे आज मदर्स डे स्पेशल इवनिंग। यस, माँ वो खास इंसान है हमारी ज़िंदगी का जिसकी तुलना किसी से कभी की ही नहीं जा सकती। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, ख्वाब अपने भुलाकर बनाया हमको, दुख कभी ना देना उस खुदा की मूरत को, दुख कभी ना देना उस खुदा की मूरत को, खुदा भी कहता है माँ बाप जिनको। ना सिर्फ माँ बल्कि पिता ने भी ना जाने कितने संघर्षों से हमारे जो कहते हैं ना आज वर्तमान को खूबसूरत बनाया। तो माँ के बारे में जितना कहेंगे उतना कम होगा, पर हाँ बात तो ज़रूर होगी जिससे हमें तो पता चले माँ का प्यार क्यों दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है, क्यों कुछ एक्सपेरिमेंट्स का प्रूफ भी माँ के प्यार को कम नहीं कर सकता है। तो चलिए सुनते प्यारा सा ये गाना, ना सिर्फ गाना बहुत सारे गानों की खूबसूरती इस गाने में। लेट्स एंजॉय योर लव माई लव फॉर आर मदर। तो हैप्पी मदर्स डे। माँ का दिन तो हर दिन होता है, लेकिन स्पेशल याद करने के लिए, माँ को माफी मांगने के लिए, या माँ से ये कहने के लिए कि नहीं माँ तू भी भूल कर सकती है, आई एम सॉरी अगर मैं तेरे पे कभी चिल्लाया हूँ, आई एम सॉरी शायद मैंने तुझे कभी गलत समझा हो, आई लव यू माँ, ये कहने का दिन एक तो होता ही है। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस मदर्स डे इन द ग्रैंड ग्रैंड इवनिंग, आपकी वाली इवनिंग, ज्ञान 89.6 FM वाली इवनिंग, क्योंकि यह है गोंडा शहर की धड़कन, हर माँ की धड़कन।

बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं।

जी हाँ, माँ है ही खास। आप सभी के साथ, हमारे साथ माँ का रिश्ता ही ऐसा है कि दुनिया में कोई भी ताकत उस रिश्ते को नहीं बदल सकती। तो चलिए आज की शाम माँ के नाम करते हैं। गुड इवनिंग बंटी जी, गुड इवनिंग दीपांशी, गुड इवनिंग। मतलब बहुत दिनों बाद दीपांशी को देख के अच्छा लग रहा है मुझे। कैसी है दीपांशी? खूबियाँ भी हैं मुझ में, कमियाँ भी हैं मुझ में, अब ढूंढने वाला तो सोच तेरे में क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए मुझ में। मैं सच्ची बताऊँ दीपांशी, दुनिया में हर इंसान हम में कमियाँ ढूंढ लेगा, लेकिन माँ ही एक होगी जो हमारी कमी में भी खूबी ढूंढेगी। तो थैंक्स, भगवान ने एक खूबसूरत तोहफा हमें दिया माँ के रूप में। तो माँ के लिए जितना भी कहें वो कम होगा, और हर बार, हर दफ़ा, हर अंदाज में वो सब होगा, माँ के लिए होगा। आप सभी को बताऊं कि माँ के साथ जो रिश्ता है हम सभी का, वो हमेशा से खास रहा है। चाहे वो पैदा होने के बाद माँ के साथ चिपक के सोना हो, फिर कोई भी समस्या हो माँ के सामने बिलक बिलक के रोना हो, तो मतलब मुझे लगता है कि सब दिन माँ को डेडिकेटेड होने चाहिए। माँ सुबह दौड़ते हुए जल्दी जल्दी हमारा लंच बनाती है, बैग पैक करती है, हमें स्कूल के लिए तैयार करती है, डांटती भी है, प्यार भी करती है, आंसू भी बहाती है, सब करती है। वो माँ ही तो करती है। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में हर इंसान माँ की जैसा अगर हो जाए तो दुनिया में नेगेटिविटी जैसे शब्द ना डिक्शनरी से हटाने पड़ जाएंगे। सच बता रही हूँ, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी अगर हर इंसान की थॉट प्रोसेस माँ के जैसे हो जाए। पर क्या करें, दुनिया जो है ना बड़ी बदमाश है, हम लोग की परीक्षा लेने में पीछे नहीं हटती। एंड स्पेशली जब मदर्स की बात आती है तो माँ ही एक होती है जो हमारे हमको जज नहीं करती। आप सभी को बताऊं, हम सभी ने पहला प्यार जिसमें पाया है वो हमारी माँ ही होती है। पर क्या करें, हर दिन हर शाम स्पेशल होने के साथ भी अधूरी लगती है अगर माँ साथ ना हो। आरजीबी ना कितने भी अच्छे गाने आप लोग के लिए क्यों ना प्ले कर दे, पर सुकून जो है वो माँ की गोद में लेटने से ही आता है। क्या बोलते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ को समझना आसान नहीं है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, ऑफिस की फाइलों में दब जाएं, या खुद माता पिता बन जाएं, पर जब चोट लगती है तो मुंह से पहला शब्द उफ नहीं माँ निकलता, ओए माँ। वो जो बिना कहे आपकी भूख समझ लेती है, वो जो आपकी एक उदास हेलो को भी पढ़ लेती है, आपका हाल जान लेती है, वही तो माँ होती है। तो आज की शाम हम लोग अपनी माँ को एज अ सुपरस्टार समझेंगे, और माँ को एक गलती करने का मौका दे देंगे। हम लोग जज करते हैं अगर माँ से कोई गलती हो जाती है, पर माँ तो माँ ही होती है। आज मैं सिर्फ मदर्स डे नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ, आज मैं उन औरतों की भी बात करने वाली हूँ जिन्हें हम लोग अनपेड वर्कर की तरह समझते हैं। सलाम करती हूँ आज मैं अपनी उन सभी माओं को जो घर रहते हुए भी कभी भी डिप्रेस नहीं दिखी। हम लोग तो एक दो दिन चार दिन घर बैठ जाते तो ऐसा लगता है कि तनाव हो गया। माँ के साथ आपने कुछ जादुई चीजें तो की होंगी, जैसे कि माँ की फूक में ऐसा लगता है कि सॉरी एंटीसेप्टिक्स है, चोट पे फूकती है ऐसा लगता है चोट सही हो गई। माँ का जादुई हाथ जो खोई हुई चाबियां, खोए हुए मोजे, खोई हुई हर चीज ढूंढ के ले आता है। माँ की वो खामोश दुआएं जो तब काम करती हैं जब पूरी दुनिया फेल हो जाती है। माँ एक्स्ट्रा पराठा देके हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग कर जाती है, माँ माँ होती है। तो चलिए फटाफट से कॉल करिए और आप भी अपनी माँ को याद करते हुए कुछ खास बताइए। और मैं तो भाई माँ के लिए जब भी कहने का सोचती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, पर
कहूँगी ज़रूर, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ के लिए अगर मैं ना बोलूँ, माँ के लिए कुछ ना सुनाऊँ, तो शब्द अधूरा रह जाएगा। तो आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी मदर्स डे के लिए स्पेशली। बहुत पुराना सा गाना है और आई होप मैं आप लोग की जो कहते हैं ना उम्मीदों पे खरी उतरूंगी इस गाने के साथ। और इसी के साथ मैं भी आगाज़ करूंगी आप लोग की आवाज़ का, और फेमस कुछ माओं के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगी, पर आप लोग साथ देंगे तभी वो संभव हो पाएगा, ठीक है। और कोशिश यही है कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो बिल्कुल आप लोग की उम्मीदों पे खरा उतरे, क्योंकि मैंने कभी भी ये गाना ऑन एयर अभी तक नहीं सुनाया है, पर आज सुना रही हूँ तो ज़रूर कुछ हिम्मत करके सुना रही हूँगी। होप सो कि ये जो कहते हैं ना कि कोशिश है वो साकार करने में आप लोग मेरी पूरी मदद करेंगे, पूरी मतलब कि अप्रिशिएट भी करेंगे और जो गलतियाँ होंगी वो भी बताएंगे, क्योंकि एज अ जेन्युइन लिसनर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने आरजे को उसकी गलतियाँ भी बताएं और उसकी तारीफें भी करें, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ सर पे भी ना चढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाने को मेरे साथ, आप लोग भी अपनी माँ के लिए गुनगुनाइएगा। मैं थोड़ा सा इमोशनल होती हूँ तो ये गाना सुनती भी हूँ और गाती भी हूँ, लेकिन आज ऑन एयर पहली बार गा रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग्स के साथ खुद की फीलिंग्स को जोड़ पाएंगे और आई होप ये गाना सबके साथ कनेक्ट होगा, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि दुनिया के हर उस बच्चे के साथ जो थोड़ा सा इमोशनल या वीक फील करता होगा तो अपनी माँ को याद करता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन।

सो ये छोटी सी कोशिश हम सभी की माओ के लिए, और अब आप लोग की बारी है, कौन क्या सुनाने वाला है, जल्दी से आप लोग टाइप करिए। और हाँ, जैसे कि मैंने फेमस माओ की बात की थी, तो चाहे वो यशोदा हो, या चाहे वो देवकी हो, चाहे वो हम सभी की माँ हो, सब में खास यही है कि माँ हर रूप में अपने बच्चे को प्यार करती है। आपने सुना होगा कि जानवर के रूप में भी माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, रोती है, बिलखती है, ढूंढती है कैसे उसको प्यार दें, बस तो वही है माँ। तो चलिए, मदर्स डे पे कुछ माओ के बारे में भी बात करती हूँ मैं। वैसे आपके मन में कोई ऐसी स्टोरी हो जो आप लोग हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि माँ घरों में काम करती है पर बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती है। कई बार हमने देखा होगा कि माँ खुद दर्द में रहती है और हमें हर वो खुशियाँ देने की कोशिश करती है जो शायद उसको ना मिली हो। तो चलिए, आज मैं मदर्स डे पे एक स्टोरी भी सुनाना चाहूँगी। आई होप इस स्टोरी से आपका जो आपकी मदर के लिए अफेक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए आप लोग के साथ चलते हैं स्टोरी के दौर में। फिलहाल आप लोग के कॉल का इंतजार था, अभी तक कॉल किसी का आया क्यों नहीं? क्यों भाई, आप लोग बहुत स्लो से चल रहे हैं, क्या बात है भाई। तो एक कहानी है जो कि हमारे ही राज्य की, यानी कि उत्तर प्रदेश की, एक कहते हैं ना कि छोटे से गांव की कहानी है, जिसे मैं आप लोगों को साझा करना चाहती हूँ। आई होप ये कहानी आप सभी को मतलब फील कराएगी कुछ ऐसी फीलिंग्स जो आपने शायद इससे पहले कभी फील नहीं की होंगी। एक छोटे से गांव में एक माँ रहती थी, नाम था शांति देवी। पति का पहले ही देहांत हो चुका था, घर में बस एक छोटा बेटा रवि था। गरीबी इतनी थी कि रात भर का खाना भी नसीब नहीं होता था, एक टाइम दिन में खाना मिलता था। शांति देवी लोगों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती और सिलाई का काम भी करती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे की पढ़ाई रुकने नहीं दी। एक दिन स्कूल में रवि उदास होकर आया, उसने कहा कि माँ, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्योंकि तेरे जूते टूटे हुए हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जूते टूटे हैं, सपने नहीं। उस रात शांति देवी ने खुद खाना नहीं खाया, जो पैसे बचे थे उनसे बेटे के लिए नए जूते खरीद लिए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, रवि पढ़ाई में मेहनत करता रहा। माँ सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाती, रात तक मेहनत करती, कई बार बीमार होने पर भी उसने काम नहीं छोड़ा। सालों बाद रवि IAS अधिकारी बनकर आया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता के पीछे का क्या कारण है? रवि की आंखों में आंसू आ गया, उसने कहा, मेरी माँ, जिन्होंने अपने हिस्से की हर खुशी बेचकर मेरे सपनों को खरीदा। जब रवि पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छूकर कहा, माँ, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। और आपने सच कहा था, जूते टूटते होंगे, घर टूटते होंगे, दिल टूटते होंगे, पर सपने नहीं टूटते, और जिस दिन सपने टूटते हैं उस दिन इंसान कुछ नहीं कर पाता। माँ वो किताब है जिसमें ममता का हर अध्याय लिखा होता है, जिसके बिना जिंदगी का हर सपना अधूरा होता है। बस आपको सोचना है, समझना है कि उस अध्याय को आपको ऐसे ही जाने देना है, या उस अध्याय के माध्यम से अपने जीवन का एक नया लक्ष्य बनाना है। तो चलिए, मदर्स डे को एक और गाना डेडिकेट करते हैं, पर अलग अंदाज वाला गाना, जो अक्सर हम किसी और को डेडिकेट करना चाहते हैं, पर अगर देखा जाए तो ये मदर्स डे को भी कंप्लीट करेगा।

0: सो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे साथ हमारे एक लिसनर का लग रहा है कॉल आ गया है. चलिए आवाज़ सुनते हैं कहाँ से कौन बात कर रहा है. हेलो, वेरी गुड इवनिंग, आपका स्वागत है.
1: हेलो, गुड इवनिंग.
0: आपका शुभ नाम?
1: सौरभ बात कर रहा है, सौरभ मिश्रा.
0: सौरभ मिश्रा कहाँ से बात कर रहे हैं सौरभ जी? आप
1: मुंबई से?
0: मुंबई से, ओके, वेरी गुड. तो सौरभ जी बताइए, पहले तो वहाँ का मौसम कैसा है? बारिश वगैरह हो रही है या फिर एकदम गर्मी का मौसम है?
1: गर्मी का मौसम, बहुत ज्यादा गर्मी है.
0: ओके, तो चलिए हम आपको बारिश का गाना सुना देंगे, थोड़ी देर में आपको फीलिंग आ जाएगी बारिश वाली. ये बताइए, आज आप क्या सुनाना चाहते हैं?
1: कुछ मदर्स डे पे बोलना चाहते हैं मम्मा के लिए.
0: मदर्स डे पे, ओके. तो वहाँ आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं?
1: हम अकेले रहते हैं.
0: अकेले रहते हैं, ओके. आप वहाँ पे जॉब करते हैं?
1: जी.
0: तो चलिए आपकी आवाज में सुनते हैं क्या सुनाना चाहते हैं. गाना सुनाएंगे आप?
1: नहीं, एक शायरी सुनाएंगे.
0: ओके, स्वागत है.
1: माँ वह धागा है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है. माँ वह प्यार है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें माँ बनाया है. उन्होंने माँ बनाया है.
0: क्या बात है, क्या माँ बात है.
1: खूबसूरत जहाँ है, माँ के बिना जिंदगी अधूरी है. माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं. माँ तेरी दुआ का असर आज भी साथ है.
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपने कॉल किया. कौन सा गाना अपने पसंद का सुनना चाहते हैं? मदर्स डे स्पेशल पे तो मैं आज आप लोग को अपनी पसंद का गाना भी सुनाऊंगी. सो आज बिना से कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: किशोर कुमार का
0: कोई भी
1: सॉन्ग.
0: ओके, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सो मच. तो सौरभ जी ने कॉल करके अपनी मदर के लिए शायरी सुनाई. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मैं सच्ची बताऊं तो माँ के लिए जितना भी कहा जाए वो सभी कम होगा. और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं अपनी माँ की, तो चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, हर दिन अधूरा सा लगता है जब हम माँ के साथ नहीं होते हैं. तो चलिए, अब जैसा कि कॉल्स की बात हो रही है, तो आप सभी अपना अपना कॉल करके जो भी स्पेशल सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं. तो चलिए, सौरभ जी के लिए हम लोग सुन लेते हैं गाना किशोर कुमार का.

0: मेरी माँ। तो चलिए अगला कॉल आप लोग के साथ करते हैं बात। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
1: शुभ संध्या, मैं तेज नारायण शुक्ल बोल रहा हूँ।
0: जी तेज नारायण जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ। एक बार मैं आपके प्रोग्राम में मतलब शिरकत कर चुका हूँ।
0: स्वागत है पुनः शिरकत करने के लिए, अपनी मौजूदगी से इस शाम को रुखसार करने के लिए। क्या सुनाइएगा
1: जी? वैसे तो देखिए, माँ पे बहुत लिखा गया है, तो चार लाइनें मैं हर माँ को डेडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद एक नई पीढ़ी के ऊपर कविता सुनाऊंगा, पहले चार लाइन माँ के ऊपर ही।
0: क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है।
1: कि माँ माँ छत है, माँ माँ छत है, माँ माँ मकान है, माँ छत है, माँ मकान है, माँ धरती है, माँ आसमान है। बच्चों की खुशियां, उम्मीदें, आशाएं माँ के आंचल में है, और माँ में ही बच्चों का भूत, भविष्य और वर्तमान है। हेलो,
0: क्या बात है, क्या बात है
1: जी। अब थोड़ा सा जो आज की नई पीढ़ी है, इसके ऊपर एक कविता सुनाता हूँ। ये भी इससे इंटरकनेक्टेड ही है, क्योंकि जिसमें भी माँ बाप और नई पीढ़ी, तो मैं शुरू करूं?
0: जी बिल्कुल, स्वागत है।
1: बच्चे बच्चे सयाने हो गए, बच्चे बच्चे सयाने हो गए, बड़े हुए नहीं कि बेगाने हो।
0: क्या बात, क्या बात।
1: जी जी, बच्चे सयाने हो गए, बड़े हुए नहीं कि बेगाने हो गए, पापा की परी, मेरा राजा बेटा, ये तो अफसाने हो गए।
0: क्या बात है।
1: जी, अब वो सब समझते हैं, अब वो सब समझते हैं, समझाने पर कहते हैं कि ये किस्से तो पुराने हो गए।
0: क्या बात, क्या बात, क्या बात।
1: जी, अब समझाने पर कहते हैं कि धन्यवाद, समझाने पर कहते हैं ये किस्से तो पुराने हो गए, और आप तो बेटा बेटा कहिए, आप तो बेटा बेटा कहिए, पर ना सुनने के कई बहाने हो गए।
0: क्या बात।
1: और अब तो बस चुप रहिए, अब तो बस चुप रहिए, किसी से कुछ भी ना कहिए, अब तो बस चुप रहिए, किसी से कुछ भी ना कहिए, वरना वो कहेंगे इन्हें किसी कोने में डाल दो, ये बर्तन तो पुराने हो गए।
0: क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं कहीं बहुत सारी जगह फिट होती लाइनें हैं ये।
1: जी जी जी जी जी, आगे सुनिएगा। कि अपेक्षाएं तो दुख देती ही हैं, अपेक्षाएं तो दुख देती ही हैं, ये तो पता था ना, फिर क्यों की। अब पीड़ा भी झेलिए, उम्र के इस दौर में बेटा बेटा बेटी बेटी खेलिए, लड़कपन गया जवानी गई, बुढ़ापे से बस कुछ दूरी है, लड़कपन गया जवानी गई, बुढ़ापे से बस कुछ दूरी है, समझते रहिए अपने आप को बुजुर्ग, आपको बच्चा बनाने की तैयारी पूरी है।
0: क्या बात, क्या बात है, क्या बात है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: कितना खूब लिखा है आपने, मतलब शब्द एक एक, हाँ शायद किसी को कड़वा जरूर लग सकता है, पर सच्चाई सच्चाई होती है। क्या कहने, क्या कहने
1: जी। आगे कि आप भी खूब हैं भैया, आप भी खूब हैं भैया, सब जानकर भी पता नहीं कौन सी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप भी खूब है भैया, सब जानकर भी पता नहीं कौन सी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब तो कुछ है भी नहीं, फिर किस बात पर ऐठे।

कहते हैं। वहां हर शाम एक माँ दरवाजे की तरफ देखती है कि शायद आज बेटा आएगा। हर पिता अपने मोबाइल की घंटी पर चौंकता है कि शायद बेटी याद करेगी, लेकिन ना कॉल आता है ना कदमों की आहट, बस यादें आती हैं और आंखों में नमी छोड़ जाती हैं। मदर्स डे पर केक काटने से पहले एक बार माँ के चेहरे को पढ़ लेना, उसकी झुर्रियों में तुम्हारी पूरी कहानी लिखी है। अगर सच में हैप्पी मदर्स डे कहना है तो माँ को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन माँ चली जाती है उस दिन सिर्फ घर मकान रह जाता है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया होती है, और दुनिया को ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ा जाता। सो ये दर्द से दर्द मिलाते हुए मैंने भी ये पंक्तियाँ आप लोग के सामने रख दी। हाँ, तेज जी की पंक्तियों जैसी नहीं है, पर हाँ कहीं एक कोने में पड़ी थी, आप सबके सामने कह सुनाई। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आज की शाम को डेडिकेटेड, और इस गाने के बाद फिर से मुकम्मल करूंगी आप लोग की कॉल्स। सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हाँ हाँ, हर माँ की धड़कन।

गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका भी। तेज जी चैट रूम में भी दिख रहे हैं, कैसे हैं आप? और अनूप जी कैसे हैं? शुभ संध्या। सबलू सावंत जी बोरीवली मुंबई से शुभ संध्या। आज मुंबई से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं हमें। नागेश्वर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है। एंड जैसे कि बातों बातों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी कर ली और बहुत सारे खास लोगों की भी बातें की, और जब बात होती है खास की तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सबसे टॉप पे आते हैं।

मदर के लिए गाना अक्सर हम हर किसी को डेडिकेट करते हैं, पर देश की उन माओं के बारे में भी नाम लूंगी जिन्होंने देश को वीर जवान दिए, चाहे वो पुतली बाई गांधी हो, महात्मा गांधी की माँ, हीराबेन मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, उनकी मदर, सुधामती मंगेशकर, मदर ऑफ लता मंगेशकर, भीमाबाई सागपाल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मदर, ये वो फेमस माएँ हैं जिन्होंने अपने कोख से वीरों को जन्म दिया। विद्यावती मदर ऑफ मार्टियर भगत सिंह की माँ, प्रभावती देवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ, रजनी तेंदुलकर आपके लेजेंड सचिन तेंदुलकर की माँ, तेजी बच्चन अमिताभ बच्चन की माँ। तो ये वो माएँ हैं जिन्होंने दुनिया को एक नया रूप दिया। माओं का नाम आएगा तो माएँ देश का भी नाम रोशन करती है, अब चाहे वो मैरी कॉम हो या आपके देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देश को चलाने से लेके खेल के मैदान तक, घर को चलाने से लेके अंतरिक्ष तक, हर जगह अपना परचम लहरा रही है आपकी माँ। जी हाँ, आपकी माँ। तू कि तेरे बिना सो नहीं सकते क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना नींद कैसे। तो चलिए इस प्यारे से गाने को सुनते हुए आज की शाम को साकार करते हैं, इंतज़ार करते हैं आपके कॉल्स का और देखते हैं कौन क्या क्या सुनाता है अपनी और दुनिया की माओं के लिए। जैसे मेरे पास एक और चीज़ है सुनाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी।

0: हाँ बिल्कुल, माँ वही लम्हा है जिस लम्हे में हर वक्त जीने का मन करता है। तो चलिए देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो।
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: श्रद्धा तिवारी।
0: श्रद्धा कैसी हैं? मतलब आजकल आप सुनाई नहीं देती, क्या बात है? ओह क्या कहने, बताना चाहिए था मुझे, मैं बैलेंस दिलवा देती। तो चलिए आज आप क्या सुनाएंगे?
1: सोमवार को ही खत्म हो गया था और उसके बाद में चला गया।
0: मैं चाहूंगी कि आप मदर्स डे पे आज कुछ अच्छा सा सुनाएं।
1: यस मैम।

हंस के सुनाती है, नूर सुनाती

0: थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, और आपकी आवाज़ में बिल्कुल फीलिंग थी, एंड ये फीलिंग हर बच्चे के अंदर अपनी माँ के लिए होती है, और स्पेशली वो लोग
0: लाइन हम और सुनाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, क्या बात है।
0: माँ के नाम से होठों पे मुस्कान है, माँ के नाम से होठों पे मुस्कान है, पिता के नाम से मेरी पहचान है। ठुकरा दे ये दुनिया मुझे, ठुकरा दे ये दुनिया मुझे, बस दो लोग ही मेरा पूरा जहान है। आई लव यू मॉम एंड डैड।
1: क्या बात है, क्या बात है, और सच में माँ और बाप के कदमों में जहान होता है, और ये जहान हर किसी को नसीब हो, बस यही दुआ है। थैंक यू सो मच, सो स्वीट, सो स्वीट। सो श्रद्धा की आवाज़ में हमने ये फीलिंगफुल गाना सुना और कुछ लाइन सुनी जो हर मदर और फादर को डेडिकेटेड है। तो चलिए, मोह मोह के धागे हमेशा बने रहेंगे माँ के साथ, उस गाने को पूरा करते हैं जिसे सुनने के लिए आप सभी बेकरार थे। और एक चलिए नया सा गाना सुनाती हूँ, बहुत प्यारा सा गाना है, मुझे बहुत पसंद है, जो अक्सर मैं माँ के लिए डेडिकेट करती हूँ।

0: सो अगले कॉल की तरफ चलते हैं, आवाज सुनते हैं किसकी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, शुभ संध्या, कैसी हैं सविता जी, स्वागत है आपका। क्या हाल?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: हैप्पी मदर्स डे टू यू।
1: आपको भी ढेर सारे शुभकामना, आप भी एक मम्मी
0: हैं। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए, आज आप क्या सुनाना चाहेंगी, अपनी मम्मी को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: जी, मम्मी तो मम्मी होती है, और इसमें मैं और दो मम्मी को विशेष करके मैं चाहती हूँ, नमन करती हूँ, ताकि मैं जिसके वजह से आज मैं ये सब बात मैं आप लोगों से कर पा रही। एक हुआ दीपेंद्र सर की मम्मी कृष्णा सिन्हा जी, और एक हुआ अदनान सर की मम्मी। उन लोगों से बातें करते करते मैं FM पे सबके साथ में बातें करने लगी हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों ने ही हम लोगों को कहीं ना कहीं आप एक फैमिली बना दिया, सो थैंक यू फॉर द ग्रेटिट्यूड जो आपने दिया। और क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं तो यही कहना चाह रही थी कि जैसे भी माँ बाप हो, विशेष करके माँ को वृद्धाश्रम में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कि बनना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्या करें, उन बेसहारा परिवारों के लिए वो उम्मीद है, जो लोग अकेले तन्हा शायद जिंदगी बिता रहे होते हैं, उनको एक परिवार मिल जाता है, दर्द बांटने वाला मिल जाता है। तो गाना नहीं सुनाएंगी आज आपको ही सविता जी?
1: जी तो गाना तो उतना याद नहीं, वो तो अचानक याद आया कि आज सोमवार है, जल्दी से बाहर बैठी थी तो अभी याद आया, तो फिर घर आई।
0: थैंक यू गर्मा की, आपके इस मैसेज के लिए और आपके इस ग्रेटिट्यूड के लिए आभार। और ऐसे ही आप हमारे साथ बनी रहिए और अपना प्यार जो है हमारे साथ बनाए रखिए, और ये रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं दुनिया के अनमोल रिलेशन में से एक है। थैंक यू सो मच सविता। तो सविता जी ने अपना प्यार भरा ग्रेटिट्यूड दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू फॉर योर वर्ड्स। और एक कविता जो मैं हमेशा सुनाती हूँ, वो मैं सुनाना तो चाह रही हूँ लेकिन इस गाने के बाद, लेट इट टू बी कम्प्लीट।

0: वापस से आप सभी का स्वागत है, लेकिन एक सरप्राइज के साथ स्वागत करूंगी, लेकिन एक कॉल ले लूं, फिर उसके बाद सरप्राइज आप लोग के साथ रूबरू कराती हूं। तो कॉलर का नाम क्या है, पहले तो कॉलर खुद ही बताएंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: गुड इवनिंग, सुरेश कुमार।
0: अरे सुरेश जी, शुभ संध्या, कैसे हैं, क्या हाल है?
1: ठीक है, तो आप अपना सुनाइए।
0: आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में कुछ सुनने को मिले।
1: तो माँ के ऊपर सुना दें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, आजाद है।
1: कल अपने प्रोग्राम को था नहीं, कल संडे पड़ गया था, तो आप उसमें मदर्स डे कल भी मनाया गया है नहीं?
0: मेरी गैर मौजूदगी थी उस समय।
1: चलो चलो ठीक है,
0: स्वागत है,
1: बहुत अच्छा। हम तो भैया माँ को बहुत चाहते हैं।
0: क्या बात है,
1: सच कहता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात?
1: हर वक्त रात दिन जब दुर्गा माँ की पूजा करता हूँ, उसी में अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ, ये अपना भाव है, हमको उसी में चेहरा नजर आ जाता है। अपनी छोटी मोटी गलती के लिए उसे क्षमा मान लेता हूँ। बचपन में जो कभी कोई गलती अगर हुई होगी तो।
0: माँ
1: मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गणेश लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गणेश लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गणेश लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ तू मुझको मना ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं।
0: क्या बात है,
1: के और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा, ना तो कोई जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा, ना तो यहाँ जोत है, ना तो यहाँ जीवन है, ना तो यहाँ मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। थैंक यू।
0: क्या बात है सुरेश जी, समा बांध दिया आपकी आवाज़ में, और इस गाने को मैंने कोशिश की थी गाने की, लेकिन इतना सुरीला और इतना अंदाज में मैं नहीं गा पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दिल से। और आपने इस गाने को ना सिर्फ गाया है, बल्कि बताया है कि सच में ये भाव है कि जब भी हम अधूरे फील करते हैं तो माँ ही होती है जो हमें ये सहारा देती है कि उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमारी कमियों में भी हमारी खूबियों को ढूंढेगा। क्या बात है, शुक्रिया,
1: थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।
0: सो अभी हमने सुरेश जी की आवाज़ में इतना प्यारा सा गाना सुना, और आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे गोंडा शहर से हैं, और उन्होंने मतलब पिछले कुछ क्या मतलब कुछ दशकों में बच्चों को बहुत सारी शिक्षा दी है, शिक्षा देने के साथ साथ तालीम दी है, मतलब जितने शब्द कहूँ उतने कम होंगे। आवाज़ विकास से हमारे साथ विष्णु श्रीवास्तव सर हैं, और स्वागत है सबसे पहले सर आपका, शुभ संध्या, शुभ संध्या सर, कैसे हैं आप?
2: अरे 84 पर चल रहे हैं तो 84 भोग रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, उम्र सिर्फ नंबर होती है। किसी एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो नंबर ही है, बाकी अगर दिल अगर जवान है तो फिर नंबर नंबर चलेगा। क्या बात है,
2: क्या बात कही आपने।
0: तो आज आप आए हैं 89.6 FM, सबसे पहले तो हमारी जो धरती है ये सौभाग्यपूर्ण महसूस कर रही होगी कि आप आए और आपके आवाज़ हमारे ऑन एयर जा रही है। एक इंसान जिसने सालों तक बच्चों को तालीम दी और फिर आज उनकी आवाज़ फिर से लोगों तक जा रही है। हो सकता है आपके पढ़ाए बहुत सारे बच्चे सुन रहे हो, तो आज क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए और मदर्स डे जैसे कि मातृ दिवस लोग मना रहे हैं दो दिन से।
2: हमने बच्चों के लिए गीत लिखा।
0: क्या बात है।
2: चूँकि सरस्वती शिशु मंदिर में हम रहे तो वहाँ जो है बच्चों को संबोधन में भैया और बहन कहा जाता था।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: किसी भी टीचर को अनुमति नहीं थी कि किसी बच्चे को बुलाने के पहले वो भैया शब्द ना लगाए, या किसी लड़की को बुलाने के पहले बहन शब्द
0: ना लगाए।
2: तो इसी शब्द को हमने जो है अपने गीत का बनाया,
0: हिस्सा बनाया। क्या
2: अब देखिए जैसा भी लिख पाए लिखे।
0: क्या बात,
2: बच्चों के लिए
0: स्वागत है।
2: मेरे प्यारे भैया बहनों, आगे कदम बढ़ाना, बाधाएं आती रहती हैं इनसे क्या घबराना। मेरे प्यारे भैया बहनों, देखिए भैया से हमने कुछ अपेक्षा किया, तुम में से ही राम बनेंगे, तुम में से ही राम बनेंगे हरिश्चंद्र सम त्यागी, और तुम में से ही फिर कोई होगा बंदा बैरागी, और तुम में से ही कृष्ण बनेंगे। कौन से कृष्ण, बंसी वाले नहीं, तुम में से ही कृष्ण बनेंगे चक्र सुदर्शन धारी, और तुम में से ही कोई होगा विष्णु रूप अवतारी, और तुम में से कोई दधीच बन तुम में से कोई दधीच बन हड्डी तक दे जाना। अरे बाधाएं आती रहती हैं इनसे क्या घबराना। मेरे प्यारे भैया बहनों, देखिए बहनों के लिए हमने लिखा, तुम में से ही देवी होंगी और तुम में से ही काली, अरे तुम में से ही कोई होगी रानी झांसी वाली, तुम में से ही सीता होंगी सब दुख सहने वाली, अरे तुम में से पद्मिनी बनेगी जौहर करने वाली।
0: क्या कहने,
2: आगे कदम बढ़ाया है फिर पीछे क्या हट जाना, बाधाएं आती रहती हैं इनसे क्या घबराना। मेरे प्यारे भैया बहनों, भारत माँ के लाल तुम्ही हो, तुमसे है आशाएं, आओ हम सब मिलकर फिर से आशा दीप जलाएं, मृत्यु अगर आए तुमको पहनाने को बरमाला, तो शिव की बात सदा पी लेना जगहित में विष प्याला, पशु बनकर जीने से अच्छा, पशु बनकर जीने से अच्छा मानव बन मर जाना, बाधाएं आती रहती हैं इनसे क्या घबराना। देखिए गीता एक बहुत ही क्लिष्ट पुस्तक है, सबके समझ में सामान्यतः आती नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि बच्चों को कैसे गीता बताया जाए। तो एक उदाहरण से हमने बताने का प्रयास किया है। ऊंचे पर्वत के शिखरों से ये जो झरने बहते, और यदि हम देकर ध्यान सुने तो वे कुछ बातें कहते। वे कहते हम सदा बढ़ें, चट्टानों से क्या डरना, और कूद पड़े जब कर्म क्षेत्र में फिर जीना क्या मरना। फल की चिंता छोड़ सदा, यही गीता है, फल की चिंता छोड़ सदा अपना कर्तव्य निभाना। बाधाएं आती रहती हैं, इनसे क्या घबराना। मेरे प्यारे भैया बहनों,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कविता ने हमारे आने वाली पीढ़ी को एक बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है। और अगर इस संदेश से भी अगर हम ना उठें, ऐसे ही सोते रहें, इधर उधर की चीज़ों में लगे रह जाएं, तो आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं काल बन जाएगा,
2: जो भी हो।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी शाम में आने के लिए और इस शाम में चार चांद लगाने के लिए। आज की शाम बेहद ख़ास रही क्योंकि आपकी मौजूदगी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और ऐसे ही आप आएँ और अपनी कविताओं से हमारी जो शाम है उसे रोशन कर दें।
2: भाई आपके आशीर्वाद से तो हम गदगद हो गए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बेटियों का अगर आशीर्वाद मिलता रहे तो फिर कल्याण होगा ही होगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम लोग आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं।
2: नहीं, आशीर्वाद बेटियों का लगता है। मनु बैठे हैं, पूछ लो, हमारी बिटिया आती है तो हम उसका पैर छूते हैं आज।
0: क्या बात है, क्या बात है। और लिसनर्स ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला विद योर आरजे बीना। और अब शाम के बज चुके हैं 7:47 और 48 मिनट हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी आपकी आरजे सिंपल आपकी फरमाइशें प्ले करने के लिए बिल्कुल कुछ ही मिनटों में मौजूद हो जाएंगी। और इसी के साथ अब दें इजाज़त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। क्या बात है।

वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद योर आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड। बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे।

सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और कल मदर्स डे था। कभी कभी ऐसा लगता है ना दोस्तों कि बहुत जरूरी जरूरी दिन होता है और मैं आप लोग के साथ में नहीं होती हूँ, और मैं सच में आप लोग का साथ बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो कल आप लोगों ने मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन कल के हिस्से वाला आज मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। दवा जब असर ना करे तो वो नजर उतारती है। दवा जब असर ना करे तो वो नजर उतारती है। माँ है जनाब, वो हार कहाँ मानती है। मेरी किस्मत में एक भी गम ना होता, मेरी किस्मत में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। सो आप लोग भी अपनी तरफ से अपनी माँ से रिलेटेड कुछ भी बता सकते हैं। चंदलम है उनके पसंदीदा गीत, उनकी पसंदीदा बातें, कुछ ऐसा एहसास या फिर कुछ ऐसी रेसिपी या फिर कुछ भी ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हैं अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल से और इस ज्ञान स्थली के परिवार से, सो चैट बॉक्स में जरूर शेयर करना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए एंड गेस स्पॉट लगा दीजिए ना, जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, शो आपका, महफिल आपकी, जज्बात आपके, गीत आपके, और ये आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा के लिए आपकी। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम आशु मिश्रा जी लखनऊ से, नागेश्वर धाकर, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, मोना अनिल वर्मा जी सैदापुर से, द ग्रेट सेन साहब राजस्थान से, तान्या विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से, अनूप मिश्रा जी गोंडा से, दीपांशी तिवारी एवरीवन, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राकेश वर्मा जी, राजेश मीना, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और इस्तकबाल है। सो क्या कहती है महफिल, इंजॉय करें हमारी आज की पहली फरमाइश। बढ़ेंगे, चलते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम विशाल बेदर्दी। सो पहली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, उनको सुनना है गाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए, उसमें लगे मिर्च मसालों के तड़कों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में हमने इंजॉय किया है ये नगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो कि है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मेरे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी पेशकश पेश की है, सो इरशाद इरशाद ज़रूर करिएगा। नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, एक बार फिर से सुनिएगा, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सब मोहब्बतों की माँ होती है। आए हाय, ये मुझे बड़ी अच्छी लाइंस लगी है। पहले मिल गई होती तो मैं इसको कॉपी पेस्ट जरूर करती। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से। उनको सुनना है गाना रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार बनी। सो एंजॉय करते हैं बुढ़ा मिल गया मूवी का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर जो की है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। आहा, स्टे ट्यून्ड। आपके गांव का नाम मुझे बहुत

सो किशोर कुमार की आवाज में हमने एंजॉय किया बुड्ढा मिल गया मूवी का ये गाना विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर। और इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ अर्ज भी किया है। सो विजय पाल यादव जी का ललहुआ लखीमपुर खीरी से कहना है कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। आए हाय, बहुत ही प्यारी सी लाइन थी। अब इंजॉय करते हैं द ग्रेट सीन साहब की फरमाइश, और उन्होंने अपने फरमाइशी गीत को डेडिकेट किया है उनके समुन स्पेशल को। तो इंजॉय करते हैं यारा ओ यारा। सो इंजॉय करेंगे अलका याग्निक विनोद जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा द ग्रेट सीन साहब की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम सौरभ मौर्या।

सुजीत मूवी का ये गाना हमने इंजॉय किया है, यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग आएगा। हमने 90s का सदाबहार गाना इंजॉय किया है द ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर। इसी के साथ में द ग्रेट सेन साहब ने अपने दिल के जज्बात को भी साझा किया है हमारे साथ में। सो इनका कहना है कि हमारी मोहब्बत का अंदाज थोड़ा अलग है, हमारी मोहब्बत का अंदाज थोड़ा अलग है, हम उम्मीद कम और इंतजार ज्यादा करते हैं, और जिन्हें लगता है हम भूल गए हैं उन्हें, हम रातों में आज भी उनके नाम से टूट जाया करते हैं। अच्छा जी, ऐसा क्या? हाँ, सो अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए ये लाइंस थी, आप समझ जाओ कि वो अभी आपको भूले नहीं हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की एमपी से, मींस जुगल किशोर वर्मा की। उनको सुनना है गाना फूल मांगू ना बहार मांगू और मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। सो एंजॉय करेंगे अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में एक बार फिर से ये सदा बहार नगमा। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग।

फूल मिल जाएगा, बहार मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, करार मिल जाएगा, लेकिन आज के जमाने में प्यार मिलना शायद मुश्किल है दोस्तों। सो हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक, उदित नारायण जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई है, जानते हैं किसकी तरफ से? हाँ, हमारे हमारे हमारे जग्गू दादा की तरफ से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा की। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले अनिल वर्मा जी का सैदापुर से कहना है कि हिचकियों को मत भेजो अपना मुखबिर बना के, हिचकियों को मत भेजो अपना मुखबिर बना के, हमें और भी काम है तुम्हें याद करने के सिवा। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा जी की फरमाइश है धूमधाम। सो एंजॉय करते हैं एक्शन जैक्शन का ये वाला गाना, स्टे ट्यून्ड। आज की प्लेलिस्ट आप लोगों ने मिलजुल के बनाई है।

बस तेरी धूमधाम है, बस तेरी धूमधाम। हमने इंजॉय किया है ये गाना एक्शन जैक्शन मूवी का, हमारे मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी की फरमाइश पर। आहा, इस गाने को सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि मूड थोड़ा सा रिफ्रेश सा हो गया है? सो इस रिफ्रेश के मूड को और सतरो ताजा करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी गर्मी है दोस्तों कि मूड को तो हमेशा तरोताजा करने का मन करता है ना। ऐसा मेरा तो मन करता है कि जो चीज़ें मिंट फ्लेवर वाली होती हैं, ऐसी स्मेल होती हैं उनकी, उन चीज़ों को मैं अपने हाथ में ले लिया करूं, बस ऐसे सूंघा करूं। इतनी गर्मी लग रही है भाई आजकल, कब गर्मी लगती है कब ठंडी लगती है पता ही नहीं चलता है ना दोस्तों, या फिर मेरे ही साथ ऐसा लोचा हो रहा है। सो जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं अगला गाना, नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। आहा, जो गया वो वापस कभी नहीं आता, चाहे नींद हो चाहे चैन हो चाहे गुजरा हुआ वक्त हो। नागेश्वर धाकड़ जी से एंजॉय कर लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, भले ही दर्द भरा है लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। स्टे ट्यून्ड।

वो मेरी प्यास वो उम्मीद मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। हमने एंजॉय किया है ये गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर, एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन नागेश्वर धाकड़ जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मांगी है आपने अपनी नींद और अपना चैन वापस, पर जनाब मोहब्बत में जो लुटा दिया उसका हिसाब नहीं होता, और जो एक बार खो जाए वो रास्ता फिर साफ नहीं होता। वो ले गए सुकून आपका तो क्या हुआ, ये बेकरारी ही तो आपके सच्चे आशिक का सबूत है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है विशाल बेदर्दी की, उनको सुनना है गाना किशोर कुमार और उनके भाइयों का जबरदस्त नगमा। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट क्लासिक हिट सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ विशाल बेदर्दी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं भैया, हमने एंजॉय किया है ये गाना। हाँ, मन्ना डे का और किशोर कुमार जी का ये बहुत ही खूबसूरत सा क्लासिक हिट सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ विशाल बेदर्दी जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे बहुत ही रफ्तार के साथ में अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले विशाल बेदर्दी जी ने आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल की है बहुत सारी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, तारीफ थोड़ी छोड़ूंगी है। सो विशाल बेदर्दी जी का कहना है कि बिखरे हुए दिलों को सुरों में पिरो देती है। अच्छा जी, काहे मस्का लगा रहे हैं। बिखरे हुए दिलों को सुरों में पिरो देती है, आरजे सिंपल हर शाम को खूबसूरत बना देती है। जो लोग कभी अजनबी थे इस भीड़ भरी दुनिया में, वो अपनी आवाज से उन्हें भी अपना बना देती है। आय हाय, बस अपने बने रहो, कैसे भी बने रहो, अपनेपन की बहुत कमी है इस दुनिया में और हर एक इंसान के पास में। सो जो अपना बनने की कोशिश करता है भाई, उसको तो आपकी आज सिंपल एकदम देशी घी के लड्डू के साथ में वेलकम करती है। हाँ, सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, उनको सुनना है गाना अकेले चले आओ। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सैड सैड सैड सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

अकेले हैं चले आओ। मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ये फरमाइश हमारे पास में आई थी अनिल शास्त्री जी की तरफ से, जो कि है गोरखपुर से। मैं इनसे कहना चाहूंगी कि अकेलेपन की इस राह में आवाज किसे देते हो? जो छोड़ गए हैं तन्हा, उन्हें आवाज क्यों देते हो? वो नहीं आएंगे ये दिल भी जानता है, मगर इस चले आओ की पुकार में ही तो जीने का मजा है दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली पेशकश। हमारे पास में अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। हाँ, हमारे पास में अगली फरमाइश है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से, और अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना जब से तुझको जाना। सो एंजॉय करते हैं ये हार्ट टचिंग रोमांटिक सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर।

माय गॉड, एकदम दिल को सच में सुकून देने वाला गाना हमने एंजॉय किया है अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है सैदापुर से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल आप सभी से बताना चाहेगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलेंगे सीधे 9 बजे, एंजॉय करते हैं मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला गाना, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अच्छा जी, स्टे ट्यून्ड।

0: नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो दोस्तों, अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ सौरभ मौर्य की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना। इश्क न मांगे, सो एंजॉय करते हैं रंग का ये गाना सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर, जो की है गौरा चौकी से। स्टे ट्यून्ड।

इश्क ना मांगे जीत, इश्क ना मांगे हार। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है। गौरा चौकी से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र मोहन जी का आवाज विकास गोंडा से कहना है कि प्यासी ही रह गई मोहब्बत की आरजू, प्यासी ही रह गई मोहब्बत की आरजू, आंसू ही दे गई मोहब्बत की आरजू। सो एंजॉय करते हैं धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आवाज है उदित नारायण और अनुराधा जी की।

और रात नहीं होती। हमने एंजॉय किया है उदित नारायण और अनुराधा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। सो एंजॉय करते हैं एक दर्द भरा नगमा हमारी मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

माय गॉड, सो हमने एंजॉय किया ही बहुत ही दर्द भरा सा नगमा दोस्तों मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की, रानी बाजार सोनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, और यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। अगम कुमार निगम का ये फिर से सैड सैड लोने वाला तन्हा वाला गाना एंजॉय कर लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। दुनिया में कितना गम है ना दोस्तों,

0: यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निब्बर जी की फरमाइश पर, जो कि हैरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और इसी के साथ में हमारे एक लिसनर के जज्बात उमड़ उमड़ के बाहर आए। उनका कहना है कि अगर किसी को भुलाना इतना आसान होता तो दुनिया में नशे नाम की चीज नहीं होती। हाँ अच्छा जी, सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश, जिसके साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आपसे लेना चाहेगी अलविदा। सो अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से, उनको सुनना है गाना आई प्यार की ये रुत बड़ी सुहानी, और तू डरना ना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम मरी दीवानी, और हम लिखेंगे प्रेम कहानी। ओह माय गॉड, ये गाना मुझे 9th क्लास से बहुत ज्यादा पसंद है। सो एंजॉय करते हैं मेरा पसंदीदा नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पर, और लेती हूँ अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना प्लीज। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर भी ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का बिल्कुल भी सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बे इंतहा बे इंतहा बे इंतहा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना,
1: नहीं मरना गवारा।
0: ओ माय गॉड, हाँ, फील द वाइब।
1: तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है
0: और
1: मुझे भी जिंदा रहना।
0: जे हुई नब्बत भाई, प्लीज इस गाने को बहुत एंजॉय करना, बहुत ही बढ़िया गाना है ये।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या आप सभी को। शाम का सलाम कबूल करें आप। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, और आज बात यहां से शुरू करता हूं कि आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, हर कदम पर उधर मुड़के देखा, हर कदम पर उधर मुड़के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, रह गई जिंदगी दर्द बनके, दर्द दिल में छुपाए छुपाए, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। जी हाँ, कोई इस कदर याद आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाथ आकर लगा गया कोई, हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई, लग गया एक मशीन में मैं भी, लग गया एक मशीन में मैं भी, शहर में लेके आ गया कोई, मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी, मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी, इश्तिहार एक लगा गया कोई, ये सदी धूप को तरसती है, ये सदी धूप को तरसती है, जैसे सूरज को खा गया कोई, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी, बेच के अपना खा गया कोई, अब तो अरमान है न वो सपने, अब तो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई, वो गए जब से ऐसा लगता है, वो गए जब से ऐसा लगता है, छोटा मोटा खुदा गया कोई, मेरा बचपन भी तेरे साथ, मेरा बचपन भी साथ ले आया, मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। जी हाँ, इंसान की जिंदगी ये तो है साहब। और ये जिस शायर की हम बात कर रहे हैं, कल उनकी पुण्यतिथि थी, मैं बात कर रहा हूँ अख्तर हुसैन रिजवी की, जिन्हें हम जानते हैं कैफी आजमी के नाम से। ये वही शख्सियत हैं जो शबाना आजमी के वालिद साहब हैं। जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में होता है, और गजल लिखने जब ये पहुंचते हैं तो आहा, फिर कैफी आजमी को छू पाना शायद बहुत मुश्किल हो पाता है। और इश्क को, शायरी को महबूब और महबूबों की गलियों से निकाल कर एक आम आदमी के जिंदगी के कर्ब से, उसके दर्द से जोड़ने का काम बहुत ही शानदार तरीके से कैफी आजमी ने किया। आज उन पर चर्चा करेंगे। कल उनके बारे में चर्चा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कल मातृदिवस था और हमारी आपकी बातचीत थोड़ी सी लंबी हो गई, जिसकी वजह से कल इनको हम नहीं छू पाए। लेकिन आज तो कैफी आदमी साहब रहेंगे। मेरे साथ सविता शास्त्री जी हैं। शुभ संध्या सर जी, आपको भी प्रणाम है। और अनिल शास्त्री जी, चरण स्पर्श, गुड इवनिंग मनु जी, क्या बात। प्रेजेंटेशन के और एक गाना मैं फरमाइश करना चाहता हूँ। अनूप जलोटा जी ने ये भजन गाया है मातृदिवस के ऊपर, मैं ये कृष्ण और राधा की बातें भूलूंगा कि मैया मोदी मैं नहीं माखन खायो। क्या बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
फिलहाल चूंकि भाई गजल की बात चली है तो एक गजल सुना देते हैं, उसके बाद आप लौटते हैं और आपकी, जी हाँ, जो आपकी तमन्ना है उसको भी पूरा करते हैं। बिल्कुल पूरा करेंगे भाई, आदेश सिरोधार्य है और पूरा भी होगा। बहुत ही आसान लफ्जियात में अपनी बात को कह देने का हुनर कैफी आदमी साहब के पास था। वो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जिसकी बात है उससे कहिए, किसी दूसरे से न कहिए, क्योंकि गलती का सुधार उस व्यक्ति को करना है, न कि किसी दूसरे को करना है। तो गैरों से बातें नहीं, अच्छा होता है कि, कहा जाता है कि कभी कभी एक गलतफहमी से रिश्ते में दरार पड़ जाती है, तो अच्छा हो कि उसी इंसान से पूछ लिया जाए। और आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, उसके बाद मैया मोदी मैं नहीं माखन कहूँ भाई, जी बिल्कुल सुनाएंगे आपको। सुनते रहिए और रेडियो गणेशकी 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी

जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, और ध्यान से देखें साहब तो जिंदगी भी एक सफर ही तो है। गीत भी है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं साथ भाई जुड़ चुके हैं नेहा जी बहराइच से। नमस्कार मनु सर, नमस्कार आपको भी। रफ्तार जी आ चुके हैं भाई, गुड इवनिंग और नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर बात करते हैं कैफी आज़मी साहब।

उन्होंने लिखा, बहारो मेरा जीवन भी संवारो, बहारो मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से यूं पुकारो, बहारो मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से यूं पुकारो, तुम्ही से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्ही से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्ही को दोष दूंगी ये नजारों, सजाओ कोई कजरा लगाओ गजरा, सजाओ कोई कजरा लाओ गजरा, लचकती डालियों तुम फूलवारो, रचाओ मेरे इन हाथों में मेहंदी, सजाओ मांग मेरी या सिधारो, न जाने किसका साया दिल से गुजरा, जरा आवाज देना राज दादो। नायिका ने देखिए जो विरह होता है वो मेरे हिसाब से एक पंक्ति है कि सिंगार देखा न दुल्हन जैसा, सिंगार देखा न दुल्हन जैसा, दर्द देखा न बिरहन जैसा, देखने को तो बहुत देखे हैं साथी देखा नहीं कफन जैसा। जब मैंने इस बात को लिखा था तो ये होता कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि साथी देखा नहीं कफन जैसा। तुमने कहा जो अच्छा साथी वही है जो अंतिम समय में आपका साथ दे, और ऊपर वाले ने हमको बिना कपड़ों के भेजा। ये दुनिया वाले कितने अच्छे हैं, हमें कपड़ों के साथ विदा करते हैं। ये कितना बड़ा कदम है उस ऊपर वाले का कि हम इस दुनिया में आए तो तन पे वस्त्र नहीं थे, लेकिन गए तो वस्त्र थे। ये भी एक नसीब की बात है। एक उनकी नज्म है आखिरी रात, कैफी आदमी साहब की, उन्होंने लिखा, चांद टूटा पिघल गए तारे, कतरा कतरा टपक रही है रात, पलकें आंखों पे झुकती आती हैं, अखड़ियों में खटक रही है रात, आज छेड़ो न कोई अफसाना, आज छेड़ो न कोई अफसाना, आज की रात हमको सोने दो, खुलते जाते हैं सिमटे सुकड़े जाल, खुलते जाते हैं सिमटे सुकड़े जाल, घुलते जाते हैं खून में बादल, अपनी गुलनार पंख फैलाए, आ रहे हैं इसी तरफ जंगल, गुल करो शम रख दो पैमाना। शम का मतलब जो शराब पिलाते हैं। गुल करो शम रख दो पैमाना, आज की रात हमको सोने दो, शाम से पहले मर चुका था शहर, शाम से पहले मर चुका था शहर, कौन दरवाज़ा खटखटाता है, और ऊंचा करो ये दीवारें, और ऊंची करो ये दीवारें, शोर आंगन में आया जाता है, कह दो है आज बंद मैखाना, कह दो है आज बंद मैखाना, आज की रात हमको सोने दो, जिस्म ही जिस्म है कफन ही कफन, जिस्म ही जिस्म है कफन ही कफन, बात सुनते न सर झुकाते हैं, उम्र की खैर कोतवाल की खैर, मुर्दे कब्जों से निकले आते हैं, कोई अपना न कोई बेगाना, आज की रात हमको सोने दो। कोई कहता था ठीक कहता था, अंतिम बंद है इसका, कोई कहता था ठीक कहता था, सरकशी बन गई है सबका सियार, कत्ल पर जिनको एतराज न था, दफन होने पे क्यों नहीं तैयार, होशमंदी है आज सो जाना, आज की रात हमको सोने दो। मैं आपको बताऊं कि

कैफी आज़मी साहब थोड़े बहुत प्रभावित जो है वो मार्क्सवाद से थे, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। और उनकी गज़लों में, उनकी नज़मों में गरीबों का दर्द, जब हम इतिहास पढ़ते हैं साहब तो हमें राजाओं की का इतिहास मिलता है, लेकिन शायद जनता का हिसाब नहीं मिलता। किसी के भी शासनकाल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बात जो है वो हम कर लेते हैं वहाँ के राजाओं की, मंत्रियों की, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, हम जैसे लोग हैं, उनके बारे में बात करना शायद इतिहासकारों को पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने जहाँ तक इतिहास पढ़ा वहाँ पर राजाओं का इतिहास ज़रूर पढ़ा, लेकिन प्रजा कैसी थी वो कम देखने को मिला। कैफी आज़मी साहब कहा जाता है कि गरीबों के सरपरस्त थे, उन्होंने अपनी गज़ल गरीबों पर भी लिखी। और ये जो कहते हैं आज की रात हमको सोने दो, वो जानते हैं कि अगर वो होश में रहे तो वो सत्ता पक्ष के विपक्ष में बोल सकते हैं। और राजेश रेड्डी साहब की एक पंक्ति है कि सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है। तो अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आपको लगता है कि सर कलम हो सकता है, तो कहीं कहीं इंसान अपनी ज़ुबान को खामोश कर लेता है। लेकिन कैफी आज़मी साहब ने अपनी गज़लों के माध्यम से, अपनी नज़मों के माध्यम से एक आम इंसान का दर्द अपने गज़लों में पिरोया, ताकि दुनिया ये देख सके कि वास्तविक दुनिया की सच्चाई क्या है। और उन्हीं की लिखी हुई गज़ल है, आपने अगर सुनी होगी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये उनका अपना नज़रिया था, शायद अपनी भावनाओं को, कहा जाता है कि जो कवि होता है वो कहता है कि हम स्वांता सुखाय लिख रहे हैं अपने सुख के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक कविता कवि के जहन में है, शायर के जहन में है, वो उसके जहन की है। और जैसे ही वो किताबों पर आ गई, अब वो जहान की हो जाती है। तो जहन में आपके तब तक है जब तक आपकी है, लेकिन छप गई तो ये जहान की हो गई। सोचिए कितना मीठा दर्द है, अपनी ज़िंदगी का दर्द। वो अक्सर उनको किसी ने उदास नहीं देखा, वो बहुत मुस्कुरा कर लोगों से बातचीत करते थे। और अपनी ही गज़ल में उन्होंने लिख दिया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जी हाँ, कहा भी जाता है कि लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की, पर उन्हें क्या पता ये भी एक अदा है गम छुपाने की। तो गम छुपाने की भी अपनी एक अदा है, और वो अदा ये है कि आपके होंठ मुस्कुराएं और आपके आँखों में नमी हो, लेकिन वो दुनिया वालों को नज़र ना आए। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और फिर लौटते हैं कैफी आज़मी साहब की तरफ। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो गणेश स्लेट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, अचानक मुझको याद आ गया कि हकीकत फिल्म की जो गजलें थी, गीत थे, वो भी कैफी आजमी साहब ने लिखे। 1964 में आई थी ये फिल्म। संगीतकार मदन मोहन और आवाज आहा कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी। उनके साथ हैं तलत महमूद, मन्ना डे और भूपेंद्र सिंह। कैफी आजमी की इस गज़ल को चार महान गायकों ने मिलकर गाया है और लोग बेवफाई को बुरा मानते हैं। लोग कहते हैं गर्ल्स आर बॉर्न फेथलेस, किस्मत में नहीं था, बेवफाई तेरी न तो बेवफाई तेरी पैदाइशी, न तो मजबूरी है कोई न तो लाचारी है, बेवफाई तेरी पैदाइशी बीमारी है। चुभने लगे दामन में तब जाके समझ पाए हम फूल के धोखे में कांटों को उठा लाए। लेकिन नहीं साहब, नज़रिए का इस नज़रिए का इलाज एक और भी है कि हर चीज़ बेवफाई नहीं होती। हो सकता है उस बेवफाई के पीछे कुछ और छुपा हो। अब कुछ और छुपा हो ये बात कैफी आजमी साहब ने कही। देखिए बेवफाई के पीछे क्या छुपा हो सकता है, क्या यहाँ तक एक आम इंसान पहुँच सकता है। आप गज़ल को सुनिए और बताइए कि वास्तव में कैफी आजमी की ताकत में, कैफी आजमी की कलम में ताकत थी या नहीं। शायद ये गज़ल आपको उनकी ताकत का अंदाज़ा कराएगी और सिद्ध करेगी कि पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल और आपसे मिलते हैं इस गज़ल के तत्काल पश्चात।

0: जी हाँ, तो ये एक नया अंदाज है कि इसलिए बेवफाई हुई होगी मजबूर होकर। कायनाथ जी हेलो, धर्मेंद्र मोहन जी कहते हैं मनु सर में लेट हो गया। जी हाँ, आपको प्रणाम करते हैं। और जी हमारे भाई गोरखपुर से दादा जी की फरमाइश है कि भाई मातृ दिवस की संध्या पर कृष्ण की बात अगर न की जाए तो लगता ही नहीं कि मातृ दिवस मनाया गया। जमी पे एक ही औरत दिखाई देती है, जमी पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की ही मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। आइए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं इस प्यारे से भजन के साथ जो अनूप जलोटा जी की आवाज़ में है, और आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में ठीक 9:30 बजे, जिसका नाम है बहार ये गज़ल। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ उभरा सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
1: बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया, तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

तो बस कन्हैया ने सोच लिया, अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की ये कहानी एक कहानी नहीं, दो दिलों की दास्तां है। यकीन मानिए, दो दिलों की दास्तां उन्हीं की जबानी।

तो आइए सुने राजीव का हाले दिल उसी के शब्दों में। सुबह 6 बजे का अलार्म बजा तो तन्वी उठकर हमारे 10 साल के बेटे राहुल को स्कूल भेजने की तैयारी में व्यस्त हो गई। मैं भी साथ ही उठ गया। फ्रेश होकर रोज की तरह 5वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में राहुल के बेडरूम की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ दूर वाली बिल्डिंग की 3री मंजिल के फ्लैट में उसके बेडरूम की लाइट भी जल रही थी। इसका मतलब वो भी आज जल्दी उठ गई है। कल तो उसके बेडरूम की खिड़की का पर्दा 7 बजे के बाद ही हटा था। उसकी जलती लाइट देखकर मेरा दिल धड़का। अब वो किसी भी पल दिखाई दे जाएगी। मेरे फ्लैट की बस इसी खिड़की से उसके बेडरूम की खिड़की, उसकी किचन का थोड़ा सा हिस्सा और उसके फ्लैट का वॉशिंग एरिया दिखता है। तभी वो खिड़की के पास आ खड़ी हुई। अब वो अपने बाल ऊपर बांधेगी, कुछ पल खड़ी रहेगी और फिर तार से सूखे कपड़े उतारेगी। उसके बाद किचन में जलती लाइट से मुझे अंदाजा होता है कि वो किचन में है। 10 साल से मैं उसे ऐसे ही देख रहा हूं। इस सोसाइटी में उससे पहले मैं आया था। वो शाम को गार्डन में नियमित रूप से जाती है। वहीं से मेरी उससे हाय हेलो शुरू हुई थी। अब तो कहीं भी मिलती है तो मुस्कुराहटों और हाय हेलो का आदान प्रदान जरूर होता है। मैं कोई 20-25 साल का नवयुवक तो हूं नहीं जो मुझे उससे प्यार व्यार का चक्कर हो। मेरा दिल तो बस यूं ही उसे देखकर धड़क उठता है। अच्छी लगती है वो मुझे। बस उसके 2 युवा बच्चे हैं। वो उम्र में मुझसे बड़ी ही होगी। मैं उसके पति और बच्चों को अच्छी तरह पहचानने लगा हूं। मुझे उसका नाम भी नहीं पता और ना ही उसे मेरा पता होगा। बस सालों से यही रूटीन चल रहा है। अभी ऑफिस जाऊंगा तो वो खिड़की के पास खड़ी होगी। हमारी नजरें मिलेंगी और फिर हम दोनों मुस्कुरा देंगे। ऑफिस से आने पर रात के सोने तक मैं इसी खिड़की के चक्कर काटता रहता हूं। वो दिखती रहती है तो अच्छा लगता है, वरना जीवन तो एक ताल पर चल ही रहा है। कभी वो कहीं जाती है तो मुझे समझ आ जाता है कि वो घर पर नहीं है। सन्नाटा सा दिखता है उस फ्लैट में। कई बार सोचता हूं कि किसी की पत्नी, किसी की माँ को चोरी छिपे देखना, उसके हर क्रियाकलाप पर निहारना गलत है। पर क्या करूं, अच्छा लगता है उसे देखना।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। आज हम सुन रहे हैं दो दिलों की दास्तां, उन्हीं की जबानी। और फिलहाल हमारे सामने है राजीव का हाले दिल। अब आगे। कई बार सोचता हूं कि मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। क्यों रोज मैं उसे सुबह देखने यहां खड़ा होता हूं? फिर सोचता हूं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? कुछ देखकर कुछ पल चैन मिलता है तो इसमें क्या बुरा है? किसी का क्या नुकसान है? तभी वो सूखे कपड़े उतारने आ गई। उसने ब्लैक गाउन पहना है, बहुत अच्छी लगती है वो इसमें। मन करता है वो अचानक मेरी तरफ देख ले और मैं हाथ हिला दूं, पर उसने कभी नहीं देखा। पता नहीं उसे पता भी है या नहीं, ये खिड़की मेरी है और मैं यहां खड़ा होता हूं। नीचे लगे पेड़ की कुछ टहनियां आजकल मेरी इस खिड़की तक पहुंच गई हैं। उन्हीं के झुरमुट से उसे देखा करता हूं। कई बार सोचता हूं हाथ बढ़ाकर टहनियां तोड़ दूं, पर फिर मैं उसे शायद साफ साफ दिख जाऊंगा। सोचेगी हर समय यहीं खड़ा रहता है। नहीं, इन्हें रहने ही देता हूं। वो कपड़े उतार कर किचन में चली गई तो मैं भी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। बीच बीच में मैं उसे अपने पति और बच्चों को बाय करने के लिए भी खड़ा देखता हूँ। ये उसका रोज का नियम है। कुल मिलाकर उसका सारा रूटीन देखकर मुझे अंदाजा होता है कि वो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ है। ऑफिस में भी कभी कभी उसका यूं ही ख्याल आ जाता है कि वो क्या कर रही होगी, दोपहर में सोई होगी, अब उठ गई होगी, अब उस सोफे पर बैठकर चाय पी रही होगी जो मेरी खिड़की से दिखता है। ऑफिस से आकर मैं फ्रेश होकर सीधा खिड़की के पास पहुंचा। राहुल कार्टून देखने बैठ गया था। मेरा दिल जोर से धड़का। वो खिड़की में खड़ी थी। मन किया उसे हाथ हिला दूं। कई बार मन होता है उससे कुछ बातें करने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का, पर जीवन में कई इच्छाओं को एक मर्यादा में, एक सीमा में रखना ही पड़ता है। कुछ सामाजिक दायित्व भी तो होते हैं। फिर सोचता हूं दिल का क्या है, धड़कने दो तो?

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। हम आज सुन

कई बार सोचती हूँ वो हाथ बढ़ाकर उन्हें तोड़ क्यों नहीं देते, पर ये ठीक नहीं होगा शायद। फिर वो साफ साफ देख लेंगे कि मैं उन्हें चोरी चोरी देखती रहती हूँ। नहीं, ऐसे ही ठीक है। तार से कपड़े उतारते हुए मैं कई बार उन्हें देखती हूँ। कपड़े तो मैं दिन में कभी भी उतार सकती हूँ, कोई जल्दी नहीं होती इनकी, पर इस समय वो खड़े होते हैं ना, ना चाहते हुए भी उन्हें देखने का लोभ अपने मन से निकाल नहीं पाती। मैंने कपड़े उतारते हुए कनखियों से उन्हें देखा। हाँ, वो खड़े थे। मन हुआ हाथ हिलाकर हेलो कर दूं, पर नहीं, एक विवाहिता की कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं। मेरा दिल जोर से धड़कता है जब मैं महसूस करती हूँ वो अपनी खिड़की में खड़े होकर मेरी तरफ देख रहे हैं। स्त्री हूं ना, बहुत कुछ महसूस कर लेती हूँ बिना किसी के कुछ कहे सुने। मैं समीर और अपने बच्चों के नाश्ते और टिफिन की तैयारी में व्यस्त हो गई। तीनों शाम तक ही वापस आते हैं। मेरे किचन के एक हिस्से से उनकी खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है। जिस खिड़की के पास वो खड़े होते हैं वो शायद बेडरूम की है। किचन में काम करते करते मैं उन पर नजर डालती रहती हूँ। सब समझ आता रहता है। अब वो तैयार हो रहे हैं। मुझे अंदाजा है उनके कमरे की किस दीवार पर शीशा है। मैंने उन्हें कई बार बाल ठीक करते देखा है। एक अजनबी में मिल जाएगा कोई अपना, एक अजनबी में मिल जाएगा कोई अपना, हमें ये आखिर कहां पता था। पर तेरा मेरा मिलना तो जैसे शायद किस्मत में पहले से ही लिखा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। आज हम कहानी नहीं सुन रहे हैं दो दिलों की दास्तां, उन्हीं की जबानी। और अब बारी है रूपाली की, तो आइए सुने। जानती हूं किसी के पति को, किसी के पिता को ऐसे देखना मर्यादा संगत नहीं है, पर क्या करूं, कुछ है जो दिल धड़काता है उसके सामने होने पर। 10 साल से कुछ है जो उसे कहीं देखने पर, नजरें मिलने पर, हाय हेलो होने पर दिल धड़क उठता है। वो अपनी कामकाजी पत्नी की घर के काम में काफी मदद करता है, बेटे को लेकर आता है, घर का सामान लाता है, कभी अपनी पत्नी को छोड़ने और लेने भी जाता है। सब दिखता है मुझे अपने घर की खिड़की से। कुल मिलाकर वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता है। कई बार तो मैंने उसे कपड़े सुखाते भी देखा है। ना मुझे उसका नाम पता है और ना उसे मेरा पता होगा, बस उसे देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई युवा लड़की तो हूं नहीं जो प्यार व्यार का चक्कर हो, बस यूं ही देख लेती हूं उसे। वैसे दिन में कई बार ख्याल आ जाता है उसका कि क्या काम करता है वो, कहाँ है उसका ऑफिस। वो ऑफिस से आते ही अपनी खिड़की खोल देता है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो आ गया है। फिर वो कई बार खिड़की के पास आता जाता रहता है। वो कई बार छुट्टियों में बाहर चला जाता है तो वहां बड़ा खाली खाली लगता है। 10 साल से यूं ही देखते रहना एक आदत सी बन गई है। वो दिखता रहता है पेड़ की पत्तियों के बीच से। दिल करता है उससे कुछ बातें करूं, कुछ कहूं, कुछ सुनूं, पर नहीं। जीवन में कई इच्छाओं को एक मर्यादा में रखना ही पड़ता है, कुछ सामाजिक उसूल भी तो है। फिर सोचती हूं दिल का क्या है, धड़कने दो। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। थोड़ी बेचैनी तो बहुत सारा सुकून, थोड़ी बेकरारी तो बहुत सारा सब्र, थोड़ी उलझन तो बहुत सारा सुलझापन, थोड़ी कड़वाहट तो बहुत सारा मीठापन, थोड़ी शरारत तो बहुत सारी नजाकत, थोड़ा सा बैर तो बहुत सारी मोहब्बत, बेजुबान मोहब्बत।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है कौन, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि शो क्या है। जी हाँ, शो वही है जिसमें हम उन भूले बिसरे गीतों को याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जो कहीं धुंध में खो गए हैं। हाँ, लेकिन ये जो हमारी गायिका है वो अभी पूरी तरह से खोई नहीं है, पर इनके कुछ नगमे ऐसे हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमने शायद सुने भी नहीं हैं, जो हमें शायद पता भी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि आज मैं जिस कलाकार को आपसे रूबरू कराने वाली हूँ वो है हमारी साउथ की, यानी कि हमारी साउथ म्यूज़िक इंडस्ट्री की गायिका, जिनको कहा जाता है, जिनको जाना जाता है एस जानकी के नाम से। भारत की एक प्रसिद्ध और दिग्गज पार्श्व गायिका जिनका नाम एस जानकी है, जिन्हें व्यापक रूप से दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता है। 65 से अधिक वर्षों के करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में 48,000 से अधिक गीत गाए हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं के बारे में और इनके उस कलाकारी के बारे में जिससे साउथ इंडस्ट्री पूरी तरह से ओतप्रोत है। फिलहाल इनके एक नगमे को सुनते हैं और आते हैं फिर इनकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आपसे साझा करनी है। स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के बारे में, जो कि हैं सुर कोकिला, कहाँ की, दक्षिण भारत की। और इनके बारे में बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो चलिए कर ही लेते हैं। एस जानकी जी जब 75 वर्ष की थी तभी उन्हें पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था। तब दक्षिण भारत की नाइटिंगेल कही जाने वाली एस जानकी ने कहा कि अगर भारत सरकार उन्हें भारत रत्न नहीं दे सकती तो उन्हें दूसरा कोई सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतने वर्ष वो इस संगीत जगत को दे चुकी हैं और ऐसी कोई भी विधा या भाषा नहीं है जिसमें उन्होंने गायकी नहीं की या फिर जो उनसे अछूती रही हो। एस जानकी को दक्षिण भारत की लता जी माना जाता है। ये बातें एक टीवी इंटरव्यू के दौरान नेहा पंत और एस जानकी जी के मध्य हुई थी।

इन्होंने 1957 से फिल्मों को अपनी आवाज दी। 20,000 से भी अधिक तमिल गीत इनके नाम रहे हैं। साथ ही इन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। दक्षिण भारत की सुर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध एस जानकी का जन्म आंध्र प्रदेश के गंटूर में हुआ था। मात्र 19 साल की आयु से इन्होंने गायन प्रारंभ कर दिया था। चलिए इन्हीं की आवाज में एक और नगमे का आनंद उठाते हैं आपके शो भूले बिसरे गीत के साथ में। आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके भूले बिस्तरे शो में एस जानकी जी की। अगर इनके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो जानकी का जन्म 23 अप्रैल 1938 को ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गंटूर जिले में रिपाले तालुका के पल्ला पटला में हुआ था। उनके पिता सिस्टला श्री राम मूर्ति एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और शिक्षक थे। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन सिरसिला में बिताया, जहां उन्हें 9 वर्ष की आयु में मंच पर प्रस्तुति देने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने नाद स्वरम विद्वान पैदी स्वामी से संगीत की बुनियादी बातें सीखी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। जानकी का विवाह 1959 में वी राम प्रसाद से हुआ। उन्होंने उनके करियर को प्रोत्साहित किया और उनकी अधिकांश रिकॉर्डिंग के दौरान उनका साथ दिया। 1969 में हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। जानकी की मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन वे तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में धारा प्रवाह बोल और लिख सकती हैं। एस जानकी जी ने विभिन्न पीढ़ियों के संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। 1960 के दशक की शुरुआत से ही उन्हें मुख्य रूप से कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के संगीतकारों द्वारा रचित गीत दिए गए। हालांकि अपने करियर के आरंभ में उन्होंने तेलुगु और तमिल में कम गाने गाए, लेकिन 1970 के दशक के मध्य उन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में पार्श्व गायन उद्योग का अपना दबदबा कायम किया।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपना रात के सफर का ये शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। और आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के बारे में। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे इनके करियर के बारे में। अभी तक हमने जो भी बात किया उसके आगे की चर्चा ये है कि जानकी अपने चाचा की सलाह पर चेन्नई चली गई, जहाँ उन्होंने संगीतकार आर सुदर्शनम के साथ एवीएम स्टूडियो में गायिका के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने 1957 में तमिल फिल्म विधीन विलायत 2 से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म एमएलए में अभिनय किया। उन्होंने अपने पहले वर्ष में 6 भाषाओं में फिल्मी गीत गाए, है ना, कितना अमेजिंग। सोचने की बात है कि अपने करियर के प्रथम वर्ष में ही 6 भाषाओं में गायन करना, फिलहाल इसी को तो कहते हैं कलाकार। उन्होंने 10 कल्पनाकल से मलयालम लोरी अम्मा पूविनम को अपने 60 साल के गायन करियर के अंतिम गीत के रूप में चुना और 28 अक्टूबर 2017 को मैसूरु में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के साथ संन्यास ले लिया। चलिए एक और गीत आपको सुनाते हैं, फिर आते हैं इनके गायकी के विधाओं में ही इनका करियर कितना बड़ा रहा है उसे आपको रूबरू कराते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम भूले बिस्तरे गीत में बात कर रहे हैं उस कलाकार की जो कि कही जाती हैं साउथ की सुर कोकिला। तो चलिए बात करते हैं फिर से एस जानकी जी की। और एस जानकी जी ने तेलुगु फिल्मों में क्या किया है, आइए उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो एस जानकी ने 1957 में फिल्म एमएलए से तेलुगु फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। बाबा मराडालू, पूजा फलम और बंगारू पंजारा जैसी फिल्मों में एस जानकी के गाने थे जो बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में लगातार हिट गाने गाए। ये कार्यक्रम लगभग 90 के दशक के मध्य तक जारी रहा। और अगर पुरस्कारों की बात करें तो उसकी तो श्रृंखला खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एस जानकी जी ने 12 नंदी पुरस्कार जीते हैं, 10 फिल्मों के लिए और 2 टेलीविजन धारावाहिक गीतों के लिए। उनके कुछ एकल भी हैं जैसे नी आसा आदि आसा और इंडे नंदी पुदामू रा वोई बाबा, अनुकुंदंता, गाजू लम्मा गाजुलू, ले ले ले आकाश मेले अंडाला राजे, ई पगलू वेडू जैसे और भी कई सारे तमिल गीत को इन्होंने अपने स्वर से सजाया और उसके लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। अब बात करेंगे कन्नड़ फिल्मों की, लेकिन उससे पहले एक और गीत।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने जिनकी आवाज़ सुनी वो है हमारी एस जानकी जी। इनके कन्नड़ फिल्मों की बात करें तो एस जानकी ने अपने करियर में कन्नड़ में सबसे अधिक गाने गाए हैं। पीबी श्रीनिवास, एसपी बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ उनके एकल और युगल गीत सदाबहार हिट माने जाते हैं। जानकी ने अपना पहला कन्नड़ गीत 1957 में गाया था। 60 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने कई प्रमुख संगीतकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 1970 और 80 के दशक में वे कन्नड़ फिल्मों में नंबर एक महिला पार्श्व गायिका बनी रहीं। जी के वेंकटेश्वर, राजन नागेंद्र से लेकर हमस लेखा तक अधिकांश संगीत निर्देशकों ने उन्हें अपनी शीर्ष रचनाएं दी। उन्होंने पीबी श्रीनिवासन, एसपी बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर राजकुमार के साथ रिकॉर्ड संख्या में युगल गीत गाए हैं। उन्हें 2014 में राज्योत्सव प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था। कन्नड़ फिल्म और संगीत में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कन्नड़ सिनेमा में उनके कुछ शीर्ष हिट एकल भी हैं, जैसे शिव शिव एंद्रा, पूजी सालेंडे, गगनवु एलो, ओम्मे निन्ननु, नंबाइड निन्ना जो कि संध्या राग में गाया गया है, बरेंदे नीनु, दीपवनु निन्नड़े जैसे और भी कई सारे गीतों को इन्होंने अपने सुरों से सजाया। चलिए चलते हैं फिर इन्हीं के एक और गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी की। चलिए फिर जानते हैं इनकी कलाकारी के क्षेत्रों के बारे में। बहुत ही लंबी कतार है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे और हम आपको बताते बताते, पर हाँ कुछ चुनिंदा बातें तो हम आपसे ज़रूर साझा करना चाहेंगे, जिसमें अब हम बात करेंगे मलयालम फिल्म की। जानकी जी ने पुणे में 2007 में अपना पहला मलयालम गीत 1957 में गाया था। उन्होंने सही उच्चारण और भाषा की बारीकियों का अभ्यास किया, जिससे वे 1970 के दशक से लेकर 80 के दशक के मध्य तक उद्योग की सबसे लोकप्रिय गायिका बन गईं। वे वी दक्षिणमूर्ति, एमएस बाबूराज, श्याम एमबी श्रीनिवासन, एटी उमर और सलील चौधरी